प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आस्था से। नमस्कार।
3: नमस्कार। 6 बजे के प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का। राज्यसभा में आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान बैंक ऑफ मॉरिशस से जुड़े 4 अहम सवाल उठेंगे। नई मुद्रा छपाई, 83 बिलियन रुपए का विवाद और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परियोजना पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम जवाब देंगे। संविधान में बदलाव की दिशा में आज कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश किया जाएगा। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने पर रहेगा जोर। चिकुनगुनिया को लेकर सतर्कता और बढ़ी। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मॉरिशस के लिए दूसरी श्रेणी की

0: स्वास्थ्य चेतावनी जारी की। इस साल अब तक 3,478 मामले दर्ज हैं। मॉरिशस अब मेडिकल हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार मेडिकल टूरिज्म के टिकाऊ मॉडल पर काम कर रही है ताकि अफ्रीका, हिंद महासागर इलाके और यूरोप के कुछ देशों से मरीजों को आकर्षित किया जा सके। और विदेश स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले को टाल दिया है। उनका कहना है कि गल्फ देशों के अनुरोध पर तेहरान के साथ गंभीर बातचीत जारी है। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर रहेगा। आज सुबह और दोपहर बाद भी देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। देर रात को केवल पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रह रहकर कुछ बरसात हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समुद्र में नहीं जाएं। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 22 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। सूर्योदय 6:32 पर, सूर्यास्त 5:40 पर होगा।
2: Rising 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:03 हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नज़र डालते चलें। ये विज्ञप्ति है ब्रिटानिया के गांव के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, जिनमें है कॉ बियतो, कॉ रामपुर और मौसलमा ब्रिटानिया के साथ सेंट आवर्ल्ड के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार 19 मई को सुबह 9 से लेकर दिन के 4 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा।
2: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
3: सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम आवाज़ 19 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। 19 मई आज की तारीख, मंगलवार का दिन, 2026 का साल और इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:04 और 40 सेकेंड्स। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना, हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 11 तक हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। आज का यह दिन सभी के लिए मंगलमय रहे, ऊर्जाजनक रहे और स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ मन के साथ आज के दिन की शुरुआत करें। अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे पाक्षिक कार्यक्रम मानस मोती के साथ। ये कार्यक्रम रामायण सेंटर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर विनु अरुण। उसके तुरंत बाद कुछ भावगीत सदाबहार गीतों के साथ सुबह को और सुरीली बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक 6:30 पुनः हम जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ और समाचारों की समाप्ति के बाद सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। तो आइए आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ। श्रोताओं, इंसान की सच्चाई और अच्छाई वो खुशबू है जिन्हें फैलानी नहीं पड़ती, वे अपने आप फैलती चली जाती हैं। दूसरों को दिखाने के लिए केवल अच्छा न बने, सच में अच्छे बने रहें। आइए इसी के साथ डॉक्टर विनु अरुण का स्वागत करते हैं मानस मोती कार्यक्रम में।

रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मोती कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज रामचरित मानस के बाल कांड से दो चौपाइयाँ मैं मोती रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जहाँ श्री राम के वास्तविक स्वरूप को शिव जी पार्वती जी के अनुरोध पर समझाते हुए कहते हैं, झूठे उ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। यानी जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम पड़ता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी प्रकार लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम मिट जाता है। सनातन काल से हमारे संत ऋषि मुनि और मनीषी इस बात पर विचार करते रहे हैं कि ये दृश्यमान जगत क्या है, इसका रचयिता कौन है, हम कौन हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है आदि आदि। और सबने अपने अपने दृष्टिकोण से इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। कुछ दार्शनिक मत परमात्मा को संसार का रचयिता मानते हैं, वे परमात्मा को ही सर्वस्व और एकमात्र सत्य मानते हैं, तो कुछ ऐसे मत भी हैं जो परमात्मा के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। इनमें से जो ब्रह्म ईश्वर या परमात्मा को सृष्टि का कारण मानते हैं उनके विचारों में भी मतभेद हैं। कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो परमात्मा के साथ ही साथ सृष्टि को भी सत्य मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो परमात्मा सृष्टि और जीवात्मा तीनों को सत्य मानते हैं, लेकिन कुछ मत ऐसे भी हैं जो ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य मानते हैं, जैसे शंकराचार्य और उनका जो दर्शन है अद्वैतवाद। इन चौपाइयों में जिन्हें मैंने अभी प्रस्तुत किया, शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत के अनुरूप सृष्टि की वास्तविक सत्ता को नकारा गया है और परमात्मा को ही सत्य ज्ञान और प्रकाश के रूप में चित्रित किया गया है। शंकराचार्य जी मानते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है और ये संसार परिवर्तनशील है, माया है, यानी ये पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सत्य नहीं है। और इस बात को समझाने के लिए वे कई प्रकार के उदाहरण देते हैं, जिनमें मुख्य है रस्सी और सांप, सीपी और चांदी, स्वप्न और जागृत अवस्था, मृग तृष्णा आदि। इन चौपाइयों में जिन्हें मैंने अभी प्रस्तुत किया था, दो उदाहरणों के द्वारा इस सत्य का निरूपण भगवान शिव पार्वती जी के समक्ष करते हैं कि श्री राम ही ब्रह्म हैं और उनके ज्ञान के बिना ये संसार हमें उसी प्रकार वास्तविक जान पड़ता है जैसे प्रकाश ना होने पर रस्सी सांप दिखाई देती है और बिना जागे स्वप्न यथार्थ जान पड़ता है। आइए इन दोनों उदाहरणों पर हम थोड़ा गहराई से विचार करें। पहला उदाहरण जो है वो रस्सी और सांप का है। जब प्रकाश नहीं होता यानी अंधेरा होता है और कोई रस्सी पड़ी हुई हो, तो अंधेरे के कारण उस रस्सी को हम सांप समझकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उजाला हो जाए, जैसे ही प्रकाश हो जाए, जैसे ही कोई आकर के हमें प्रकाश दे दे, लाइट ऑन कर दे, तो हमें अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ जाती है, अपने अज्ञान पर हम स्वयं शर्मिंदा हो जाते हैं कि

0: अरे ये तो रस्सी है, और मैं इसे सांप समझ के इतना भयभीत हो रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। और तब सारा भ्रम मिट जाता है, क्योंकि हमें वास्तविकता पता चल जाती है। उसी प्रकार अपने अज्ञान के कारण हम इस संसार को वास्तविक समझते रहते हैं, माया के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण। ये संसार जो नित्य परिवर्तनशील है, जो सदा एक सा नहीं रहता, उसे ही हम सत्य मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमें ज्ञान होता है, हम जान जाते हैं कि ये संसार वास्तविक नहीं है। वास्तविक कौन है? केवल वही परमात्मा, वही ब्रह्म। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे बिना जागे स्वप्न यथार्थ जान पड़ता है। आप जानते हैं हमारे जीवन की चार अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था। जागृत यानी मैं अभी जागी हुई हूँ, बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ इसका मुझे ज्ञान है, क्योंकि मैं चेतन अवस्था में हूँ। लेकिन जो हमारी दूसरी अवस्था होती है वो है स्वप्नावस्था। जब हम सोने जाते हैं तो गाढ़ी निद्रा में पहुँचने के पहले हम स्वप्नावस्था में होते हैं। हमारा अचेतन या अवचेतन मन उस समय कार्य कर रहा होता है और हम तरह तरह के सपने देखते हैं। कभी ये सपना सुख देने वाला होता है, कभी ये सपना दुख देने वाला होता है। यदि सुख वाला सपना हम देख रहे हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं, और यदि कोई बहुत भयावह हम सपना देखते हैं तो रोने लगते हैं। और जब हमारी नींद खुलती है, जब हम फिर से जागृतावस्था में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि जिस स्वप्न को देख करके हम रो रहे थे या हंस रहे थे, वह तो सपना था, वो सच्चाई नहीं था। तो इस बात का हमें ज्ञान कब होता है? जब हम जागृत होते हैं, जब हम जागते हैं, तब हमें पता चलता है कि वह तो स्वप्न था। उसी प्रकार ये संसार भी सपने की तरह है, और परमात्मा परम ज्ञान है, परम सत्य है। तो इस बात को शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि जो परमात्मा है वही सत्य है, और जब उन परमात्मा का ज्ञान हो जाता है हमें, तो ये संसार हमें सत्य नहीं जान पड़ता। इन चौपाइयों की विशेषता ये है कि इसमें जिस सत्य का निरूपण किया जा रहा है, वह तीनों लोकों के गुरु भगवान शिव के द्वारा हो रहा है, और ये ज्ञान वे जगदम्बा पार्वती जी को दे रहे हैं। शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि केवल श्री राम, जो वास्तव में ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, उनका ज्ञान ही सारे भ्रमों और संदेहों का निराकरण करने वाला है। जब तक उनका ज्ञान नहीं होता, तब तक ये संसार हमें वास्तविक जान पड़ता है। और श्रोताओं, आज इन दो चौपाइयों को मैंने रामचरितमानस से मोती के रूप में चुना, और इन्हीं के साथ मैं आज के कार्यक्रम को विराम देने की अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस मोती।

फिल्म सीमा का ये गीत तू प्यार का सागर है और इस फिल्म के गीत के साथ हमने की है एक बहुत ही प्यारी सी पहल। मन्ना डे साहब की बहुत ही मधुर सी आवाज़ और 1955 के दौर का ये गीत। इस फिल्म में नजर आई थी नूतन और साथ नजर आए थे बलराज सहनी साहब। चलिए 6:20 हो चुके हैं और प्यार भरे गीतों के इस सफर में हम तो यही कहेंगे कि ये जीवन की पहली ऐसी रेस होगी जहां पर रुक जाने वाले ही जीतेंगे। जिन्हें ये बात समझ में आई हो उन्हें हम दिल से सलाम करते हैं और इसी के साथ मधुर गीतों का ये सफर है, भाव गीतों के साथ सजाया हुआ ये सफर हम आगे बढ़ाते हैं। और अगला गीत है गूंज उठी शहनाई फिल्म से लिया हुआ मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। भाई रोज बांटिए रोज बढ़ेगी, बिल्कुल एक मुस्कुराहट दूसरी है दुआएं।

छह बजकर 25 मिनट हो गई, जहां पर हम साथ की बात करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि जिंदगी हमें बहुत अच्छे दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें बहुत खूबसूरत जिंदगी देते हैं। तो बस हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे बहुत ही प्यार से। चलिए इसी के साथ लेते हैं एक ब्रेक। हम छोड़े जाते हैं आपके लिए ये गाना जो है फिल्म नया दौर से लिया हुआ, एक बार फिर मोहम्मद रफी साहब और साथ दिया है आशा जी ने। और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे 6:30 बजे के समाचारों की ओर, और हमारी और आपकी मुलाकात बिल्कुल समाचारों के समाप्ति के बाद सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तो आइए इस गीत के साथ आगे बढ़ते हैं देश विदेश की खबरों के

बारे में जानते हैं और जानकारियों से भरपूर इस सफर में जुड़ते हैं और फिर करेंगे आपका मनोरंजन। तब तक के लिए जरूर साथ दीजिएगा, गर्मा गर्म चाय पीजिए। तब तक एंजॉय करते हैं ये गाना।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मंगलवार 19 मई की सुबह 6:30 बजे की समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचारों में। यह नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। कौतूहल हिंसा मामला, सीआईडी की पहली कार्रवाई, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वाकवा में युवक की संदिग्ध मौत, हत्या के शक में 18 वर्षीय युवक गिरफ्तार किया गया। राज्यसभा में आज पीएमक्यूटी सत्र के दौरान बैंक ऑफ मॉरीशस से जुड़े 4 अहम सवाल उठेंगे। नई मुद्रा छपाई, 83 बिलियन रुपए का विवाद और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परियोजना पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे। संविधान में बदलाव की दिशा में आज कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश किया जाएगा। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने पर रहेगा जोर। चिकुनगुनिया को लेकर सतर्कता बढ़ी और अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज

डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मॉरिशस के लिए दूसरी श्रेणी की स्वास्थ्य चेतावनी जारी की। इस साल अब तक 3,400 से ज्यादा मामले दर्ज। मॉरिशस अब मेडिकल हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार मेडिकल टूरिज्म के टिकाऊ मॉडल पर काम कर रही है ताकि अफ्रीका, हिंद महासागर इलाके और यूरोप के कुछ देशों से मरीजों को आकर्षित

0: के अनुरोध पर तेहरान के साथ गंभीर बातचीत जारी है। कोंतोगल में रविवार शाम भड़की हिंसा के बाद मोका की सीआईडी ने पहली गिरफ्तारियां की हैं। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। याद दिला दें कि कोंतोगल गांव में उस समय तनाव फैल गया था जब 2 समूह आमने सामने आ गए थे। बताया जा रहा है कि कुछ लोग हेल्थ ट्रैक पर क्वाड बाइक चला रहे थे, जबकि वहां इस तरह की गतिविधि प्रतिबंधित है। इस दौरान गोली चलने की आवाज भी सुनी गई। 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और वहां पर मौजूद एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। अन्य खबरों में वाकवा में 25 वर्षीय जैक विलियम विलो का शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फ्लोरियाल निवासी जैक विलियम का शव कल सुबह घनम वाकवा स्थित एक मैदान के पास मिला था। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार उसे कथित तौर पर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन दबने के कारण मौत होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में 18 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि आज राज्यसभा की बैठक में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान मैकोमोशस से जुड़े 4 अहम सवाल उठाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इस सत्र के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से पूछा जाएगा कि 2019 से 2024 के बीच कितनी राशि की नई मुद्रा छापकर सरकार को सौंपी गई। साथ ही 83 बिलियन रुपए की कथित नोट छपाई से जुड़े आरोपों के बाद क्या कदम उठाए गए, इस पर भी जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परियोजना की प्रगति और बैंक ऑफ मॉरिशस में डायरेक्टर ऑफ सुपरविजन पद पर रह चुके अधिकारियों की सूची भी चर्चा का विषय होगी। अभ्युदय।
1: राष्ट्रीय सभा के कार्य सत्र इस मंगलवार दिन के 11:30 बजे फिर से शुरू होंगे। इसकी शुरुआत प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन से होगी, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम से होगा। कार्यसूची में शामिल कुल 26 प्रश्नों में से 4 सवाल बैंक ऑफ मॉरिशस से संबंधित हैं, जो प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से पूछे जाएंगे। रविराज बिचुक का साल 2019 से 2024 के बीच छापी गई और सरकार को ट्रांसफर की गई कुल मुद्रा के मूल्य की जानकारी चाहते हैं। साथ ही वे प्रधानमंत्री से ये भी पूछेंगे कि इस पैसे को बाजार में उतारने से अब तक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। एड्रियन जुवाल साल 2014 से 2024 के बीच बैंक ऑफ मॉरिशस में डायरेक्टर ऑफ सुपरविजन के पद पर रहे लोगों की सूची मांगेंगे। इसके अलावा वे इस पद से जुड़ी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में भी प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछेंगे। कुशल लुबिन का सवाल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपए को लागू करने पर केंद्रित होगा। वे इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जनवरी 2024 में चुने गए कमर्शियल बैंक और अब तक का हुई प्रगति की जानकारी मांगेंगे। आश्ले रामदास 83 बिलियन रुपए की कथित मनी प्रिंटिंग के आरोपों को लेकर बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा पिछले 12 मई को जारी किए गए बयान का मुद्दा उठाएंगे। वे यह जानना चाहेंगे कि अधिकारियों ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं या उठाने वाले हैं।
0: आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल को पहली बार पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य है गणराज्य के राष्ट्रपति को एक संविधान समीक्षा आयोग नियुक्त करने का अधिकार देना। यह आयोग संविधान में सुधार से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करेगा और अपनी सिफारिशें देगा, खासतौर पर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र को और मजबूत बनाने और संस्थाओं को सशक्त करने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि चुनावी सुधार इस विधेयक का हिस्सा नहीं होगा, ये विधेयक केवल संविधान की समीक्षा पर केंद्रित रहेगा। वकील रमा वलायदन के अनुसार करीब 10 कानूनों में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1967 से लागू संविधान पर्याप्त रूप से शिक्षाप्रद नहीं था और उसमें कई जरूरी बहसों को शामिल नहीं किया गया था। करुणा लालू।
2: मॉरिशस में स्वतंत्रता पश्चात इतिहास में पहली बार सरकार द्वारा एक बृहद संवैधानिक सुधार की योजना का प्रावधान है। इसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन का गठन किया जाएगा, जो संविधान के विभिन्न पहलुओं की गहराई से समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। यह आयोग प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों को मजबूत करने पर काम करेगा। पीस, जस्टिस एंड लिबर्टी के सिद्धांतों को

0: संविधान में शामिल किया जाएगा।
1: Si on a la paix, on a la justice. Et si on a la justice, on a la liberté. Qu'on mette la justice centrale dans tout ce qu'il nous fait. Et la justice des hommes, la justice des femmes, la justice des enfants, la justice des personnes capables autrement, la justice vis-à-vis de la nature.
0: इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल होंगे। प्रकृति के अधिकारों की मान्यता, पर्यावरण, तकनीक, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े नए अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी।
1: Elle a un droit de la nature, c'est-à-dire ben des affaires comme Wakasho, ou prennent un droit de rendre ben case, ou prennent ben droit de poursuivre, ou prennent ben droit, ils prennent un droit fondamental et que l'État et ben local government et individu prennent ce devoir. En même temps, l'État prennent une obligation pour assurer qu'il garde la nature. Par exemple.
0: सरकार का उद्देश्य संवैधानिक ढांचे को आधुनिक बनाना है ताकि संस्थाओं पर जनता का भरोसा मजबूत हो सके। सार्वजनिक संस्थानों में नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई जाएगी और राइट टू रिकॉल लागू किया जाएगा। अन्य सुधार प्रस्तावों में सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक अपील न्यायालय का गठन, मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों के लिए एक खास संवैधानिक विभाग भी।
1: Les peuples signent une pétition et demandent retourne ça ben dimona retourne je poste retourne cette nomination et là c'est même qu'on appelle right to recall et pour moi si on a ça dit pour aider dans un pays comme Maurice qui est petit en taille dit pour aider pour qui ben ministre ou ben député qui n'est je be true to their words.
0: आयोग को शक्तियों के बेहतर संतुलन पर विचार करना होगा, साथ ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कानूनी सिद्धांतों को भी संवैधानिक ढांचे में शामिल करना होगा।
1: Il n'est pas obligatoire. Moi, je dis à l'inverse qu'ils ont été, ils ont besoin assis en public, parce que les faits qu'ils ont été assis en public, siège en public, radio, télévision, la gazette capable de suivre, ils peuvent amener une pédagogie pour le peuple. Nous, conscients que nous gagnons 67, pas de finir véritablement une pédagogie, parce qu'ils disent, on gagne conscient, mais nous pas de participer dans le débat. Tandis que là, nous connaissons le plus, et le minus de toute proposition et comment il est capable d'aider.
0: इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व चीफ जस्टिस बयानोस सिक्वियन करेंगे। उनके साथ कानूनी विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और नागरिक समाज के प्रतिनिधि मिलकर संविधान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए सुझाव देंगे।
2: सऊदी अरब में मौजूद कई मोशन हज यात्रियों के बीच नाराजगी और चिंता का माहौल है। सोमवार 18 मई को हज के लिए पहुंचे करीब 50 हजियों ने अपने लिए तय की गई इमारत में ठहरने से इनकार कर दिया। हजियों का कहना है कि इमारत की हालत खराब है और वहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। स्थिति को देखते हुए उन्होंने इस्लामिक कल्चरल सेंटर मंत्री शकील मोहम्मद और रियाद में मोशन राजदूत से हस्तक्षेप की अपील की है। राजदूत के अनुसार अधिकारियों की ओर से हाजियों को बेहतर व्यवस्था वाली जगह पर ठहरने के प्रयास जारी हैं। रियाद हलीमत को सुनते हैं।
3: Man Haji Mauricien prend contact avec moi, je ne raconte moi man de l'éance qui se peut gagner de ça l'hôtel là, qui se ban problème, je ne même envoyé moi plusieurs man vidéo, li vraiment choquant. Mon téléphone l'opérateur en question, ben jali ou bza faire des choses qui ou donne ban pèlerin un meilleur hôtel. Tout de suite mon cause avec secrétaire ICC, mon raconte problème là. Et l'indiamant comme ça qui lit avec son équipe, je peux aller dans l'hôtel là, je peux aller checker. Et effectivement, ben membre ICC, je peux rendre un meilleur hôtel pour sa man pèlerin mauricien.
2: अंतरिम राष्ट्रपति खुबे हंगली ने एचआईवी एड्स के कारण जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रविवार को उन्होंने काट्रोबोन के सेंजों स्थित शेल्टर में आयोजित प्रार्थना और एकजुटता सभा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर खुबे हंगली ने कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे लोगों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समाज का कर्तव्य है उन लोगों को भी सहायता करना जिनकी पीड़ा और संघर्ष अक्सर दिखाई नहीं देते। अंतरिम राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वे दिवंगत पोप फ्रांसिस के संदेशों से प्रेरणा लेते हैं जो लोगों से अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरों तक पहुंचने का आह्वान करती थी। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। चिकुनगुनिया को लेकर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। 14 मई से यात्रियों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कड़ी एहतियाती उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। मच्छर भगाने वाले जो कदम, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े और मच्छरदानी के

0: पर जोर दिया जा रहा है। मॉरिशस में चिकुनगुनिया के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने देश के लिए दूसरी श्रेणी की स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। डॉक्टर फासिल कोदाबोकस के अनुसार सर्दी शुरू होने के साथ पिछले कुछ दिनों में मामलों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब भी पूरी तरह सतर्क है। इस साल की शुरुआत से अब तक 3478 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 110 मामले अभी भी सक्रिय हैं। डॉक्टर फादिल कोदाबुकस को सुनते हैं, उनसे बात की शैली निर्बन ने, विवरण अभ्युदय का है।
1: डॉक्टर फाजिल कोदाबुकस का कहना है कि इस वक्त स्तर 2 डाला गया है। हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले हफ्तों में इस स्तर को हटा दिया जाएगा, क्योंकि चिकुनगुनिया के मामले की संख्या में गिरावट नोट की जाएगी। इसीलिए मच्छरों की चुभन से हमें बहुत सावधानी लेनी चाहिए। बुबासें, कैट्रोबोन और रोजिल जैसे इलाकों में अभी भी चिकुनगुनिया के मामले पाए जा रहे हैं। इसके अलावा देश के दक्षिण और पश्चिम इलाके में भी इस प्रकार के मामले पाए गए हैं। अतः सही कपड़े पहनने की मांग की जाती है और मॉस्किटो रिपेलेंट भी लगाने की सलाह दी जाती है, खासकर बच्चों के त्वचा पर। रोड्रिक्स में भी चिकुनगुनिया का पहला मामला दर्ज किया गया, इसीलिए जनता से सतर्क रहने की मांग की जाती है।
0: मॉरिशस सब इलाके में एक बड़े मेडिकल हब के रूप में अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार मेडिकल टूरिज्म के एक टिकाऊ मॉडल को विकसित कर अफ्रीका, हिंद महासागर इलाके और कुछ यूरोपीय देशों के मरीजों को आकर्षित करना चाहती है। लेकिन ये पहल सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं, इसका उद्देश्य कुशल रोजगार के नए अवसर पैदा करना और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाना भी है। मॉरिशस के पास इस तेजी से बढ़ते सेक्टर को विकसित करने के लिए कई मजबूत आधार पहले से मौजूद है। सरकार की यह रणनीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: विशेष चिकित्सा ढांचे को आधुनिक बनाना, स्वास्थ्य सेक्टर में अधिक प्रशिक्षित कर्मी तैयार करना और पर्यटन तथा चिकित्सा क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाना। जूनियर टूरिज्म मंत्री सिडनी पिया को सुनती है।
2: Cette vision-là s'inscrit dans une logique de durabilité économique et nous focalise beaucoup plus sur la valeur ajoutée que sur les chiffres des arrivées. Ça pour créer un emploi.
1: आर्थिक टिकाव अवधारणा को ध्यान में रखा जा रहा है, इसीलिए हम पर्यटकों के आगमन की संख्या पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसी से हम रोजगार की गुणवत्ता और स्वास्थ्य प्रणाली को ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। मॉरिशस के पास सब कुछ है, चाहे प्राकृतिक हो या ढांचागत। हमारे देश में नीति की स्थिरता पाई जाती है, एक सुरक्षित पर्यावरण भी है और इलाकाई तथा वैश्विक स्तर पर हवाई कनेक्टिविटी भी बढ़िया है, जो पर्यटन के क्षेत्र में हमारे लिए एक अच्छी छवि बनी हुई है। पर्यटन से जुड़ी नीति में 3 स्तंभ हैं। हमारे चिकित्सा तंत्र, खासकर प्राइवेट सिस्टम का मूल ढांचा बढ़िया है। आधुनिक क्लिनिक के निर्माण को लेकर ज्यादा निवेश किए गए हैं, जबकि डायग्नोसिस केंद्र अत्याधुनिक है, जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजियों से लेस है। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों, नर्सिंग अफसरों, विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने का भी अवसर मिलता है। अतः हम अंतर्राष्ट्रीय मंडी की बढ़ती मांगों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं।
0: मॉरिशस में समावेशिता और को और मजबूत बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। अब कम दृष्टि वाले और दृष्टिहीन अपने गाइड डॉग के साथ मेट्रो एक्सप्रेस में यात्रा कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य उनकी आवाजाही को आसान बनाना और रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त ये गाइड डॉग्स अब मेट्रो एक्सप्रेस स्टेशन और ट्रेनों के भीतर भी जाने की अनुमति पाएंगे। लाभार्थियों के लिए ये पहल में अधिक सुलभ और समावेशी समाज की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गल्फ देशों के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने मंगलवार के लिए प्रस्तावित ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल रोक दिया है क्योंकि गंभीर बातचीत जारी है। ट्रूथ सोशल पर किए गए अपने संदेश में ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं ने उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया कि एक ऐसा समझौता होने जा रहा है जो अमेरिका के लिए बहुत स्वीकार्य होगा और इसमें ईरान के

पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। हालांकि ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि कोई स्वीकार्य समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका किसी भी क्षण ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार रहेगा। और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर रहेगा। पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान आज सुबह और दोपहर बाद भी देश भर में मौसम सुहाना रहेगा और धूप खिली रहेगी। केवल देर रात को देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रह रहकर बरसात हो सकती है और बादल भी घने रहेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की मांग की जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान सहली इलाकों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। 6:32 पर सूर्यास्त 5:40 पर होगा।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजन, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
0: गंगू लेन लिस्काली में 94 साल की 94 की करुणावती गोकुल की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 1 बजे उनके बेटे सतीश मंगल के मकान लिस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेंसा कॉम्पो लिस्काली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 1 PM। पास्कल रोड प्रिजेवेडिया में 82 के 82 के लकी नारायण दौलत की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मोहित के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे कैलाश तथी दौलत पास्कल रोड प्रिजेवेडिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पास्कल रोड प्रिजेवेडिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 1 PM। रॉयल रोड पालमा कटोबोन में 60 के 60 के लाल राज गजाधर की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सतीश तुल्य के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनकी पत्नी माया गजाधर के मकान कटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 2 PM। सुल्फेरिनो नंबर 4 वाकुआ में 62 की मिसिज पारामती बलदाऊ की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम सियू बादल, लोग उन्हें उमा के नाम से अधिक जानते थे। थी आज दिन की 1 बजे उन्हीं के मकान वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालों सुल्फेरिनो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 1 PM। एम्पास जुवरांस डेपिनेमी 72 के 72 के भगवान दास जीतुआ की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनकी पत्नी जयवंती जीतुआ के मकान एम्पास जुवरांस डेपिनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजालिन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 2 PM। रॉयल रोड रियोबेल सुरीनाम में 72 की 72 के नवरतन हीरा की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें नान के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान रॉयल रोड रियोबेल सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुइया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 10 AM। एवेन्यू उस्मान सैंपोल में 79 की सुभावती खुशी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे रवि अविनाश उचोईबो के मकान सैंपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टू डी एट 10 AM। गोपाला लेन मेबर्ग में 83 की 83 की पेचाई कोरा चिन्या रामुना की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सूर्या के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान मेबर्ग

से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बू में बक्की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडी एट 10 AM। रॉयल रोड रिश्तिया में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के धनराज बिहारी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सुनील कोकू के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उनकी माता अनीता गनू के मकान रिश्तिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडी एट 10:30 AM। SSO Lane बोनाक्योई में 68 साल की देवंती लकनारायण की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह के 10:30 बजे उनके बेटे विक्रम भंजन के मकान SSO Lane बोनाक्योई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोनाक्योई की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडी एट 10:30 AM। नंबर 12 एवेन्यू लासूस पाल्मा काट्रोबोन में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की लक्ष्मी सुनिया की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम ईटू, लोग उन्हें आजी गुनू के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान काट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। मोंडेजिया रोड प्लेनमानियों में 54 साल की सीला गजाधर की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम ननलोल, लोग उन्हें नीता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उन्हीं के मकान प्लेनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

Sports News. सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीमियर लीग टाइटल आर्सेनल के एकदम करीब, केवल 1-0 की जीत, 3 कीमती अंक द गनर्स अपना काम कर पाए। काई हावर्ट्स का गोल फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में टेंशन था, दबाव था, हावर्ट्स को रेड कार्ड भी मिल सकता था। आर्सेनल एक हाथ ट्रॉफी पर। आज अगर बोर्नमुथ को नहीं हरा पाया मैनचेस्टर सिटी तो आज ही आर्सेनल चैंपियन बन जाएगा। सीजन का आखिरी मैच क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ है, जबकि बोर्नमुथ के बाद मैनचेस्टर सिटी का सामना एस्टन विला से होगा। आज के दो मैच बोर्नमुथ वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी वर्सेस स्पर्स यानी टोटनहम हॉटस्पर, चारों टीमों के लिए जीत कीमती होगी जबकि हार घातक। बोर्नमुथ के लिए चैंपियंस लीग में जाने का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। अगर आज बोर्नमुथ की जीत हुई तो लिवरपूल का पांचवा स्थान खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि एक तो बोर्नमुथ केवल एक अंक पीछे होगा, ऊपर से लिवरपूल का आखिरी मैच ब्रैडफोर्ड के खिलाफ है, जो जी जान से खेलेगा यूरोपा लीग या कॉन्फ्रेंस लीग में जाने के लिए। बोर्नमुथ का आखिरी मैच नॉटिंघम फॉरेस्ट के यहाँ है, जो रिलीगेशन से बचने के बाद रिलैक्स मोड में है। सो आज का मैच कोई नहीं हारना चाहेगा, ड्रॉ भी घातक साबित होगा दोनों टीमों के लिए। रिलीगेशन से बचने के लिए टोटनहम हॉटस्पर को चाहिए मात्र एक ड्रॉ, एक अंक। आज लंदन डर्बी, चेल्सी वर्सेस टोटनहम हॉटस्पर। चेल्सी यूरोपियन फुटबॉल की तलाश में है, यूरोपा लीग या कॉन्फ्रेंस लीग, जबकि टोटनहम हॉटस्पर सर्वाइवल मोड में है, रिलीगेशन से बचने का अच्छा मौका है। चेल्सी के पास 49 अंक है, 49 पॉइंट्स।

यूरोप में खेलने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। मैथमेटिकली अलाइव लेकिन इनक्रेडिबली स्लिम, मतलब हालत नाजुक है। अभी चेल्सी 10वें पोजीशन पर है, 10वें स्थान पर 49 पॉइंट्स, बचे हैं 2 मैच। बोर्नमुथ 6 अंक ऊपर है, ब्राइटन 4 अंक ऊपर, फिर है ब्रेंटफोर्ड और संडरलैंड। मैनचेस्टर सिटी ने एफए कप जीता, मतलब 6ठा स्थान यूरोपा लीग और 7वां स्थान कॉन्फ्रेंस लीग। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार चेल्सी का यूरोपियन फुटबॉल में जाने की संभावना केवल 5% है। सो आज चेल्सी वर्सेस टोटनहम हॉटस्पर वाला मैच दोनों टीमों के लिए सीजन डिसाइसिव, निर्णायक है। मैनचेस्टर सिटी का मैनेजर पेप गार्डियोला क्लब को अलविदा कहने के लिए तैयारी कर रहा है। खबर है सीजन के अंत में पेप गार्डियोला जा रहा है, पर सिटी के अधिकारियों ने कहा कि एक साल है कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में, पर फेयरवेल की तैयारी शुरू हो रही है। याद दिला दें, यूरोपा लीग का फाइनल मैच कल खेला जाएगा फ्रीबर्ग और अस्टन विला के बीच। मैच इस्तांबुल के टूप्रास स्टेडियम में खेला जाएगा, बेसिकतास पार्क में। अस्टन विला तो पहले से चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हैं। अगर फ्रीबर्ग की जीत हुई तो हिस्टोरिक फर्स्ट टाइम चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन। यूरोपा लीग स्पेशलिस्ट उनाई एमरी 4 बार ये टूर्नामेंट जीत चुका है, अब 5वें टाइटल की तलाश में है उनाई एमरी। कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल 27 मई को खेला जाएगा क्रिस्टल पैलेस और रायो वालेकानो के बीच। जो जीतेगा वो जाएगा यूरोपा लीग में। और बता दें चैंपियंस लीग का महाफाइनल खेला जाएगा 30 मई को, आर्सेनल वर्सेस पारी सैन जर्मेन। क्रियोली भाषा में एक कहावत है, अप्रे ला मोर्ट ला टिजान, यानी मतलब आफ्टर डेथ द हर्बल टी, मृत्यु के बाद काढ़ा। प्रीमियर लीग के प्रोफेशनल गेम्स मैच ऑफिशियल्स के अनुसार नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का गोल जो ब्रायन एम्बुमो के हाथ से लग कर गया था, कुन्हा द्वारा स्कोर किया गया था, फाउल था, गोल डिसअलाउ होना चाहिए था। रेफरी के अनुसार हैंडबॉल एक्सीडेंटल था। रेफरी बॉस हावर्ड वेब ने स्वीकार किया कि गोल डिसअलाउ होना चाहिए था, गोल जायज नहीं था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के हक में एक और हैंडबॉल गोल ड्रामा। वेन रूने ने कहा कि मोहम्मद सलाह स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं और एनफील्ड रोड में उसके आखिरी मैच में उसे खेलने का मौका नहीं देना चाहिए, शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम एनफील्ड फिनाले। सलाह ने कहा था कि लिवरपूल को फिर से हैवी मेटल अटैकिंग टीम बननी चाहिए जिससे अन्य टीमों को डर हो, भयभीत हो। सलाह जा रहा है पर जाते जाते कह रहा है कि आर्ने स्लॉट का स्टाइल लिवरपूल के लिए ठीक नहीं है, यर्गन क्लॉप का हैवी मेटल अटैकिंग फुटबॉल चाहिए। क्रिकेट आईपीएल 2026 के ग्रुप स्टेज में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ईशान किशन 70 रन बना पाया। लीग टेबल में कोई खास बदलाव नहीं है, अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 18 अंक लिए पहले स्थान पे है, फिर 16 अंक है गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। पंजाब किंग्स टॉप 4 पूरा करता है, उसके पास है 13 अंक। राजस्थान रॉयल्स के पास है 12 अंक, चेन्नई सुपर किंग्स के पास 12 अंक। फिर आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई हैं। फाइनल स्पॉट के लिए चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स अभी तक उम्मीदवार हैं। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। रोड टू वर्ल्ड कप 2026 में आज हम ग्रुप जी पर चर्चा करेंगे, ये होगा RM2 पर 8:30। इससे पहले आपको बता दें फुटबॉल ब्राजील के स्क्वाड में नेमार को रखा गया है, अभी नेमार सांतोस के लिए खेलता है। ब्राजील का ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर है लेकिन पिछले 3 सालों से ला सेलेसाओ के लिए नहीं खेल पाया है।
कोच आंसेलोची ने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया। इस टीम में अलिसन बेकेयर, कैजिमीरो, मार्कस कुन्हा, ब्रूनो गुमारेस, गैब्रियल, इगो चागो, रायन, ये सब प्रीमियर लीग के खिलाड़ी हैं। साथ में विनिशियस जूनियर, राफीना, एंड्रिक मार्किनोस जैसे नामी खिलाड़ी हैं। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आगे दीजिए, नमस्कार आप सभी।

0: परवीन की ओर से शुभ दिन।
1: किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से पेश बातोहर खाते नुथावाय नुलावेनिया सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सव्य विजेता लिमिटेड जुनबुतन क्यूपिप में हक खुजत वंजा 10 गो मेल या फीमेल मशीन ऑपरेटर साथ में 10 गो मेल या फीमेल असिस्टेंट फैक्ट्री वर्कर अपनी काशो खातिन फोन करिए सेकंड का 33 35 08 पर या 59 23 82 पर या अपन सीवी विदा करिए बाई मेल sariva@itnet.mu पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 22 मई 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जूनास इंडस्ट्रीज लिमिटेड जुन जूनास इंडस्ट्रीज सेंटर विलो स्ट्रीट पोर्ट लुइस में हक हो जाता दुगो मेल कैबिनेट मेकर जे ग्रेड 9 ले पहड़ लेबा 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा साथ में चला एगो मेल पेंटर जे ग्रेड 9 ले पहड़ लेबा 2 बरिस के एक्सपीरियंस बा और 5 गो मेल मेटल शीट वर्कर जे ग्रेड 10 ले पहड़ लेबा 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा। याद रखिये की तोहर एप्लीकेशन चाहेला रजिस्टर्स पोर्ट द्वारा विदा करेगी तोहर कॉपी जुन एजुकेशनल सर्टिफिकेट बचाना विदा करेगी जूनास इंडस्ट्रीज लिमिटेड जूनास इंडस्ट्रीज सेंटर 1 विलो स्ट्रीट पोर्ट लुइस। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 21 मई 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिजी ग्लास कंपनी लिमिटेड जून रॉयल रोड कालबास में हक खोजत वंजा 10 गो मेल फैक्ट्री ऑपरेटर्स 10 गो मेल वेल्डर और साथ में 10 गो मेल पेंटर अपनी काशो खातिन फोन करिए वैनकत 33 406 पर या अपन सीवी विदा करिए charlene.lando@riziglass.mu पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 मई 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग चुका माकामिश कंपनी लिमिटेड जून रॉयल रोड बनाके में हक खोजत वंजा ड्राइवर गुड्स व्हीकल दुगो मेल और साथ में तोहरा चाहना एक बरिस के एक्सपीरियंस रहेगी अपनी काशों खातिन फोन करिए सेकंड कत का तो मैं ऑन सेकंड नेव सेकंड स्वीट पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 6 जून 2026। सेक्टर रेस्टोरेंट ब्लू आक्वा वर्ल्ड लिमिटेड जुन लुमा ओ थ्रू दो दूस में हक हो जाता एगो मेल या फीमेल कुक जे फॉर्म थ्वाली पहड़ लेबा एगो मेल या फीमेल वेट या केशियर जे फॉर्म कत या एस सी ले पहड़ लेबा एगो मेल या फीमेल रेस्टोरेंट सुपरवाइजर जे एस सी या एच एस सी ले पहड़ लेबा साथ में एगो फीमेल केशियर जे एस सी या एच एस सी ले पहड़ लेबा साथ में चाहला हेल्पर एगो मेल और एगो फीमेल जुन के सेकेंडरी लेवल एजुकेशन बा और साथ में एगो मेल सुपरवाइजर जे एच एस सी ले पहड़ लेबा एप्लीकेशन खातिन अपन सीवी विदा करिए बाय मेल ऑन admin@batoviki.com या m-dodon@outlook.com या तो फिर कभी भी आप लोग सकबज जाए ब्लू आक्वा वर्ल्ड लिमिटेड लुमाओ थ्रू द दूस। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 15 जून 2026। सेक्टर रेस्टोरेंट हंग्री बर्ड्स लिमिटेड जन रॉयल रोड व्यू मूले कॉम्प्लेक्स रोजवेल में है खोजत वंजा 3 गो मेल कुक जेकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा अपनी काशों खातिन अपन सीवी विदा करिए बाय मेल ऑन hungrybirds.hr@gmail.com। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 25 मई 2026। सेक्टर टूरिज्म आसो विला लिमिटेड जन कोस्टल रोड लापेलूज बिलमाओ में है खोजत वंजा 5 गो मेल हाउस कीपर जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा अपनी काशों खातिन फोन करिया 715 25 या सकान कत सकान सिद वेंदे जिसित पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 22 मई 2026। सेक्टर टूरिज्म वाटर स्पोर्ट्स विलेज लिमिटेड टिया पैराडाइज कोव बुटीक होटल जन औसलागे कापमारी रू में है खोजत वंजा 4 गो मेल हेड वेटर जे एस सी या एन से काट कर लेबा साथ में 2 बरस के एक्सपीरियंस एगो मेल बार्टेंडर जे एच एस सी ले पढ़ लेबा या तो फिर आप कर ले हो NTC 2 या NTC 3 साथ में 1 बरस के एक्सपीरियंस बा 3 गो मेल शेफ दे पाची जे एस सी ले पढ़ लेबा या NC 3 कर लेबा और 2 बरस के एक्सपीरियंस और साथ में छाला 3 गो मेल कुक जे फोम काट ले पढ़ लेबा या कर ले हुआ NC 3 और 2 बरस के एक्सपीरियंस चाहेला 2 गो मेल हाउस कीपिंग असिस्टेंट जे एस सी ले पढ़ लेबा साथ में 1 या 2 बरस के एक्सपीरियंस बा और चाहेला 3 गो फीमेल स्पा थेरापी जे एस सी ले पढ़ लेबा लेकिन चाहला 1 या 2 बरिस के एक्सपीरियंस अपनी काशों खातिन आप लोग कभी भी सकबा जा जाए एगो वॉकिंग इंटरव्यू खातिन पता है वाटर स्पोर्ट्स विलेज लिमिटेड टिया पैराडाइज को बुटीक होटल औसलागे कैप मालिरे। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 मई 2026। सेक्टर टूरिज्म एंड साइट सींग बातोविकी लिमिटेड जन लुमाओ थ्रू दो दूस में है खोजत वंजा एगो फीमेल केशिया या सेल्स गर्ल जे फोम कातले पढ़ लेबा या एस सी ले और साथ में चाहेला एगो मेल या फीमेल हेल्पर जे फोम दे या फोम थ्वाले पढ़ लेबा एगो मेल स्कीपर जे एस सी ले पढ़ लेबा अपनी काशों खातिन फोन करिए 480705 पर या 58 36 87 44 पर

या 57, 57, 57, 27 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 29 मई 2026। सेक्टर एग्रीकल्चर एंड लैंडस्केपिंग खाविन कोको फ्रेश लिमिटेड जो लक्ष्मण रोड बिलविदिया में है खोजता 15 गो मेल ग्रेड 2 लैंडस्केप और तुम्हारा चाहे एक बार इसके लिए रहे के और आप लोग सकबज एप्लीकेशन खातिन फोन करे 59 07 24 09 पर या तो फिर आप लोग कभी भी सकबज जाए गाविन कोको फ्रेश लिमिटेड जो लक्ष्मण रोड बेलवेदिया में है। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 6 जून 2026। सेक्टर एग्रीकल्चर नवगिरी लिमिटेड जो बनान मिडलैंड में हक हो जाता 2 गो मेल एग्रीकल्चरल लेबर जगन एक बार इसके एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 57, 57, 57 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 मई 2026। सेक्टर एग्रीकल्चर ओमदत सुकन जो कालाचंद रोड गुडलैंड में हक हो जाता 10 गो मेल एग्रीकल्चरल लेबर जिनका 1 बार इसके एक्सपीरियंस बा 2 गो मेल लॉरी ड्राइवर जिनका 5 बार इसके एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 52 57 25 00 पर और अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 29 मई 2026। सेक्टर रिटेल सेल एसएस कलेक्शन लिमिटेड जो की निमेरो 71 रोज गार्डन रोजबेल में है खुजाता 1 गो मेल और 3 गो फीमेल सेल्स पर्सन जे फॉर्म काटले पढ़ लेबा एप्लीकेशन खातिर कॉल करिए 627 62 30 पर या 57 78 3000 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 मई 2026। सेक्टर रिटेल सेल ईस्ट कोस्ट कस्टम्स कंपनी लिमिटेड जनरल रोड रिविया जगह पाओ में है खुजता 2 गो मेल या फीमेल शॉप असिस्टेंट जे फॉर्म काटले पढ़ ले बा लेकिन चाहेला कम से कम 6 महीने के लिए एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 57 56 75 14 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 मई 2026। सेक्टर रिपेयर एंड सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स साही ऑटो लिमिटेड जनरल रोड को रांची में है खुजता 2 गो मेल ऑटोमोबाइल स्प्रे पेंटर जिनका 3 बार इसके एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 57 25 63 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 29 मई 2026। सेक्टर रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स किशन ऑटोमोटिव सर्विसेज लिमिटेड जो ब्रांच रोड खुशनुआ में है खोजाता 4 गो मेल मोटर मैकेनिक जिनकर 3 बार इसके एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर तुम्हारा चैनल फोन करे के 57 69 09 74 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 20 मई 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन AM Zogo and Sons Contracting Limited जिन ब्रांच रोड लालमाची में है खोजा 53 गो मेल इलेक्ट्रिशियन जिनकर 2 बार स्किल एक्सपीरियंस बाद 3 गो प्लम्बर मेल जिनकर 2 बार स्किल एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 59 46 22 31 पर या तो फिर कभी भी आप लोग सकबज जाइए AM Zogo and Sons Contracting Limited ब्रांच रोड लालमाची। फोन नंबर है 59 46 22 31 और आप लोग खातिन अर्जी भेजे के आखिरी तारीख रखल गलबा 7 जून 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन लियोनेल क्रिश्चियन लुलियेव इक्विपमेंट्स लिमिटेड जो मोटरवे लोअर वेल में है खोजा 52 ग्रेड 2 मेंटेनेंस ऑफिसर यानी कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड इक्विपमेंट खातिन और चाहेला 2 गो मेल जिनकर 12 महीने के लेक्स में एप्लीकेशन खातिन आप लोग फोन करिए 57 09 03 63 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 22 मई 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन आविया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो बसंत राय स्ट्रीट लाहौजा में है खुजा 54 गो मेल मेसन जिनकर 2 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 4 गो मेल कॉर्पेंटर जिनकर 2 बार स्किल एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 57 77 34 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 मई 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन स्क्वायर डील मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो सीबे रोड गुडलैंड में है खुजा 52 मेल मेसन जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 50 गो मेल स्टील फिक्सर जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 100 गो मेल कॉर्पेंटर जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 10 गो मेल बिल्डिंग पेंटर जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 10 गो मेल फोरमैन जिनकर 5 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 5 गो मेल GCB ऑपरेटर जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 3 गो मेल एक्सकावेटर ऑपरेटर जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 10 गो मेल मैकेनिक जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 7 में 10 गो मेल हैवी व्हीकल ड्राइवर जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा और 5 गो मेल कुक जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा। एप्लीकेशन खातिर कॉल करिए 23 77 77 पर या तो फिर अपन सीवी विदा करिए बाय मेल श्रवण एट स्क्
quedcalms.com पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 29 मई 2026। पब्लिक सेक्टर में तुरखाती

0: जुन काम रखल गल बा चेला दिखिला जा लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन लोकल गवर्नमेंट सर्विस खोजता कारपेंटर और एप्लीकेशन खातिन द्वारा चाहला जाए कि http://lgsc.gov.org पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 18 मई 2026 जबकि म्युनिसिपल टाउन काउंसिल ऑफ बुबास होजिल खोजता ड्राइवर रोस्टर बेसिस पर और एकर खातिन जाइए आप एप्लीकेशन खातिन http://lgsc.gov.org पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 25 मई 2026। अब देखिला जा प्राइवेट हाउस होल्ड की तरफ तो यहाँ पर चहला हाउसमेड रिजों हा रोजबेल और एप्लीकेशन खातिन द्वारा चाहला कॉल करे कि EIC रोजबेल 627-48-33 पर जबकि होशनुआ रिजों खातिन कामबा कुक हाउसमेड और गार्डनर के और एकर खातिन द्वारा चाहला फोन करे कि EIC रिविया जुरांपा 412-69-25 पर रिजों नुवेल फ्रांस में भी चाहला मेल हाउसमेड एकर खातिन आप लोग के चाहला कॉल करे कि EIC रोजबेल 627-48-33 पर तो ई रहल नु थावाई नु लाविनिया जन तोहर खातिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में MBC के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गल।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: चलिए समय 7:13 हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं ये विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई और ये विज्ञप्ति है शमय घनिये के गांव में रहने वाले निवासियों के लिए जिन्हें सूचित किया जाता है कि गुरुवार 21 मई को दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुबह का नजराना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये रेडियो मॉरिशस का प्रसारण AM2 का प्रसारण है। मीडियम वाट 19 किलोहर्ट्ज पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:15। आप सभी का साथ दे रही है रत्ना, पुनः हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। चलिए सुबह का नजराना कार्यक्रम जो रखा जाएगा जारी 9 बजे तक, वैसे हम आपकी सेवा में 11 बजे तक यही हैं। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे चिंतन के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी जमन। और सदाबहार पुराने गीतों के साथ आज की सुबह को और भी सुरीली मज़ेदार बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चिंतन के साथ। स्वागत करते हैं डॉक्टर लक्ष्मी जमन का।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: काम करने वालों को आराम मिले और आराम करने वालों को काम मिले, तो इसी से बहुत सी शिकायतें दूर हो जाएं।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
1: झलकियां
2: झलकियां
3: रेडियो मॉरिशस।
2: चलिए झलकियों के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज दिन भर में कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं आपके लिए। जी हाँ, सुबह का नजराना कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और वैसे ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा दिन के यानी सुबह के 9 बजे तक, पर इसके अंतराल में आप 8 बजे बिल्कुल सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार। 8:15 पर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सुपरस्टार से जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक बहुत ही बड़ा नाम कमाया। अब उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। बिल्कुल 8:50 पर हम सुनेंगे किरण जानकी को हमारी धरोहर कार्यक्रम में और हमारे देश की कुछ ऐसी बेहतरीन जानकारियों के साथ वे उपस्थित होती हैं और साथ ही साथ भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए जुड़ेंगे हम 9 बजे के समाचारों के साथ। 9 बजे के समाचारों के बाद बेशक आपका साथ देंगी सुमिता सरकार और आज की चर्चा का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। और हम आपको ये भी बताते चले कि आज का कार्यक्रम इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया जाएगा ये, और हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर राजशेखर, तो आप जरूर उनका साथ दीजिएगा। और ये कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर सीधा प्रसारित होगा, साथ ही साथ एमबीसी के तीसरे चैनल पर आप इसे देख पाएंगे और फॉलो कर पाएंगे रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर। इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा 3 से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर, और ये कार्यक्रम वैसे चलेगा 10 बजे तक। 10 बजे के समाचारों के बाद पुनः मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी भक्ति धारा कार्यक्रम को लेकर, जहां पर भक्तिमय भजनों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में ठीक 10:15। 11 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। 11 बजे के समाचारों के बाद विविध भाषाओं के कार्यक्रमों को सजाया जाएगा, जिसकी शुरुआत

होगी शम्मे फरोजा कार्यक्रम के साथ, और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे उर्दू भाषा में, और पेशकश होगी सैयदा सुबाई की। 12 बजे वर्षा लेकर आएंगी तेलुगु भाषा का कार्यक्रम। 12:30 बजे सीताबाई दरमिया मराठी गीतों को कार्यक्रम लेकर उपस्थित रहेंगी। 1 बजे आरएससी की प्रस्तुति में होगा तमिल भाषा का कार्यक्रम। 1:45 बजे आप एंजॉय कर सकते हैं गुजराती गीतों के कार्यक्रम को अमिता की प्रस्तुति में। ठीक 2 बजे डेविड की प्रस्तुति में रहेगा मैंडरीन का कार्यक्रम। 2:30 बजे हमारा दैनिक कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर आएंगी रोशनी। ये कार्यक्रम चलेगा शाम के 4 बजे तक। 4 बजे पुनः तमिल भाषा का कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत करेंगी कलाईवानी वीरन, ये चलेगा 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद यानी शाम के 5 बजे उषा की प्रस्तुति में भूले बिसरे गीत। शाम 6 बजे देश विदेश की खबरें। 6:30 बजे पुनः विविध भाषाओं के कार्यक्रम मैंडरीन के साथ शुरू होंगे। हॉन्ग हॉन्ग की प्रस्तुति में रहेगा ये कार्यक्रम ठीक 6:30 बजे। 7 बजे पुवना लेकर आएंगी तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 बजे कृतिका की प्रस्तुति में तेलुगु भाषा का कार्यक्रम। 7:50 पर श्री श्रामा की प्रस्तुति में रहेगा मराठी भाषा का कार्यक्रम। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम, इस भक्ति में यात्रा में आप जुड़ सकते हैं जिसे प्रस्तुत करेंगी देवीना। 8:40 पर निसार अख्तर की पेशकश में महफिल शब, ये उर्दू भाषा का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। और उसके तुरंत बाद 2 घंटे का सफर भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत करेंगी उषा कौर। और रात के 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। रात के 11 बजे सुनहरे पल का कार्यक्रम लेकर आएंगी नीतू शाह। पुराने गीतों का ये सफर एंजॉय कर पाएंगे रात के 11 बजे से 12 बजे के बीच। और बेशक रात के 9 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक रेडियो मॉरिशस के सभी प्रसारित कार्यक्रमों को आप सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर भी। रात के 12 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ओवरनाइट प्लेलिस्ट जो सजाई जाएगी हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट द्वारा। वैसे आपको ये भी याद दिला दे, दिन के 2 बजे से 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर पुनः मैं आपके साथ जुड़ूंगी उड़ान की कहानी को लेकर। और आज की उड़ान की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी जहां पर हम जुड़ेंगे एक ऐसी महिला के साथ जो है तो एक ऐसे कारोबार के साथ जुड़ी, आचार बनाती हैं और बहुत ही सशक्त हैं। और सुनीता करनौत आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगी, तो ज़रूर आप साथ दीजिएगा दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर, जिसका सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस, माफ़ कीजिएगा, रेडियो मनोरंजन के फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर पाएंगे। तो आइए पुराने गीतों के सफर को जारी रखते हैं और सुबह को और मज़ेदार और दिलचस्प बनाते हुए गीतों को एंजॉय करते हैं। वैसे आपको याद दिला दें, अभी थोड़ी देर पहले जो गाना हमने चलाया तलत महमूद की आवाज़ में, 1956 के दौर का ये गीत था। और इस फिल्म में खुद नज़र आए थे तलत महमूद साहब एक्टर के रूप में, साथ नज़र आई थी शशिकला और रूपमाला, संगीत दिया था स्नेहल भाटकर का। और इसी के साथ चलिए पुराने गीतों के इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं, फिल्म छोटी बहन का ये गीत लता जी की प्यारी सी आवाज़ में।

चलिए 7:30 और मजेदार गीतों के कार्यक्रम में आपकी प्यार भरी बातें हमें बिल्कुल फोन से चिपका के रखती है। बहुत बहुत प्यार आप सभी को। और यहाँ पर अभी भी काफी सारे कॉल्स हैं जो वेटिंग पर हैं, हम आपको बताते चले। बिल्कुल आपके प्यार भरे मैसेजेस, प्यार भरे फोन कॉल्स को हम पूरी तरह अटेंड करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नाम रह जाते हैं, किसी की फरमाइशें हम पूरी नहीं कर पाते, पर दिल से कोई रंजिश मत रखिएगा, बस आप हमें समझते हैं प्यार से, यही बहुत बड़ी बात है। और चलिए यहाँ पर मजेदार गीतों के इस सफर में हम तो यही कहेंगे कि बिखरने के बहाने हजार मिलेंगे, बिखरने के बहाने हजार मिलेंगे। आइए कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हमें जुड़ने के मौके मिले हजार। और तलत महमूद के कुछ ऐसे गाने, हमसे किसी ने कहा था कि हो सके तो आपके सिलेक्शन में तलत महमूद को भी शामिल करिएगा। बिल्कुल हमारी कोशिश यही होती है कि कुछ ऐसे अनसुने गाने हम लेकर आएं जिससे कि आपकी सुबह टकाटक बन जाए। तो चलिए एक और प्यारा सा गीत तलत महमूद साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना, फिल्म है जासूस। और वैसे हम ये भी बताते चले कि ये गाना हमारे प्रोफेसर वेद प्रकाश तोरल जी का बहुत ही फेवरेट गाना है, और इसी गीत को आइए सुनते हैं साथ मिलकर।

चलिए बढ़ रहे हैं हम आगे। 7:38 हो गए हैं और इसी के साथ आज की छोटी सी बात में हम पहुंच गए हैं एक और ऐसी कहानी को लेकर जो हो सकता है कि आपने कई बार अलग अलग अंदाज में सुनी होगी, पर इसका मैसेज बहुत ही गहरा। और ये कहानी है एक ऐसे गांव में रहने वाली एक महिला की जिनका स्वभाव बहुत ज्यादा गुस्से वाला था, और गुस्सा तो जैसे उनकी नाक पर रहता था। छोटी छोटी बात पर तुनक जाती थी और लोगों को भला बुरा कह देती थी। आस पड़ोस में रहने वाले लोग उससे बड़े ही परेशान रहने लगे, उससे बात करने से घबराते थे। घर कैसे अछूता रहता, उसका घर भी कह सकते हैं कि हर एक छोटी छोटी बात में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती थी, कलह खड़ा हो जाता था, और कलह का कारण बन जाती थी वो उनका गुस्सा। और उस स्त्री को एहसास था कि गुस्सा उसके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अक्सर गुस्सा उतरने के बाद वो पछतावे की आग में हमेशा जला करती थी, लेकिन गुस्से पर काबू पाना ये तो बिल्कुल ही उनके हाथ के बाहर हो गया था। और उनके और इसके कारण उनको बहुत ही ज्यादा लाचारपन महसूस होता था। एक दिन गांव में एक महात्मा पधारे। उनकी कीर्ति जब इस महिला के कान तक पहुंची तो उसने निश्चय किया कि भाई मैं ये महाराज जी से मिलकर अपने गुस्से को दूर करने का उपाय जरूर पूछूंगी। महात्मा को मिलकर उसने कहा कि बाबा जी, आज तो मैं आपसे आज के हमारे जो जीवन में ये जो कलह हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, गुस्से का कारण बनता जा रहा है, ये गुस्सा जो है वो मेरे जिंदगी को तबाह कर रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, निराश ना हो, मैं आपको एक शीशी दूंगा। और शीशी देकर वे बोले कि पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने वाली दवा है। अब से जब भी तुम्हें कोई ऐसा लगे कि गुस्सा आ रहा है, बस गुस्सा आने की शुरुआत हो रही है, तो इस शीशी से मुंह लगाकर बस 2 घूंट पीना, ज्यादा नहीं पीना है, केवल 2 घूंट ही इसमें से पीना है। अब वो महिला ने कहा, मां बहुत ही खुश हो गई। वो उस दवाई को लेकर घर पहुंची और जैसे जैसे महात्मा ने उन्हें संदेश दिया था उसी प्रकार से निर्देश के अनुसार वो हमेशा जब भी गुस्सा आने के कगार पर होता था तो वो शीशी का मुंह खोलती और 2 घूंट लगा लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। 7 दिन के बाद जब शीशी की दवा खत्म हो गई तो फिर उसने कहा कि अब तो मुझे फिर जाना पड़ेगा महात्मा जी के पास, दवाई तो खत्म हो गई। वहां पहुंची और कहा, गुरुवर, आपने मुझे गजब की दवा दे दी है, पीते ही मेरा गुस्सा छू मंतर हो जाता है। अब वो दवा खत्म हो गई है गुरुजी, कृपया करके फिर से आप में मुझे एक दूसरी शीशी भर के दें। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवाई थी ही नहीं, उसमें बस सादा पानी भरा हुआ था। क्रोध आने पर जब भी तुम उसे उस शीशी से 2 घूंट लगाती तो शीशी मुंह में होने के कारण तुम कुछ बोल नहीं पाती थी, क्रोध बस ऐसे ही

0: दूर होने लगा। अब से बस यही किया करो। इस छोटी सी कहानी की सीख बस यही है कि जब भी क्रोध आए मुंह बंद रखना है। कई बार कहते हैं ना कि दोस्तों आज के समय में गुस्सा आते ही हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो सामने वाले को पूरी तरह से कई बार तहस नहस कर देती है, और हम इस गुस्से में ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि हमारे बोले गए शब्द सामने वाले को किस कदर छलनी कर देते हैं। आज की ये छोटी सी कहानी, ये छोटी सी बात बस हमें यही सिखाती है। लेकिन आसान नहीं होता, बेशक आसान नहीं होता है अपने आप पर काबू रखना, गुस्से पर काबू रखना, क्योंकि कई सारे लोग सोचते हैं कि भाई जब तक मैं उन्हें बातें सुना ना दूं तब तक मुझे चैन ना आए। लेकिन जब हम बातें सुना देते हैं तो उसके पीछे भी हमें बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है, और बस यही है आज की कहानी का मर्म। और हम तो यही कहेंगे कि आज का जो ये अगला गीत है, वैसे ये जो अगला गाना है बहुत ही मज़ेदार सा गीत है, और ये गाना किशोर कुमार साहब ने गाया हुआ गीत है, और ये गाना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए है। तो बस मुस्कुराइए, क्योंकि जिंदगी बहुत ज़्यादा हसीन है मेरे दोस्तों। और इसी के साथ गुस्सा नाक पर ना रखें, क्योंकि गुस्सा कई बार हमारी दूसरों की जिंदगी तहस नहस करने से पहले वो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है।
1: गुस्सा।

0: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए प्यार भरे फोन कॉल्स, और मैं बस कोशिश हमारी यही रहती है कि सभी के फोन कॉल्स को हम अटेंड कर पाए, और आप हमारे साथ बहुत ज्यादा पेशेंस रखते हैं, ये सच में थैंक यू कहेंगे आप सभी को। और चलिए सभी के नामों को जोड़ने का समय हो चला है। यहाँ पर प्यार भरे मैसेजेस अभी तक आ रहे हैं, और यहाँ पर प्यारा सा मैसेज आया है देवी जी का, थैंक यू देवी जी। और इसी के साथ यहाँ पर कई सारे ऐसे प्यारे मैसेज आए हैं, माला जगी जो हमारे साथ पे चितखित से जुड़ी हुई हैं और कहती हैं कि भाई हम तो बहुत खुश हो जाते हैं, आपके अनसुने गीतों को सुनकर हमारा तो स्ट्रेस भाग जाता है, थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लक्ष्मी जी जो हैं बॉम्बू से, और आपके बेटे अक्षय और बेटी आशना, बहुत बहुत प्यार आपको। इंदिरा लॉटन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मौत डाल बेस से, गोपी सिंह परिवार का नाम जोड़ते हैं लंदन से। राम राम जी त्रियोले से, सूरज शर्मा सजादा और आपके प्यारे बेटे निशाल का भी आज के इस कार्यक्रम में नाम शामिल करते हैं। भाई माहेन भी हमारे साथ हैं और मस्त मज़ेदार गीतों के साथ हमें शुभकामनाएं भेज रहे हैं, आपका भी दिन मज़ेदार बीते बस हम तो यही प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर मॉडल बेस से हमेशा की तरह अनीता लाल जी ईतू परिवार, गोगा परिवार और नागेश्वर परिवार के साथ जुड़ी रहती हैं। चलिए माधुरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फ्लोगयाल से, आशा करते हैं कि आपकी तबीयत बढ़िया होगी। घोंगोप से श्यामा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आशा करते हैं कि आज के गाने आपको भी पसंद आए होंगे। जयप्रकाश आपके प्यारे भैया, भाभी है नम्रता, केशव और युधीश, साथ है आपकी प्यारी सखिया विश्वानी जी और वीना रामफल जो हमेशा साथ देते हैं। काटरबून से माला जी भी हमारे साथ है, माला सुमारू और आपके पति सूर्यदेव हमेशा साथ है, जुड़े रहते हैं चार बेटों के साथ, थैंक यू सो मच। रोजबेल से नवीन लक्ष्मण जी भी इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, और साथ जुड़ी हुई हैं उनकी प्यारी पत्नी चित्रा जी, और दे रहे हैं साथ निवेदिता और सच्चिदानंद जी मेबक से, ललिता और धनराज चरण जी हैं मॉडल बेस से, और आपकी प्यारी बेटी स्वीटी, साथ ही साथ न्यू ग्रोव से राज और अमृता, और जी हाँ घोंबुआ से रमेश और प्रीति जी। अनीता जी का भी प्यारा सा मैसेज यहाँ पर आप पहुँचा है, थैंक यू सो मच, जो फ्लिक ऑन फ्लैक्स से साथ दे रही हैं। और शिवरानी जी साथ दे रही हैं घोंबुआ से, सुधीर शर्मा सुनाही आपकी प्यारी बहू है, रोशनी शिरीष शिखा शिवान, साथ है राज और आरती आपकी बेटी और बहू जो है काटरबून, माफ़ कीजिएगा घोंबुआ से, यश अंजलि कबीर आपकी बेटी है, शर्मिला सीचन, साथ है उर्वशी रघुबा, कृष्णा कुमारी गौरीशंकर जो है यूके से, और आपके प्यारे भैया पंडित उमाकांत दीपचंद जी का जन्मदिन था 14 मई को बोबासन से, आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, आपकी प्यारी पत्नी ललिता, आपकी बड़ी बहन शिवरानी, और आपके साथ हैं आपकी प्यारी, जी हाँ आपके बेटे हैं रवि, बहू है सिद्धि, साथ है नाती याशना और नाती है अनिकेत, सभी सीबरन परिवार कौतुगल से, दीपचंद परिवार बोबासन से, और सुनाही परिवार गौबा से आपको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। कौदेमा से जुड़ी हुई हैं प्रेमिला सी गुलाम, साथ है आपकी प्यारी बहनें रागिनी और साधना जो है बेचू परिवार से, ग्रीष्मा फ्लॉक से हमेशा साथ देते हैं। अनसुया राम के अलावा आपकी प्यारी बहन त्रियोले से, आपको भी हमारा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। साथ ही साथ यहाँ पर उषा जी हैं ब्रह्मस्थान से, नमस्ते जी, आप भी हमें सुन रही हैं जान के बहुत अच्छा लगा, आपको भी ढेर ढेर प्यार। और इसी के साथ जी हाँ आपके प्यारे बेटे आकाश और आपके पति भी साथ जुड़े हैं, आपके पति राज, उनको बहुत बहुत आज का दिन बहुत शुभ हो सभी के लिए। क्यूपिप से जुड़ी हुई हैं गीता जी, और साथ ही साथ शीला जी ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से हैं, आपके पति साजन, बेटा विकास और गौसों, क्लाविट से है विजय बंधन और उनका परिवार, साथ है उनकी प्यारी पत्नी रेखा, बहने चंदनी, बिंदु कुमारी और आपके सभी

दोस्त जो हमेशा काम पर से हमें सुनना पसंद करते हैं। चलिए आज का दिन आपके लिए बहुत सारी स्फूर्ति लेकर आए और यहाँ पर हमारे साथ है गीता जी पोफेया से। ओए होए रोहित, आपके प्यारे पति का नाम तो आप कभी नहीं लेना भूलती और बिल्कुल भूलना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर आपके तीन बेटे, दो बहुएं और साथ ही साथ आपके नाती हैं आदित्य, आरव, तानिश और प्यारी परी जानवी। चलिए यहाँ एक और प्यारा सा मैसेज आया है। ये है मोताइलोंग से शकुंतला जी का और बिल्कुल शकुंतला जी, आपकी प्यारी भाभी प्यारी ननंद गायत्री जी भी हमेशा हमारा साथ देती हैं। नोवेल फॉन्स से बेटे अजय के साथ मामी है कल्याणी मोहन, नोवेल फॉन्स से आपकी सखी गीता बाई, साथ है उनके सभी परिवार, बेटा शिवाजी साथ है, बहू श्वेता बाई, बेटी है सुधा बाई, बिजवी बाई, दिया बाई और प्यारा मल्हार। लाफलोगा से राजन लक्ष्मण जी भी हमेशा साथ देते हैं और आपकी प्यारी पत्नी माला, प्रगति और प्रार्थना, आपकी दो बेटियां। और चलिए यहाँ पर हमारा साथ दे रही हैं लासू से शांता आपादू, शीला बिमाना और गंगा माँ लेन से आप हमारा साथ दे रही हैं काट्रोबोन ने जो है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार से लंबा मैसेज आपने टाइप किया है। नोवेल फॉन्स से मानती जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्यारी अनंती और आरती साथ दे रहे हैं और साथ ही साथ जुड़ी हुई हैं चिंता जी। और आज आप सभी सदस्यों के साथ या सभी संस्था के सदस्यों के साथ परिवार दिवस मनाने जा रहे हैं तो बिल्कुल आज का दिन आपके लिए बहुत खासम खास रहे। हाईलैंड से उषा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कुंज बिहारी और मोहन सिंह परिवार के साथ। और आपकी प्यारी नाती का जन्मदिन था अंश कुछ दिनों पहले, साथ ही साथ आपकी प्यारी गुतनी बेब मोहन सिंह का भी जन्मदिन है, उनके पति हैं सच्चिदानंद, साथ है उनके बेटे अक्षय और आकाश, बहू हैं दीपशिका और वृष्टि, बेटी है पूजा और दामाद विश्वम, साथ है नाती अंश, सियान और सियाना। साथ ही साथ आज हालांकि उनकी जन्मदिन नहीं पर उनकी शादी की सालगिरह है तो चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ देविका जी भी आज अपनी शादी की सालगिरह मना रही हैं जो बेब जी की बहन है और वाशिगी रहती हैं। चलिए जिया, मुनीश, दीदा और सभी कुंज बिहारी और मोहन सिंह परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार आप सभी को। शोभा जी जुड़ी हुई हैं वाकवा से, साथ दे रही हैं अनुषा, शर्वीना, अवनीश, अर्नवी, साथ हैं आपकी प्यारी बहन प्रीमिला जयमंगल मोचीदा से, आपकी प्यारी सखी राधा बाल गोबिंद और वीना जी। स्वस्ति आप भी हमारा साथ दे रही हैं काट्रोबोन से, गीतों को बहुत इंजॉय कर रही हैं लेखरानी और सुमित, आपके दो प्यारे बच्चे। इंदिरा चिंताराम हमारे साथ है मोताइलोंग की ओर से तो आपको भी बहुत बहुत प्यार। होम और तुषार का नाम जोड़ते हैं आपके दो ऐसे प्यारे नाती, आपके आंखों के तारे। नीता खेदनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सेंट जूलिया विलार से और आज आपके माफ कीजिएगा कल यानी 20 तारीख को आपके प्यारे दामाद भीम का जन्मदिन है जो है पुदगुदव विलार से और बहुत सारी बधाइयाँ भीम को और साथ ही साथ उनकी प्यारी पत्नी रीना, विधि और चैतन्य और सासुमा नीता की ओर से ढेर सारा प्यार। रिवेजपुर से उदय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपके सभी परिवार का नाम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। लीला जी बुआशेगी से साथ दे रही हैं, माला जगी हैं पेचित रुद्रत से, कमला जी काटकुकु से जुड़ी हुई हैं और आपकी प्यारी बहू कविता का जन्मदिन है कल तो चलिए सासुमा कमला की ओर से कविता जी को ढेर सारा प्यार, आपके पति संजय और साथ ही साथ आपके तीन प्यारे बच्चे अनिश, अनुष्का और अश्नव, सभी रामन परिवार की ओर से बहुत बहुत प्यार। रोजबेल से अनीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कहती हैं कि उन्हें आज के इस कार्यक्रम के गाने सभी गाने बेहद पसंद आए। चलिए यहाँ पर एक और अब देखी डेडिकेशन आई है। आज लिया का जन्मदिन है और बहुत सारी विशेस आ रही हैं मामा अनुषा, पापा है विराज और सभी फैमिली की ओर से तो लिया आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत हसीन है और इसी के साथ आपको खुश करने के लिए कुछ ऐसे ही गाने हम हमेशा अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं तो बस एंजॉय कीजिए। भले गाने पुराने हों पर अंदाज
बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इस गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर

थोड़ी देर के लिए पॉज देंगे, विराम देंगे, क्योंकि समाचारों का समय हो चला है। तो हमेशा आशावादी रहे, यानी हमेशा होप बनाए रखे। और हम तो यही जोड़ेंगे कि कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है और कुछ लोग होते हैं इसीलिए जिंदगी होती है। जिन्हें समझ में आया हो उनके लिए बहुत बहुत सारी खुशियां हमारी ओर से, ढेर सारी पप्पियां और झप्पियां। और इसी के साथ आशा का ये गाना आपके नाम करते हैं और बस हमेशा खुश रहें। आते हैं अभी थोड़ी ही देर में अगले सेगमेंट को लेकर, एक छोटी सी मुलाकात, मिलते हैं अभी थोड़ी देर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजीर के ठीक 8 बजे तक सुना भोजपुरी में समाचार। नमस्ते। कोतवाल में इतवार सांझ भयल हिंसा के बाद मुका सीआईडी पहला गिरफ्तारी कर ले बा। इ मामला में 4 जना की हिरासत मिली हलगल बा। कोतवाल गांव में उस समय तनाव भयल जब दू गुट आमने सामने आगल। बतावल जात बा कि कुछ लोगन हेल्प ट्रक परी क्वाड बाइक परी रहलन जा, जबकि वहां इ तरह के गतिविधि पर रोक बा। इ दौरान गोली चले की आवाज सुनाई पड़ल, दू वाहन में आग लगा देवल गल और मौजूद एक गो पुलिस अफसर घायल होगल। वाकवा में 25 बरिस के रकविलियाम के लाश मिले के बाद हत्या की आशंका जतावल जात बा। फ्लोरियाल निवासी रकविलियाम के शव कल फजीर के खानम वाकवा के गो मैदान लगी मिलल रहल। पुलिस के जानकारी मुताबिक ओकरा कथित रूप से चोरी करत पकड़ल गल रहल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन दबला से मौत होके के पुष्टि भयल। इ मामला में 18 बरिस के गो संदिग्ध के गिरफ्तार करल गल बा। आज राष्ट्रीय सभा की बैठक में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान बैंक ऑफ मॉरिशस से जुड़ल 4 महत्वपूर्ण सवाल उठावल जाए। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से पूछल जाए कि 2019 से 2024 के बीच कितना रकम के नवा नोट छपवा के सरकार के सौंपल गलबा। साथ ही 83 बिलियन रुपया के कथित नोट छपाई मामला परी का कार्रवाई भयल, ई परो जवाब मांगल जाए। एकर अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट के प्रगति और बैंक ऑफ मॉरिशस में डायरेक्टर ऑफ सुपरविजन पद पर ही रहल अफसर लोगन के सूची भी चर्चा के हिस्सा रही। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पहला बार पेश करियन। ई विधेयक के मकसद बा गणराज्य के राष्ट्रपति के संविधान समीक्षा आयोग नियुक्त करे के अधिकार देवे के। ई आयोग संविधान में सुधार से जुड़ल मुद्दा पर ही अध्ययन करी और ई अपन सिफारिश पेश करी, खास रूप से मौलिक अधिकार की सुरक्षा, लोकतंत्र के और मजबूत बनावे और इस संस्थान के सशक्त करे पर जोर देवल जाए। सऊदी अरब में मौजूद कई गोमर्शन हज यात्री लोगन के बीच नाराजगी और चिंता के माहौल बा। सोमवार 18 मई के हज खातिर पहुंचल करीब 50 हाजी लोगन अपन खातिर तय इमारत में रहे से मना कर दिलन जा। हाजी लोगन के कहना बा कि इमारत के हालात खराब बा और वहां जरूरी सुविधा के कमी बा। स्थिति के देखते उ लोगन इस्लामिक कल्चरल सेंटर मंत्री शकील मोहम्मद और रियाद में मौसन राजदूत के हस्तक्षेप की अपील कर ली हवन जा। राजदूत के मुताबिक अधिकारी लोग हाजी लोगन के बेहतर जगह पर ही ठहरावे खातिर कोशिश में जुटल हवन जा। दूसर देश के खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलन कि गल्फ देश के नेता लोग के अनुरोध पर ही ईरान पर मंगल के प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल रोक देवल गल बा। कहे के गंभीर बातचीत जारी बा। ट्रूफ सोशल पर ही जारी संदेश में ट्रंप बोलन कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेता लोग उसे ई फैसला खातिर अनुरोध कर ले हवन जा। ओकर दावा बा कि एगो ऐसन समझौता होके जा रहा बा जे अमेरिका खातिर बहुते स्वीकार रही और इमें ईरान लगे परमाणु हथियार नहीं रही। हालांकि ट्रंप चेतावनी दिलन कि अगर स्वीकार्य समझौता न भयल त अमेरिका कभी भी ईरान पर ही बड़ा हमला करे के खातिर तैयार बा। तई रहल हमनी के भोजपुरी में समाचार, हमनी के सुन ला जा। धन्यवाद।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: कासी रोड कासी में 74 बरिस के सुसन कातोजों के जुराज दायन के मृत्यु हो गल बा। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर पत्नी ललिता दायन के घरे कासी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लिसालिन के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड निविया मिल थ्रियोली में निविया मिल थ्रियोली में 81 बरिस के 89 के जय बुनेसा सुकुमिया गुजरगल हवन पैदाइश नाम पावाची। उनकर माटी आज दोपहर बाद 2 बजे उन्हीं के घरे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लंदी पपाई के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड बुले रूज फ्लैक में दयाल सुपरमार्केट की भीड़ी 59 बरिस की सेकंडनी फोंकी चंद्रावती द्वारका गुजरगर हवन पैदाइश नाम रामलोल उनकर माटी आज दिन के 12:30 उन्हीं के घरे फ्लैग से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। Adventist Road, Chemin Grenier-Mé, 88 बरिस के 88 ओं के अनासामी एसापा गुजरगल हवन उनकर माटी आज सांझ के 4 बजे उनकर बेटा संगहन एसापा के घरे Chemin Grenier से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रिव्यादिकाले के शमशान भूमि ले जावल जाए। Mont-Désir Road, Plaine-Magnon-Mé, 54 बरिस के 54 के सीला गजाधर गुजरगल हवन पैदाइश नाम ननलोल उनकर माटी आज दिन के 1 बजे करपति रविंद्रनाथ गजाधर के खरे प्रेमानियों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्रेमानियों के शमशान भूमि ले जावल जाए। नंबर 12 एवेन्यू ला सूस पालमा कैट्रोबोन में 87 बरिस के 87 ओं के लक्ष्मी सुनिया गुजरगल हवन पैदाइश नाम ईटू उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घरे कैट्रोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। SSL लेन बोनाक्यू में 68 बरिस की 68 ओं के देवंती लकनारायण गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 10:30 उनकर बेटा विक्रम भंजन के घरे बोनाक्यू से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोनाक्यू के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड रिश्तेमें 44 बरिस के 44 के धनराज बिहारी गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 10:30 उनकर माँ अनीता गनू के घरे खिश्तिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुआ मौसों के शमशान भूमि ले जावल जाए। गोपाला लेन मेबर्ग में 83 बरिस के 83 के पिचाई कोरा चिन्या रामुना गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घरे मेबर्ग से उठा के अंतिम संस्कार खातिर इलाका के शमशान भूमि ले जावल जाए। एवेन्यू उस्मान सैंपुल में 79 ईयर्स ओल्ड के 79 ओं के सुभावती कोसी गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बजे सैंपुल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुआ मौसों के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड रियोम्बेल सुरीनाम में 72 बरिस के 72 के नवरत्न हीरा गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घरे सुरीनाम से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सुलिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। एम्पास रूफ्रांस डेपिनी में 72 बरिस के 72 के भगवान दास जीतुआ गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उन्हीं के घरे देपिनी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर घों रोजालीन के शमशान भूमि ले जावल जाए। सुल्फेरिनो नंबर फोर वाकुआ में 62 बरिस के 70 के परमाती बुलदाऊ गुजरगल हवन पैदाइश नाम सीउ बादल उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उन्हीं के घरे वाकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बालों सुल्फेरिनो के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड पालमा कैट्रोबोन में 60 बरिस के 60 ओं के लालराज गजाधर गुजरगल हवन उनकर माटी आज दोपहर बाद 2 बजे उनकर पत्नी माया गजाधर के घरे कैट्रोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए। पालमा रोड ब्रिजेवेजिया में 82 बरिस के 90 ओं के लकी नारायण दौलत गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा कैलाश तती दौलत के खरे प्रिजेवेजिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पास्काल रूद प्रिजेवेजिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। गंगुलेन लेस्काली में 94 बरिस के 94 ओं के करुणावती गोकुल गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा सतीश मंगल के घरे लेस्काली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर वनसाइ कौपॉ लेस्काली के शमशान भूमि ले जावल जाए। शोकग्रस्त परिवार संगे हमनी सहानुभूति प्रकट कर थैं जा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: इस समय 8:17 हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई ये विज्ञप्ति पर आइए नज़र डालते चलिए। ये विज्ञप्ति है ब्रिटानिया गांव के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, जिनमें हैं खासकर कौं बियतो, कौं रामपुर और मौसलमा, ब्रिटानिया और सेंट आवोल्ड के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार 19 मई को सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
2: 819 kilohertz, this is Radio Mauritius।
3: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना,

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: एक छोटी सी मुलाकात के इस सेगमेंट में एक बार फिर आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 8:20 होने जा रहे हैं। रेडियो मॉरिशस की लहरों पर सुबह का नजराना कार्यक्रम चल रहा है और इसी के साथ आज की ये छोटी सी मुलाकात एक ऐसे अभिनेता के साथ जिनका जन्मदिन है आज 19 मई 1974 के दिन वे पैदा हुए थे और आज उनकी आयु हो चुकी है 51 वर्ष। ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक भारतीय फिल्म अभिनेता और ये कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं, जैसे कि ब्लैक फ्राइडे, न्यूयॉर्क, पीपल लाइव, कहानी, मांझी, द माउंटेन मैन, सेक्रेट गेम्स, मंतो, ठाकरे और ऐसी कई सारी बेहतरीन मूवी में उन्होंने अपनी अदाकारी दिखाई है। तो चलिए आज की मुलाकात आपको करवाते हैं सेक्रेट गेम्स से, जिन्होंने बहुत ही नाम कमाया। जी हाँ, एक ऐसी सीरीज, वेब सीरीज में उन्होंने काम किया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और आज की ये मुलाकात होगी उनके साथ। वैसे उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं, पर जब हम उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं तो सिद्दीकी अपने छोटे भाई शमास नवाब सिद्दीकी के साथ मुंबई में रहते हैं, जो एक निर्देशक हैं, और नवाजुद्दीन जी की जो शादी है वो आलिया उर्फ अंजना किशोर पांडे से हुई और उनकी एक बेटी शोरा और बेटा है जो अभिनेता के बिल्कुल 41 ईयर्स के बाद वे पैदा हुए, यानी उनकी वे जब 41 ईयर्स के हुए तब उनको उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ। वैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के संस्मरण में एक ऑर्डिनरी लाइफ को उनके मिस लवली सह कलाकार निहारिका सिंह के साथ विवादों को बढ़ाते हुए उनके प्रेम प्रसंगों का विवरण, उनके प्रेम प्रसंगों के संक्षिप्त विवरण के साथ 25 अक्टूबर 2017 को प्रकाशित किया गया था। और परिणाम उसका ये हुआ कि निहारिका सिंह की ओर से दिल्ली के एक वकील और परिणामी पश्चाताप के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के पास दायर शिकायत के कारण कुछ दिनों के बाद वो स्थगित किया गया। वैसे कई बार ऐसा होता है।

0: है कि कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हमारी लाइफ के साथ ऐसे जुड़ जाती है। पर कहते हैं ना कि एक कलाकार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और ये ऐसा ही हुआ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। इन्होंने बॉलीवुड में अपने अभिनय की शुरुआत की थी 1999 में आई मूवी सरफरोश के साथ, जिसमें उनकी जो मुख्य भूमिका थी वो थी आमिर खान साहब की। और इसके बाद ये राम गोपाल वर्मा की फिल्म शूल में नजर आए थे, 1999 की दौर की ये मूवी। 2000 में उनकी फिल्म आई जंगल, राजकुमार हिरानी के साथ उन्होंने फिल्म की। 2003 में मुन्ना भाई MBBS। अब आपको लगेगा मुन्ना भाई MBBS में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहाँ थे? भाई बिल्कुल थे। आपको वो सीन याद होगा जहां पर सुनील दत्त साहब की जेब कतरी गई थी शुरुआत में, और ये जो जेब जिन्होंने कतरी थी वो थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत ही छोटा रोल पर बहुत ही लाजवाब तरीके से उन्होंने इस रोल को निभाया। मुंबई में आने के बाद उन्होंने टीवी धारावाहिकों में काम तलाशनी शुरू की और कोशिश जारी रही, पर कुछ खास उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। और इन्होंने एक छोटी फिल्म द बाईपास जो 2003 में आई थी, इसमें उन्होंने इरफान खान के साथ काम किया। फिर 2002 से लेकर 2005 तक इनके पास ज़्यादातर उतना कोई मतलब कोई खास काम था नहीं। इन्हें रहने के लिए चार अन्य लोगों के साथ फ्लैट भी उनको शेयर करना पड़ा था, और साल 2004 में इनके लिए काफ़ी दिक्कतों वाला रहा। किराए के पैसे तक उनके पास नहीं थे देने के लिए, और तब उन्होंने और इसके कारण इन्हें अपने NSD सीनियर के साथ उनको रहने की अनुमति उनको मांगनी पड़ी, और उन्होंने इस शर्त पर उनको गोरेगांव में अपार्टमेंट में रहने की इजाज़त दी कि वो वहाँ पर उनके लिए खाना बनाएंगे। 2009 में इन्हें देव डी के इमोशनल अत्याचार गाने के लिए छोटा सा उनको एक रंगीला किरदार दिया गया था। पर चलो, देर आए दुरुस्त आए, छोटा मोटा काम ही सही, उन्होंने कभी मना नहीं किया। और साथ ही साथ उसी साल यानी 2009 में ही उनको न्यूयॉर्क फिल्म में भी देखा गया। लेकिन इन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचान मिली अनुषा रिजवी की फिल्म पीपली लाइव से, जिसमें इन्हें एक पत्रकार की भूमिका मिली थी। 2012 में ये प्रशांत भार्गव की फिल्म पतंग द काइट 2012 में भी दिखाई दिए थे, और इस फिल्म को बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव और ट्रिबेका फिल्म उत्सव में दिखाया गया। ये एक बहुत ही बड़ी सफलता कह सकते हैं। इसमें सिद्दीकी के कार्य को फिल्म समीक्षकों ने यानी खासकर रॉजर एबर्ट ने काफ़ी सराहा, बहुत उनको पॉजिटिव क्रिटिक्स मिले, और इसके बाद ये फिल्म संयुक्त राष्ट्र और कैनेडा में भी दिखाई गई, और न्यूयॉर्क टाइम्स में समीक्षा से भी लोगों का इन पर काफी ध्यान आकर्षित हुआ। सन 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के दूसरे भाग में इन्हें प्रमुख भूमिका के लिए चूज किया गया, और इस फिल्म में उन्हें एक उत्तम अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। आइए फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये गीत साथ मिलकर एंजॉय करते हैं।
1: आज

एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। रेडियो मॉरिशस पर। रेडियो मॉरिशस पर। 8:30 और आज की छोटी सी मुलाकात नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। वैसे आपको कि का वो सीन याद है जहां पर ऑपरेशन थिएटर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर ऑपरेशन किया जा रहा था और थोड़ी ही देर में डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। और फिर तुरंत ऑल ऑफ अ सडन वो खड़े हो जाते हैं और उनका वो बहुत ही फेमस डायलॉग कि टक से हम मौत को छू कर वापस आ गए। भाई ये जो सीन है वो कहीं ना कहीं मतलब इतना ज्यादा फिट बैठता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। और जब भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कोई मिमिक्री करता है या फिर कोई उनको मतलब इस सीन के साथ जोड़ता है तो ज़रूर ये डायलॉग के साथ ही उनको जैसे कह सकते हैं कि उनको उनको भाई कहा जाता है कि ये सीन देखकर आपको पता चल जाएगा कि अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात की जा रही है, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो चलिए, वैसे तो उन पर कोई फिल्माया हुआ गीत नहीं है फिल्म किक का, पर ये गाना ज़रूर किक फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। वैसे हालांकि ये गाना जो है सलमान खान साहब ने गाया हुआ है और इसी के साथ पलक मुच्छल ने भी इसमें साथ दिया है, पर मौसम को और भी औसम बनाते हैं इस गीत के साथ और बढ़ते हैं आगे एक छोटी सी मुलाकात।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: जिंदाई थे तुम ये सब।
2: मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, पहुंचा दूंगा वहां तक। वापस आना तेरे काम है।
1: तो ये सब ड्रामा क्यों किया?
2: पता है, जब मेरे दोस्तों की आज चोरी होनी शुरू हुई तो स्टक हो गया मैं, टोटल ब्लैंक, सब पे नजर रखी। बाद में पता चला कि घर का भेदी लंका ढाता है और तुक्का फिट। कोई उम्मीद वर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत तो एक दिन मुयन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती।
0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
3: भाई तो आपने देखा वो किस कदर, किस इतनी शिद्दत से उन्होंने इस सीन को निभाया और ये सीन ने उनको बस फेमस बना दिया। इसीलिए कहते हैं ना भाई, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, क्योंकि इनके हर सीन पर लोगों ने उनको बहुत ही पसंद किया। पर उनकी राह कोई आसान नहीं थी। आपको ये भी हम बताते चले कि ये तो आज हमें पता है कि वे बहुत ही फेमस हुए, पर उन्होंने ऐसे दिन भी देखे हैं जिन्होंने भाई, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अनकही कहानी। उन्होंने वडोदरा में केमिस्ट के रूप में भी काम किया, केमिस्ट की शॉप पर भी काम किया है, और साथ ही साथ ऐसा भी सुनने में आया है कि उन्होंने कई दिन तक वॉचमैन का भी काम किया है। उनको संघर्ष के बाद ही सफलता प्राप्त हुई कोई इतनी आसानी से। उनको आगे कह सकते हैं कि उन्होंने नाम नहीं कमाया भाई, छोटे मोटे किरदारों के साथ ही उन्होंने शुरुआत की थी। और बिल्कुल जब हमने बात की मुन्ना भाई MBBS, तो मुन्ना भाई MBBS का वो सीन भी कितना लाजवाब था। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं चांद नवाब की, चांद नवाब के इस सीन ने भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बहुत ही ज़्यादा फेमस बना दिया। तो चलिए इस सीन को भी सुनते हैं और फिर बजरंगी भाईजान का गाना आपके नाम ज़रूर करेंगे। चलिए इसी के साथ आइए सुनते हैं इस गीत, इस सीन को।
4: कराची से अंदरूने मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे, अरे यार ये फिर आ गए भाई, दर्शन निकलो ना एक बार, गाड़ी निकल जाएगी यार। कराची से अंदरूने मुल्क, अरे क्या कर रहा है, रोक लेना यार भाई, दर्शन निकल, गाड़ी निकल जाएगी। कराची से अंदरूने मुल्क लोग अपनों में, यार बड़ा बेगैरत आदमी है, उधर से निकल देना भाई। कराची से अंदरूने मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे, क्या क्या कर रही बीबी, उधर से निकल जाओ एक मिनट, गाड़ी निकल जाएगी। कराची से अंदरूने मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए, क्या कर रहा है, रोक लेना यार भाई, दूसरे लेकर गाड़ी निकल जाएगी। कराची से अंदरूने मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन कामिल हुसैन के साथ चांद नवाब चावड़ा।
3: वैसे आपको ये भी बताते चले कि ये जो सीन है विदाउट कट सीन किया गया था, उसको शूट किया गया था, और एक ही तरह से, एक ही कह सकते हैं ना कि पूरी तरह से उसे एक ही तरह शूट किया गया विदाउट एनी कट। और इस फिल्म ने चांद नवाब के इस सीन के

0: कुछ ऐसे ही लाजवाब सीन्स के साथ इस कह सकते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस मकाम को हासिल किया। और रामन राघव 2.0 में भी उनकी जो एक्टिंग है और उनका वो एक डायलॉग कि एक सिगरेट है मेरे पास पर जलाने को माचिस नहीं, और जिस तरह से जिस अंदाज से उन्होंने वो रोने की एक्टिंग की इसमें, भाई क्या कहे, जान फूंक दी इस एक्टिंग में। चलिए इस सीन को भी साथ मिलकर सुनते हैं।
1: अच्छा खासा काम कर रहा था मैं, तीन लोग आए बोले खाना खाना है क्या, नहीं भूख लगी थी मेरे को, यहाँ लेके आए, इतना मारा मुझे गला घोट घोट के मारा, तीन दिन तक मार, ना खाने को दिया ना पीने को दिया, गला सूख रहा था मेरा। एक सिगरेट है मेरे पास जलाने के लिए, माचिस नहीं है।
0: वैसे हम आपको ये भी बताते चले, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो ये जो डायलॉग बाजी अभी हो रही थी ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी भगवान के फोटो के सामने बैठकर अपना दुखड़ा भगवान को सुना रहे थे।

0: रामन राघव फिल्म से लिया हुआ ये गीत सिद्धार्थ बसरूर और राम संपत की आवाज में था।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
0: चलिए 8:45 और आज की ये छोटी सी मुलाकात नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। वैसे उन्होंने कई सारी फिल्में की और जी हाँ 1999 में उन्होंने शुरुआत की सरफरोश, शूल, जंगल, दिल पे मत ले यार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो आई 2000 में, 2003 में द बाईपास, उसके बाद आई मुद्दा द इश्यू और मुन्ना भाई MBBS, 2006 में फैमिली, 2007 में आजा नचले, जी हाँ छोटा चाय वाला, और उसके बाद आई एक चालीसा की लास्ट लोकल, एक चालीस की लास्ट लोकल, और इसके साथ मनोरमा, साथ ही साथ ब्लैक फ्राइडे 2008 में आई ब्लैक एंड हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट, 2009 में फिराक न्यूयॉर्क, देव डी, 2010 में पीपली लाइव, 2011 में देख इंडियन सर्कस, 2012 में आई फिल्म कहानी पतंग, पान सिंह तोमर गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग एक, गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग दो, चिटगांव, तलाश, मिस लवली, 2013 में आई फिल्म आत्मा, बॉम्बे टॉकीज, शॉर्ट्स, लायर्स Liars Dies, 2013 में आई मॉनसून शूट आउट, द लंच बॉक्स, अनवर का अजब किस्सा, 2014 में आई किक, 2015 में बदलापुर, बजरंगी भाईजान, मांझी, द माउंटेन मैन, 2016 में रामन राघव 2.0, 2016 में ही तीन लायन और फ्रीकी अली, 2017 में आई हरामखोर, रईस, जग्गा जासूस, मॉम, मुन्ना माइकल, बाबू मुशाय, बंदूकबाज, द माया टेप, कार्बन, 2018 में मुक्काबाज, जीनियस, मंटो और सेक्रेट गेम्स वेब सीरीज, 2019 में आई फिल्म पेटा, ठाकरे, धूमकेतु, फोटोग्राफी, रात अकेली है, 2020 में बोले चूड़ियां, धूमकेतु, 2022 में हीरोपंती 2, 2023 में अफरा, 2023 में

जोगीरा सारा रारा, 2023 में टीकू वेड्स शेरू, 2023 में ही फिल्म आई हड्डी, 2024 में सैंधव, साथ ही साथ राउतू का राज, फिर आई अद्भुत, कुस्ताओ, थाम्मा और रात अकेली है द बंसल मर्डर्स, और इसी के साथ बिल्कुल एक और ऐसी फिल्म आई थी मोती चूर चकना चूर, और इस फिल्म में वे नजर आए थे आथिया शेट्टी के साथ। चलिए इसी फिल्म के गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर फुल स्टॉप लगाएंगे। आशा करते हैं कि आज की ये छोटी सी मुलाकात आपको पसंद आई होगी और इस गीत के साथ आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार रहे। और आपको याद दिला दें 9 बजे के समाचारों के बाद हम जुड़ेंगे आज की चर्चा कार्यक्रम में, जहां पर सुमिता सरकार आपका साथ देंगे। इसका सीधा प्रसारण होगा रेडियो मॉरिशस पर और साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी आप इसे फॉलो कर पाएंगे। यही प्रोग्राम दोबारा से रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा 2:00 से 4:00 के बीच रेडियो मनोरंजन पर।

चलिए इसी गीत के साथ यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। इस गीत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का अफसोस है, पर समय हो चला है हमारी धरोहर कार्यक्रम के साथ जुड़ने का, किरण जानकी के साथ। आइए स्वागत करते हैं उनका और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, आज हमने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटोरी बर्ड डे पर बात कर अब जा। प्रवासी पक्षी के संरक्षण खातिर हर बरिस दूहला एगो बरिस में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनावल जाला। प्रवासी पक्षी दिवस के मनावे की शुरुआत हो रहा साल 2006 में। इस दिन के मनावे खातिर कोनो तारीख नहीं तय कर गल बा और हर बरिस मई में और अक्टूबर महीना में इस दिन मनावल जाला। इस दिन चिड़ाई के प्रेमी लोग, जे लोग चिड़ाई से प्यार करेलन सा और जे लोग प्रवासी पक्षी के संरक्षण की दिशा में काम करेलन सा और ओकर शिकार नहीं करे पर जोर देवेलन सा, उ लोग खातिर विशेष रूप से ई एगो मौका है जब जनता के ई दिन पर जागरूकता अभियान चलावल जाए जनता खातिर और उन लोग के ई बात के एहसास दिलावल जाए कि हमने के इकोसिस्टम, हमने के पृथ्वी पर ये सब चिड़ै के कौन महत्व बा और कहीं चाहें ये चिड़ै के शिकार नहीं करेंगे और ये लोग के संरक्षण करेंगे। प्रवासी पक्षी दिवस के जश्न मनावे खातिर ये दिन जब देखबा तो कितने गतिविधि चलावल जाला विश्व भर में और ये दिन के एक ही गो

0: मकसद है कि इ क्षेत्र में हर एगो व्यक्ति के ध्यान आकर्षित करेके और मई और अक्टूबर महीना में मनावल जाय होला ई दिन से जोड़ के कितने गतिविधि के आयोजन करेंगे। दुनिया के कितने संगठन के साथ संयुक्त राष्ट्र भी ई विश्व जागरूकता अभियान के समर्थन करेला। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एगो वैश्विक गतिविधि है जहाँ पर प्रवासी पक्षी द्वारा सामना करल जाय होला खतरा और उलोग के जो परिस्थिति बा ओकर पर जोर देवल जाला और उलोग के संरक्षण खातिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आवश्यकता पर मांग करल जाला। मॉरिशस में एगो ऐसन संगठन बा बल्कि एगो विभाग बा जोन सरकारी विभाग है और उ है NPCS नेशनल प्रोटेक्शन फॉर फॉरेस्ट्री और यहाँ पर ई विभाग के साथ जोन प्रवासी पक्षी लोग आवेलन से तेयागोज के रिव्यूलेट में हुआ के जोन एगो दलदली इलाका बा उ लोग के संरक्षण पर जोर देवल जाला और उ लोग पर अभियान भी चलावल जाला और ई जोन विभाग बा उ लोग एगो बहुत ही वैज्ञानिक स्टडी एगो वैज्ञानिक अध्ययन करेलन सा कैसे ई सब पक्षी सफर पर निकलेलन सा कहाँ से निकल के नॉर्थ पोल से निकल के कैसे कितना लंबा समय तक उ लोग अपन सफर तय करेलन सा और काहे उ लोग मॉरिशस के ई इलाका में आवेलन सा फिर यहाँ पर कैसे उ लोग एगो पूरा मौसम बितावेलन सा और फिर जब उ लोग खूब खा पी के खूब मोटा तगड़ा हो जालन जा तब फिर से अपन देश के ओर उ लोग बढ़ेलन सा तो ई बात पर भी ध्यान देवल जला कि ई सब जोन प्रवासी चिड़ैं बा उ लोग जब एगो कॉन्टिनेंट से निकल के एगो महाद्वीप से निकल के दूसर महासागर के पार करके दूसर देश में जाता हवन सा तो उ लोग के कौन कौन वैश्विक खतरा है जैसे कि उ लोग के चाहे ढेर जोन आर्टिफिशियल लाइट बा कृत्रिम रोशनी ओकर से बचावे के चाहे उ लोग के उ सब इलाका में रह देवे के जहाँ पर उ लोग आवेलन सा और उ सब इलाका के संरक्षण करे के जहाँ पर उ लोग के दाना पानी मिलेला कैसे कि अब गिबुरत तेयागोज के जब उदाहरण ले वापसा तो यहाँ पर इलाका के संरक्षण खातिर कितने गतिविधि चलेला मतलब कि यहाँ पर ढेर इंसानी हरकत नहीं चाहिए होवे के ढेर जहाज ढेर वहाँ पर मछली मार होला गतिविधि नहीं चाहिए करे के और फिर मैंग्रोव जोन की हमनी के एकोसिस्टम खातिर ज़रूरी है ऐसन इलाका में जब मैंग्रोव जमे लगेला तो एकर से प्रवासी पक्षी के सुविधा कमती हो जाला तब मैंग्रोव के कैसे यहाँ पर नियमित रूप से बढ़े देवल जाए इस सब पर अध्ययन करल जाला और यही मकसद है प्रवासी पक्षी दिवस के मनावे के। तो हमने के देश में एगो जगह बा जिसे तोहरा बोल दी तेहूज के रिव्यूलेट जोन प्रवासी पक्षी के स्वागत करेला और ई एगो रामसर साइट भी है तो आप ज़रूर ऐसन ऐसन जगह पर जाइया और अपन प्रकृति से जुड़िया कहे कि ई सब जोन जानवर है ई सब जोन पंछी है वो हमने के प्रकृति के एगो बहुत बड़ा अंश है। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलब जा। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ
2: तो चला किरण जानकी के बहुत बहुत धन्यवाद बोला जाओ और एगो चिड़ै पे बात कर ले हुआ द सुनीता नन्को के है गीत के साथ आज के कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त करब जा। फेरो से भेट आप सा तोहर संगे ठीक 10 बजे के समाचारों के बाद तबले सुनते रहा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मंगलवार 19 मई, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 9 बज रहे हैं। समाचारों को लेकर आस्था आ चुकी है। आस्था, आपका स्वागत है।
2: जी हाँ, नमस्कार। 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कौंतुगल में रविवार शाम भड़की हिंसा के बाद मुक्का की CID ने पहली गिरफ्तारियां की हैं। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। याद दिला दें कि कौंतुगल गांव में उस समय तनाव फैल गया था जब 2 समूह आमने सामने आ गए थे और बताया जा रहा है कि कुछ लोग हेल्प ट्रक पर क्वाड बाइक चला रहे थे, जबकि वहाँ इस तरह की गतिविधि प्रतिबंधित है। इस दौरान गोली चलने की आवाज़ भी सुनाई गई जो वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और मौजूद एक पुलिसकर्मी वहां पर घायल भी हो गया। वकुआ में 25 वर्षीय रक विलियम का शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फ्लोरियाल निवासी रक विलियम का शव कल सुबह घानम वकुआ स्थित एक मैदान के पास मिला था। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार उसे कथित तौर पर चोरी करते हुए पकड़ा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन दबने के कारण मौत होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में 18 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। आज राष्ट्रीय सभा में PMQT सत्र के दौरान बैंक ऑफ मॉरिशस से जुड़े 4 अहम सवाल उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से पूछा जाएगा कि 2019 से 2024 के बीच कितनी राशि की नई मुद्रा छाप कर सरकार को सौंपी गई। साथ ही 83 बिलियन रुपए की कथित नोट छपाई से जुड़े आरोपों के बाद क्या कदम उठाए गए, इस पर भी जवाब मांगा जाएगा। चिकुनगुनिया को लेकर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। 14 मई से यात्रियों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कड़ी एहतियाती कदम अपनाने की सलाह दी गई है। मच्छर भगाने वाले उत्पाद, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े और मच्छरदानी के इस्तेमाल पर फिलहाल जोर दिया जा रहा है। मॉरिशस में चिकुनगुनिया के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने देश के लिए दूसरी श्रेणी की स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गल्फ देशों के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने मंगलवार के लिए प्रस्तावित ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल रोक दिया है क्योंकि गंभीर बातचीत जारी है। ट्रूथ सोशल पर किए गए

0: अपने संदेश में ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं ने उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया है कि ऐसा समझौता होने जा रहा है जो अमेरिका के लिए बहुत स्वीकार्य होगा। तो ये थी अब तक की खबरें, आगे का कार्यक्रम आपके साथ।
1: धन्यवाद।

0: आज की चर्चा।
1: मंगलवार 19 मई रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं और जितने भी दर्शक एमबीसी के चैनल 3 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का भी स्वागत है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपकी सेवा में आपका साथ देने के लिए। आपको याद दिला दें जो कार्यक्रम है इस समय रेडियो मॉरिशस पर चल रहा है, साथ ही एमबीसी के चैनल 3 पर आप हमें लाइव देख पा रहे हैं, साथ ही इसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इस समय रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी हो रहा है। तो जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये भी याद दिला दें इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट जो है आप आज ही सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 3 बजे, साथ ही इसे आप देख पाएंगे एमबीसी के चैनल 3 पर सपहर के 4 बजे। तो आइए आज की चर्चा इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस महीने की 16 तारीख को यानी कि 16 मई को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि साथ मिलकर शांति से जीने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस टुगेदर। और आज के समय में शांति से जीना, भाईचारे की भावना रखना, एक दूसरे का सहयोग करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गया है हमारे जीवन का। आजकल बहुत कुछ हो रहा है पूरे विश्व भर में, कहीं अशांति फैली हुई है, कहीं पर जो है विचारों का मतभेद है, और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते जब ऐसे दिन आते हैं यह हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई में हम शांति से अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं। और आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच प्रोफेसर राजशेखर जी जुड़ चुके हैं, ICCR चेयर हिंदी MGI में, और साथ में ये लेखक भी है, कहानीकार भी है, और हमारे रेडियो पर कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। तो प्रोफेसर राजशेखर जी बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारे इस कार्यक्रम में, नमस्कार आपको।
2: नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार।
1: और प्रोफेसर जी इस विशेष दिन की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस टुगेदर, तो शांति का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है
2: जी।
1: आजकल हम जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके हैं, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन एक समय हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है कि वो थोड़ी सी शांति चाहता है, थोड़ा सा सुकून चाहता है, फिर चाहे वो उसके निजी जीवन में हो, उसके पारिवारिक जीवन में हो, उसके समाज में हो या देश में हो। तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है आपसे हम जानना चाहेंगे
2: जी। बहुत अच्छी बात जो है आपने कही। देखिए, आम जीवन में प्रायः हम कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए। यह वही शांति है जिसकी खोज में कभी गौतम बुद्ध निकले थे, कभी महावीर निकले थे। और जब हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में जब शांति की बात करते हैं तो उसका सीधा सा संबंध आपसी प्रेम भाव, मानवता की स्थापना करना, आर्थिक समानता को बढ़ावा देना और स्त्री पुरुष संबंधों के बीच एक सामंजस्य पैदा करना भी होता है। जैसा कि आपने कहा कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी हम सभी को केवल एक समाज या परिवार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति के साथ हमें जीना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: यह जो है इसका एक मुख्य उद्देश्य है। लेकिन कई बार हम अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं और हम यह नहीं सोचते कि जितना जीने का अधिकार मुझे है या हमें है उतना ही अन्य लोगों को भी है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड

0: एसेंस हैं
1: जी,
0: इन्होंने 2017 में यह निर्णय लिया कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 16 मई के दिन को हम एक लोगों के बीच जागरूक पैदा करने के लिए एक ऐसा दिवस मनाएंगे जिससे लोगों को एक सकारात्मक संदेश जाए कि हमें मिलकर रहना है। दूसरी बात यह है कि 2018 में पहली बार यह दिवस मनाया गया और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है जब कोविड 2020 में हम इस महामारी से गुजर रहे थे, तो पहली बार जब पूरे विश्व की जो मानव की जो सभ्यता है वो खतरे में थी और हमने यह महसूस किया कि जो दवाई है या जो भी आविष्कार हैं या जो वैक्सीन है वह सभी के लिए है और यह मानवता का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सभी देशों को मौका दिया गया कि आप अपनी सीमाओं को, अपनी देश की सीमाओं को त्याग कर पूरे विश्व के बारे में सोचें। तो कहीं न कहीं इसका जो उद्देश्य है वह बहुत ही व्यापक है और उस व्यापकता को एक अर्थपूर्ण तरीके से हमें सोचना चाहिए कि जियो और जीने दो, पूरे विश्व में खुद भी अपने देश का सम्मान करें और बाहर के जो देश हैं उनका भी सम्मान करें और वहाँ रहने वाले नागरिकों के बारे में भी हम सोचें। यानी कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से, समाज होते हुए अपने देश के माध्यम से पूरे विश्व के कल्याण की बात सोचे, यही इस दिवस का उद्देश्य है।
1: जी, जैसे आपने कहा कि जियो और जीने दो, सुनने में ये बहुत ही छोटा लगता है लेकिन अपने आप में इसके पीछे एक बहुत ही गहरा जो है एक उद्देश्य छुपा है, एक बहुत ही डीप मीनिंग है इसके पीछे। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करते हैं तब तक हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो नज़रिया है वो औरों के जीवन पर भी पड़ता है। अगर हम एक परिवार में रह रहे हैं जहाँ पर माता पिता है, बच्चे हैं, हर उम्र के लोग हैं और परिवार में भी शांति से जीना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का हिस्सा होता है। क्योंकि अगर मन की शांति चाहते हैं तो वो जिस भी चीज़ की हमें इच्छा होती है या चाहत होती है उसकी शुरुआत हमारे भीतर से होती है, फिर वो हमारे परिवार तक जाती है, फिर वो हमारे समाज, हमारे देश और विश्व तक पहुंचती है। तो यदि एक व्यक्ति अपने परिवार में ही उस शांति को महसूस नहीं करता है तो शायद फिर समाज में भी वो उसका जो है मन का जो कहते हैं मन जिस तरह से विचलित होता है, मन शांत नहीं है और मन शांत नहीं होता है तो हम अच्छे निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो परिवार के स्तर पर यदि हम शांति की बात करते हैं तो कौन से ऐसे कदम उठा सकते हैं कि आपसी मतभेद कम हो और कहीं ना कहीं परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान हो? क्योंकि समय के साथ हम देख रहे हैं कि परिवार में दूरियां बढ़ते जा रही है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, पारिवारिक स्तर पर भी है।
0: बिल्कुल, देखिए स्वभाव से ही मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी होता है। केवल मनुष्य नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुत से जीव जंतु जो हैं वे भी सामाजिक होते हैं और उसी से इस सृष्टि का जो एक संचालन है वो चलता रहता है। परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जहाँ पर शांति होनी बहुत ज़रूरी है। यदि परिवार में एक आपसी मतभेद हो, लड़ाई हो, भाईचारा नहीं हो या किसी भी तरह का मन मुटाव हो तो वह एक परिवार जैसी संस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले परिवार के अंदर एक संवाद की भूमिका होनी चाहिए। यदि हम संवाद, आपसी संवाद और अभिव्यक्ति नहीं करते हैं तो इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है
1: जी।
0: दूसरा है कि आपस में एक दूसरे के प्रति हमें सम्मान की भावना रखनी चाहिए, त्याग की भावना। हम यह उम्मीद ना करें कि दूसरा जो है केवल त्याग करे और हम त्याग नहीं करें। और भी बहुत सारी बातें हैं जैसे परिवार के बीच लोभ लालच

0: रचना है, जब हम परिवार की बात कर रहे हैं तो पति पत्नी तो वहाँ हैं ही, बच्चे भी हैं
1: जी,
0: लेकिन साथ साथ जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, बुजुर्ग लोग हैं
1: जी,
0: वे सभी हैं। और जब आप देखेंगे कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से जब बात करते हैं तो परिवार का मतलब होता है संयुक्त परिवार, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जो समाज है वह एक कृषि प्रधान समाज रहा है और कृषि प्रधान समाज में संयुक्त परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसको मैं एक उदाहरण के साथ जोड़ना चाहूँगा कि जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक महापुरुष राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, उनके वचन को निभाने के लिए 14 साल वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आज की पीढ़ी अपने पिता के आदेशों को इस तरह मानने के लिए तैयार है या नहीं है, यह एक बड़ा प्रश्न है। और भ्राता भरत, जिसको राजगद्दी मिलने के बावजूद जिसने राजपद का त्याग किया, क्या उस तरह के त्याग की भावना है
1: आज के समाज में?
0: क्या लक्ष्मण जैसा कोई भाई है जो अपनी सुख शांति त्याग कर अपने बड़े भाई की सेवा में जाने के लिए अग्रसर हो? और ये सारे जो निर्णय हैं रामायण में, जो सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर त्याग किया
1: जी,
0: चाहे वो उर्मिला हो
1: जी, जी,
0: उन्होंने त्याग किया
1: जी,
0: एक स्त्री का त्याग है, एक माँ का त्याग है
1: जी,
0: और देखेंगे कि जितने लोग हैं कहीं ना कहीं वो त्याग कर रहे हैं
1: जी,
0: तो परिवार में त्याग की भूमिका बहुत बड़ी होती है
1: जी,
0: इसी से परिवार में एक सामंजस्य पैदा होता है। और जब ये त्याग स्वार्थ जब किसी भी परिवार से समाप्त हो जाता है तो फिर महाभारत होता है, जिस तरह से दुर्योधन के चरित्र में हम देखते हैं
1: जी।
0: यानी हमारे पास ऐसे सैकड़ों प्रमाण हैं जिसको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि समाज जो है आदर्शों से चलता है, तो हमारे आदर्श कौन हैं? क्या हमारे आदर्श राम हैं, भरत हैं, लक्ष्मण हैं, उर्मिला हैं, सीता हैं, या हमारे आदर्श दुर्योधन है, दुशासन है? तो हमें यह निर्धारित करना है। जब हम अपना एक आदर्श निर्धारित कर लेते हैं और उन मार्गों पर चलते हैं तो आप देखेंगे कि स्वतः परिवार में भी शांति होती है, समाज में भी शांति होती है। और जब परिवार मजबूत बनता है तो उससे समाज मजबूत बनता है, और जब समाज मजबूत बनता है तब देश भी मजबूत होता है
1: जी, बिल्कुल।
0: और जब देश मजबूत होगा तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व के बारे में सोच पाएंगे।
1: बिल्कुल, मतलब कि एक कड़ी कहीं ना कहीं दूसरे कड़ी से जुड़ी हुई
0: जी,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: अभी हमने थोड़ी देर पहले समाज में शांति की बात की, आपने जो है अभी के समय में हमारी जीवन शैली काफ़ी बदल गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है और हमारी लाइफस्टाइल बदलने के कारण परिवार का जो परिपेक्ष होता था, जैसे कि एक समृद्ध परिवार होता था, अब वो परिवार जो है एक्सटेंडेड परिवार ना होकर न्यूक्लियर परिवार हो गया है ना। माता पिता रहते हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग अलग है, सप्ताह में कभी एक बार या दो बार मौका मिलता है जाकर अपनों से मिलने का। तो इसका गहरा प्रभाव हम हमारे नौजवानों पर बहुत देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों पर बहुत देखते हैं। तो अगर एक नौजवान नवयुवतियों की बात करें तो किस तरह से जीवन में वो छोटी छोटी चीज़ें शामिल कर सकते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, जहाँ पर वो शांति को प्रमोट करें, क्योंकि आजकल नौजवान जो है उनके पास ऑप्शंस काफ़ी है, सोशल मीडिया के चलते काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो किसी भी समय जुड़कर कुछ भी देख रहे हैं और उसका गहरा प्रभाव उन पर पड़ रहा है। और जो कुछ हम देखते हैं ऑब्वियसली उसका असर तो हमारे मानसिक स्तर पर होता ही है, और जो हम ग्रहण करते हैं वही कहीं ना कहीं कर्म के रूप में हमारे भीतर से निकलता है। तो खासकर नौजवानों की बात करें तो कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान दे सकते हैं ताकि शांति को अपने जीवन में जो है शामिल कर पाए?
0: जी, जब हम युवाओं की बात करते हैं खास करके आज के परिप्रेक्ष्य में
1: जी,
0: तो हम लोगों को इन बातों पर ध्यान देनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं मानसिक शांति चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है।

0: और इस मानसिक शांति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए।
1: जी
0: एक चीज मैं जितने भी युवा वर्ग हैं जो हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनसे इस संबंध में बहुत ही स्पष्ट बात करना चाहूँगा कि मानसिक शांति जो है परीक्षा में केवल अंक प्राप्त करके और उन अंकों के माध्यम से कोई अच्छी नौकरी लेकर नहीं प्राप्त की जा सकती। जब आप केवल अपने बारे में सोचते हैं तो वह मानसिक शांति नहीं है। जब आप केवल अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं तो आप इस भ्रम में रहते हैं कि हम बहुत कुछ पा लिए हैं और उससे आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। नहीं, जब हमारे कर्मों से, हमारे कर्तव्यों से, हमारे जो जन्मदाता हैं या जन्मदात्री हैं, जब वे प्रसन्न हैं, जब हमारे बुजुर्ग प्रसन्न हैं, जब हम वैवाहिक जैसी संस्था में प्रवेश करते हैं, तब हमारी पत्नी या हमारे पति हमसे प्रसन्न हैं, बच्चे हमसे खुश हैं, तभी मानसिक शांति मिलती है।
1: जी
0: मानसिक शांति का मतलब केवल यह नहीं है कि केवल हम अपने बारे में क्या कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हमारा एक स्वभाव होता है कि जब समाज में कोई हमें एक आदर्श चरित्र के रूप में देखता है और जब वह देखता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में बहुत ही सकारात्मक ढंग से चीज़ों को अपनाया है और आगे बढ़ा है, तो हमें एक आंतरिक खुशी मिलती है। तो सभी युवा वर्गों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उस आंतरिक खुशी को खोजने का प्रयास कीजिए कि किस मार्फत खोज सकते हैं। जैसे ठीक है, आप बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, दिन भर आप काम करते हैं, आपके कुछ हॉबीज होंगे, आप उसको कीजिए। यदि कोई गायक है तो गाना गाना चाहिए। रचनात्मक होना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना बनाइए। किसी को घूमना अच्छा लगता है, घूमना चाहिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपको उससे मानसिक शांति मिलती है। हाँ, लेकिन यदि आपके कर्मों से आपके समाज को कोई फायदा नहीं पहुंचता, देश को कोई फायदा नहीं पहुंचता, तो आप कभी भी मानसिक रूप से ना खुश रहेंगे और ना ही शांति महसूस करेंगे।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ऐसा होता है कि सिर्फ हम जब अपने बारे में सोचते हैं और हमारे भीतर देने की भावना नहीं होती है, तो ऐसे में ऐसा होता है कि सिर्फ समाज का एक वर्ग जो है प्रगति कर रहा है,
0: जी
1: और वहीं समाज के अच्छे संचालन के लिए हर एक वर्ग का प्रगति करना बहुत आवश्यक है। तो
0: बिल्कुल
1: सिर्फ मैं जीवन में सफल हो रहा हूँ, यहाँ तक हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। एक समय ऐसा भी आता है कि अब मैंने बहुत कुछ कर लिया है, अब मेरी बारी है समाज को देने की। तो आई बिलीव ऐसे दिन तब बहुत अपने आप में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर सामने आते हैं कि हम समाज के प्रति क्या कर रहे हैं, है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल
1: चलिए, जितने श्रोता और दर्शक हमें देख रहे हैं, आपको बता दें कि आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस टुगेदर पर चर्चा कर रहे हैं, साथ मिलकर शांति से जीने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा कर रहे हैं, जो इस महीने की 16 तारीख को मनाया गया। आज के इस विषय को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आपका कोई विचार है, आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो 4028085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रोफेसर जी।
0: जी
1: हमने परिवार के स्तर पर बात कर ली, युवाओं के स्तर पर बात कर ली, उसके बाद हमारा समाज आता है। समाज में कई वर्ग एक साथ मिलकर रहते हैं, कई धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, कई संस्कृतियां मिलकर एक साथ रहती है। मॉरिशस और भारत जैसे देशों की बात करें तो एक ऐसा देश है जहां पर सब रंग एक साथ मिलकर एक इंद्रधनुष का कार्य करते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसे में आजकल हम देखते हैं कि कभी कभार छोटी मोटी बातों पर मतभेद हो जाता है, अनबन हो जाती है और लोगों में दूरियां आ जाती है, और ये समाज के प्रगति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब समाज प्रगति नहीं करेगा तो देश की प्रगति संभव नहीं है। तो किस तरह से छोटे छोटे मनमुटावों को हम दूर रख कर जो है समाज में भी ये एकता और प्रेम की भावना को हमेशा बनाए रख सकते हैं।
0: जी देखिए, पूरे विश्व में देखेंगे कि कोई भी देश हो, वहाँ विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय,
1: जी
0: विभिन्न वर्ग के लोग
1: जी
0: जो हैं एक साथ रहते हैं,
1: जी
0: कई भाषाएं बोली जाती
1: जी
0: हैं। भारत जैसे बड़े देश में तो आप देखेंगे कि वहाँ पर लगभग 1900 से ज़्यादा भाषा

0: भाषाएं बोली जाती हैं, जिसका कई भाषाएं तो ऐसी भी हैं कि जिसका कोई साहित्य नहीं है
1: जी।
0: तो इस संबंध में बहुत ही गहराई से विचार करना चाहिए कि समाज में समानता, भ्रातृत्व प्रेम की बात हमेशा होनी चाहिए, साथ ही साथ हमें सहिष्णु होना चाहिए। हम यदि समझदार नहीं हैं तो कहीं न कहीं समाज में समस्या पैदा हो सकती है
1: जी।
0: देखिए इसी हम जब बात करते हैं
1: जी।
0: हमारे पास एक मुख है, एक मुंह है, उसी मुंह से हम अच्छे वचन भी बोल सकते हैं और बुरे वचन भी बोल सकते हैं। हमारे पास दो विकल्प है, किसी का हम दिल दुखा भी सकते हैं और किसी के दिल को हम जोड़ भी सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास खट्टे फल खाने का भी विकल्प है और मीठे फल भी खाने का विकल्प है, तो यह हमें चुनाव करना है कि हम मीठा फल खाएं या खट्टा या कड़वा फल खाएं
1: जी।
0: तो हम क्यों कड़वा बोलें जबकि हमारे पास इतना अच्छा विकल्प है? आप इतने समझदार हैं, आप अच्छे से लोगों से बात कर सकते हैं। तो समाज में संवाद की भूमिका बहुत बड़ी होती है, यानी हमें सबके साथ अच्छे से संवाद करना चाहिए। यानी यदि समाज के बीच बातचीत ही खत्म हो जाए तो इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है और मनमुटाव पैदा होता है। हमेशा याद रखिए कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है, और जब हम इस बड़े सिद्धांत पर बात करते हैं कि सभी लोगों का, प्रकृति का, यानी सभी वस्तुओं का निर्माण ईश्वर ने किया है और हम ईश्वर के प्रति बहुत ही आस्थावान हैं, तो क्या ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों के साथ या व्यक्तियों के साथ या जीव जंतुओं के साथ हम यदि मतभेद रखते हैं, मनमुटाव करते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, तो क्या उससे ईश्वर प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। ईश्वर ने हमें बनाया है मिलजुल कर रहने के लिए, आपसी सद्भाव पैदा करने के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। क्यों हम कहते हैं सभ्यता? सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सभ्य बनने की है। हम कितना सभ्य बन सकें, क्योंकि हम कभी जंगल में रहते थे और जंगल से जब हमारा शहरीकरण हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें इसी बात पर बल दिया गया कि हम कितना ज़्यादा अन्य लोगों का ख्याल रख सकते हैं। यदि हम इन सभी बातों पर ध्यान दें तो स्वाभाविक रूप से समाज में आपसी मतभेद खत्म होंगे, स्वार्थ की जो भावना है वह भी समाप्त होगी और समाज में प्रकृति का जो है एक माहौल बनेगा और सभी जगह प्रगति और खुशहाली आएगी। तो इसलिए हमें कहीं न कहीं लोगों के साथ यदि मनमुटाव है तो क्या करना चाहिए? संवाद करना चाहिए,
1: कम्युनिकेशन।
0: हाँ, कम्युनिकेशन। ऐसा संसार में देखिए क्या होता है, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, अंतर सिर्फ इतना होता है कि हम उनके पास कितना ज़्यादा हैं और कितना बेहतर ढंग से हम उन्हें समझते हैं। जो व्यक्ति आपके लिए बुरा है वह किसी न किसी के लिए अच्छा भी होगा, ऐसा हमेशा हमें सोचना चाहिए। यानी सभी लोग अच्छे होते हैं, हम उनके साथ बातचीत करें, संवाद करें, आपसी मतभेदों को सुलझाएं और समाज में शांति का मार्ग प्रशस्त करें।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी। चलिए ऐसा करते हैं, एक छोटे से गीत के साथ कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं, फिर आज की चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: आज की चर्चा।
1: चलिए एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का और सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस टुगेदर, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से शांति से एक साथ मिलकर हम रह सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इस दिन को मनाया जाता है तो अपने आप में शांति से रहने का एक बहुत ही बड़ा महत्व हमारे जीवन में होता है। फिर चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो, देश के स्तर पर हो या फिर विश्व के स्तर पर हो, काफ़ी पहलुओं पर हम ऑलरेडी प्रोग्राम के पहले हिस्से में चर्चा कर चुके हैं। प्रोफेसर जी, आजकल हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर काफी अशांति फैली हुई है
2: जी,
1: है ना। सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातों पर लोग आपस में लड़ पड़ते हैं कमेंट्स के जरिए
2: जी, बिल्कुल।
1: और ये भी कहीं ना कहीं एक अशांति का जो है रूप ले लेता है। और गौर करने वाली बात यह है कि जब सोशल मीडिया में लोग एक दूसरे से मतभेद है, विचारों का मतभेद है, या फिर कमेंट्स के जरिए एक दूसरे को बुलिंग कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, जो भी हम कहें, ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है फिर भी इस तरह से लड़ पड़ते हैं। तो कहाँ पर समाज में किस चीज़ की कमी है जो हमें ऐसी चीज़ें भी आजकल देखने को मिलती हैं
2: जी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इस प्रश्न का उत्तर खोजना कई बार बहुत ही कठिन है। और कैसे किसी भी व्यक्ति को, केवल युवा वर्ग ही नहीं, बच्चे भी और बड़े बुजुर्ग सभी लोग कहीं न कहीं सोशल मीडिया के गिरफ्त में आ चुके हैं। जब लगता है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार में या समाज में बहुत अकेलापन फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, तो वह सोशल मीडिया की तरफ अग्रसर होता है। एक समय था कि जब लोग अपनी भावनाओं को डायरी में लिखकर रखते थे और किसी को पढ़ने नहीं देते थे
1: जी,
2: ठीक है। अब वह जो डायरी है वह फेसबुक है। अब वो ऐसा फेसबुक है यानी मेरे फेस का वो बुक है, कोई भी पढ़ सकता है
1: जी।
2: कोई भी परेशानी होती है तुरंत हम सोशल मीडिया पर उसको शेयर कर देते हैं, कहीं हम घूमने जाते हैं तो फोटो डाल देते हैं
1: जी।
2: या कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो हम सोशल मीडिया पर पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि कई रूप हो सकते हैं, अलग अलग जो हैं ऐप हैं जिसके मार्फत से हम लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन आप जब देखेंगे कि वहाँ पर हमारे बहुत सारे फ्रेंड, कहने के लिए लिस्ट, फ्रेंड लिस्ट में हमारे बहुत सारे फ्रेंड होते हैं,
1: और वाकई में
2: लेकिन हाँ, लेकिन यदि आप उनसे बात करना चाहें या अपनी कोई परेशानी साझा करना चाहें या किसी तरह की सहायता प्राप्त करना चाहें तो वो चीजें
1: लोग सामने आते हैं। ये
2: एक बहुत बड़ा प्रश्न है
1: जी।
2: बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं लोग, पड़ोसी हैं, हम उनसे बात नहीं करते हैं लेकिन हम उनको व्हाट्सएप पर या इस तरह की किसी भी ऐप के थ्रू जो है हम उनसे संपर्क करते हैं लेकिन वो भावनाएं नहीं होती। तो क्या होता है कि व्यक्तिगत जीवन में हमें फेस टू फेस लोगों से जो है संवाद करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और जितना हम सोशल मीडिया के गिरफ्त में आएंगे उतना ही हम अकेलापन फील करेंगे और कहीं ना कहीं हम एक मोबाइल फ़ोन जो है एक जेल की तरह है, एक कारावास है। आप मोबाइल के स्क्रीन में कहीं ना कहीं अपने आप को कैद करते हैं। जैसे ही आप फ्री हैं आप एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए आप मोबाइल फ़ोन में कैद हो जाते हैं और फिर उस दुनिया में आप शांति की खोज करते हैं जो कि असंभव है
1: जी। कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया अशांति का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है,
2: बहुत बड़ा कारण।
1: अगर हम इसे एक अलग रूप से देखें, आज तो हमारा विषय अलग है लेकिन बहुत से लोग सोशल मीडिया में बुलिंग के चलते काफी मानसिक तौर पर जो है परेशानी से गुजरते हैं, खासकर हमारे युवा जो है इससे काफी पीड़ित होते हैं क्योंकि कभी कभार सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें वो शेयर करते हैं जो फिर उनकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करने लगती है।
2: देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी का सड़क पर कोई दुर्घटना घट गई हो, हम वीडियो बनाने लगते हैं, हमको वहाँ पर उनकी सहायता करनी है, ना कि हम उनका वीडियो बनाकर कहीं सोशल मीडिया पर हम अपलोड कर रहे हैं और उस पर लाइक या

0: लाइक जो भी कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि सोशल मीडिया का सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष यह है कि हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो नकारात्मक बातें हैं वह यह हैं कि इस पर अफवाह फैलती हैं, कई बार हमें गलत जानकारियां हम साझा कर देते हैं और कई बार समाज के प्रति हमारा नज़रिया बहुत ही बदल जाता है। हम एक दूसरे के प्रति कहीं न कहीं हम द्वेष, घृणा, इस तरह की भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं। तो इससे जो समझदार लोग हैं उनको तो बहुत परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो युवा मस्तिष्क है वह कभी कभी इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इसके कारण बहुत बड़ी समस्या होती है। कई बार वे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, कई बार डिप्रेशन में जा सकते हैं या इस तरह की समस्या हो सकती है, वो अपनी मानसिक शांति खो सकते हैं। तो हमें सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और समाज में एकरूपता, समानता, न्याय सभी चीज़ों को स्थापित करने के लिए कहीं न कहीं हमें आसपास के लोगों से संवाद करना है, मिलना है, जुलना है, उनसे बातें करनी है और सभी गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करके हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जिससे समाज में और देश में शांति की बात हो सके और एक कल्याणकारी देश बन सके।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की हम बात करें, जैसे आपने कहा, उसका नकारात्मक पहलू भी है और सकारात्मक रूप भी है। वो निर्भर हर व्यक्ति पे करता है कि आप उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से आप उससे जो है सकारात्मक चीज़ें ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें इस बात पर खास ध्यान देना होता है कि वो हमारे जीवन में शांति लाए या फिर लोगों से हमारा जुड़ने का एक माध्यम बने, न कि हमारे जीवन में और तनाव को बढ़ाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। काफ़ी सारे पहलुओं पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्र स्तर पर यदि हम बात करें तो देश के नागरिक किस तरह से आपसी संबंध ऐसे बना सकते हैं कि इस शांति की भावना, भाईचारे की भावना या अपनेपन की भावना को और भी जो है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल आपसी मतभेद छोटी छोटी बातों पर बढ़ जाता है। किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा या फिर न कहने पर भी, मतलब एक दूसरे से जब हम बात नहीं करते हैं थोड़े समय के लिए तो सोचने लगते हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं बात करनी है, या मैं क्यों जाऊँ पहले पहल करने, वो क्यों नहीं आ रहा है, है ना। जहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन हमारे मन में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है।
0: जी, आप देखेंगे कि पूरे विश्व में अधिकांश जो देश है, चाहे वो भारत हो, मॉरिशस हो या अन्य भी जो देश हैं, वो लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतांत्रिक देश में शांति बनाए रखने के लिए हमारे पास एक संविधान का भी निर्माण होता है। और संविधान जो है समाज में या देश में एक ऐसी व्यवस्था देता है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ न्यायपूर्ण ढंग से और शांति के साथ रह सकें, इसीलिए बहुत सारे कानून भी बनाए जाते हैं जिससे समाज में वैमनस्यता ना फैले, लोग एक दूसरे को हानि ना पहुंचाएं और आपसी भाईचारा के साथ रह सकें। तो एक संविधान का भी उसमें निर्माण होता है। तो पूरे वैश्विक स्तर पर जब हम किसी राष्ट्र को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि मॉरिशस एक ऐसा राष्ट्र है जो बहुभाषी है, बहुधार्मिक है, बहुसांस्कृतिक है और मॉरिशस पूरे विश्व के लिए एक आदर्श राष्ट्र के रूप में देखा जाता है कि यहाँ पर लोग बहुत ही शांति के साथ, भाईचारे के साथ लोग रहते हैं। और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि जितने भी पर्व त्यौहार हम मनाते हैं वो हम सामूहिक रूप से मनाते हैं और जब हम पर्व त्यौहार में सामूहिक रूप से शामिल होते हैं तो सामूहिकता का जो भाव होता है वह भाईचारे के बिना संभव हो ही नहीं सकता। तो यह मॉरिशस देश की अपनी खूबसूरती है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए कि यहाँ विविधता में एकता है, मिलीजुली संस्कृति होने के बावजूद जो है एक सांस्कृतिक मजबूती दिखती है, एक सभ्य और सांस्कृतिक समाज का एक रूप दिखता है और यह पूरे विश्व के लिए एक आदर्श देश है।
1: जी, और अपने आप में हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि जिस तरह वो अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का

0: निभाता है, उसी प्रकार समाज के प्रति और देश के प्रति भी जो है उसका एक कर्तव्य होता है। क्योंकि कई बार अगर कुछ जीवन में अच्छा नहीं चल रहा होता है या सामाजिक स्तर पर अच्छा नहीं चल रहा होता है तो हम दोष सरकार को देते हैं, संस्थाओं को देते हैं, लेकिन संस्थाओं और जो है सरकार का जितना बड़ा योगदान होता है देश की प्रगति में, वही व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति का भी अपना योगदान होना बहुत ज़रूरी है। कहते ना कि जो भी बदलाव हम समाज में देखना चाहते हैं उसके लिए पहला कदम हमें उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल, जब हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है
0: जी।
1: क्योंकि हम ही उनको चुनकर भेजते हैं
0: जी।
1: सरकार कोई अलग से संस्था नहीं है, बल्कि वह हमारा जो है एक मुखिया है, एक प्रमुख संस्था है जो हम लोगों की देखभाल करने के लिए बनती है और हम ही बनाते हैं
0: जी।
1: तो वहाँ पर स्वाभाविक है कि हम यह मानकर चलें कि सरकार कोई एक अलग ढंग से काम करने वाली कोई संस्था नहीं है, बल्कि उसमें हम शामिल हैं और हमें सरकार के साथ सहयोग देकर आगे बढ़ना चाहिए। पहली बात तो यह। दूसरी बात जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या, क्या केवल व्यक्तिगत। मेरा मानना है कि व्यक्तिगत हम होते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो भूमिका होती है वह सामूहिक भूमिका होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, हम बहुत अच्छे पद पर पहुँचे, या हम किसी अन्य मार्फत से इस समाज में रह रहे हैं, तब तक हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा जब तक हम अपने देश के लिए कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाएंगे। यानी अंतिम लक्ष्य जो है अपने देश को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें सामने आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी रूप में, जब हम एक खिलाड़ी होते हैं तो हम देश का मान बढ़ाते हैं, जब हम एक कृषक होते हैं, किसान होते हैं, उसमें भी हम देश का मान बढ़ाते हैं। यानी कोई भी पद न छोटा होता है न बड़ा होता है, लेकिन हमारी भूमिका अलग अलग रूपों से होती हुई गुजरती है और कहीं न कहीं हम देश के निर्माण और उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए जितने भी युवा वर्ग हैं या जो भी व्यक्ति हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे एक ही अनुरोध है कि हमारा उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम अपने समाज और देश के बारे में नहीं सोचेंगे।
0: बिल्कुल, कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और हर एक व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का योगदान जो है मायने रखता है। ये नहीं है कि वो शायद सफाई का कार्य कर रहा है तो उसका कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। जहाँ पर देश के निर्माण में बड़े बड़े पदों की आवश्यकता होती है, वहीं पर छोटे छोटे कार्यों की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि छोटे छोटे कार्य करने के लिए हमें लोग नहीं मिलते हैं, कितनी समस्याएँ होती है। तो हर एक काम अपने आप में महत्वपूर्ण है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। और अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो इस दिवस का क्या महत्व है, खासकर यूएन का भी योगदान पर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जब एक ऐसे दिन को मना रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा महत्वपूर्ण कारण तो होगा ही।
1: जी देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई है
0: जी।
1: उसके बाद इस संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य हो गया कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है
0: जी।
1: और आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं न कहीं सीमाई जो है मतभेद है, कई देश आपस में लड़ रहे हैं और आर्थिक मतभेद भी चल रहे हैं। जो विश्व में बहुत ही सीमित संसाधन हैं, पेट्रोल है, डीजल है, उनके लिए भी कई बार मतभेद पैदा होते हैं और हमारा पूरा विश्व जो है आज कहीं ना कहीं इस संघर्ष के मुहाने पर खड़ा है, जहां लगता है कि पूरी विश्व की सभ्यता और मानवता किसी बड़े संकट से गुजर रही है। इसका बहुत ही अच्छा समाधान है जो भारतीय परंपरा में है, जो हमारी संस्कृति का मूल है, वह है वसुधैव

0: कुटुंबकम, यानी इस वसुधा में रहने वाले सभी लोग हमारा क्या है, परिवार का हिस्सा है
1: जी।
0: परिवार है। और उस परिवार में क्या है, आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है वह सबसे बड़ी चुनौती है देखेंगे जलवायु परिवर्तन है, खान पान है, रहन सहन है, आर्थिक चुनौतियां हैं और इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने जो हैं उपलब्ध हैं, और उन सभी का निदान यदि है तो वसुधैव कुटुंबकम में है। केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना है, इस वसुधा के बारे में भी सोचना है, यानी यहाँ पर जितना जल है, जितना संसाधन है, उन सभी का उपयोग हमें सोच समझ कर करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें एक ऐसी पृथ्वी उनके उनके हाथ में सौंपनी है जिस पर वे गर्व कर सकें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना अच्छा जो है संसाधन छोड़ कर रखा है। हम पृथ्वी का दोहन ना करें और उसको उस तरह से क्षति ना पहुंचाएं कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो है बहुत ही दुखदाई हो। तो हमारा काम होता है कि हम आने वाली हर पीढ़ियों के लिए एक ऐसे समाज, देश, प्रकृति और का निर्माण करें जिससे कि सभी को यहाँ पर विकसित होने का एक पूरा मौका मिल सके और वे शांति के साथ जी सकें। इस पर हमें बहुत ही ज़्यादा विचार विमर्श करने की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल, चलिए इसी के साथ हम हमारे कार्यक्रम के लगभग अंत तक आ गए हैं। आज हमने शांति से साथ मिलकर रहने पर जो है चर्चा की। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हर मई महीने की 16 तारीख को मनाया जाता है। जाते जाते प्रोफेसर जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जितने श्रोता और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं उनको?
0: जी बिल्कुल, इस खास दिवस पर मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि समाज में हमें प्रेम और मानवता की स्थापना करनी चाहिए। यदि हम प्रेम और मानवता की स्थापना करने में असफल हो जाते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग व्यक्तिगत रूप से असफल होते हैं, यानी हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो सामूहिकता में है। हमें समूह के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ किस तरह से हम शांति स्थापित कर सकते हैं उसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबके सुख को ध्यान में हमें रखना है और हमें आगे के बारे में सोचना है। यदि हम समाज में शांति स्थापित कर पाएंगे, पूरे विश्व में शांति स्थापित कर पाएंगे, तभी हम एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का निर्माण कर पाएंगे और तभी हम खुश रह पाएंगे और खुद भी शांत रह पाएंगे। तो जियो और जीने दो।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी, हमारे कार्यक्रम से आप जुड़े और इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस टुगेदर पर आज हमने चर्चा की। और इसका कुछ ही शब्दों में अगर कहे तो ये सिर्फ हमें ये सिखाता है कि किस तरह से हम प्रेम से, सम्मान से और एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश और फिर विश्व स्तर पर एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त होने को चला। जितने श्रोता और दर्शकों ने हमारा साथ दिया आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। आप लोगों को याद दिला दें, इस कार्यक्रम का रिब्रॉडकास्ट जो है आप सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर दोपहर 3 बजे, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही MBC के चैनल 3 पर सपैर के 4 बजे। तो जाते जाते एक बार फिर से प्रोफेसर राजशेखर जी आपका धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आज के इस विषय को लेकर आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी। साथ ही हम धन्यवाद देंगे हमारी प्रोडक्शन टीम का, हमारी टेक्निकल टीम का, हमारे प्रोड्यूसर रहे अविनाश बिसुन दयाल जी, आपका धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद देंगे फैज़ान और उरुषा को जिन्होंने हमारा सहयोग दिया इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना हम करते हैं। दोबारा आपसे हम मिलने फिर लौटेंगे। नमस्कार आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय 10 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं 10 बजे के संक्षिप्त समाचारों के साथ।

लगातार 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कोंतोगेल में रविवार शाम भड़की हिंसा के बाद मुका की सीआईडी ने पहली गिरफ्तारियां की हैं। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। याद दिला दें कि कोंतोगेल गांव में उस समय तनाव फैल गया था जब 2 समूह आमने सामने आ गए थे। बताया जा रहा है कि कुछ लोग हेल्प ट्रक पर क्वाड बाइक चला रहे थे, जबकि वहाँ इस तरह की गतिविधि प्रतिबंधित है। इस दौरान गोली चलने की आवाज भी सुनी गई। 2 वाहनों को आग लगने आग के हवाले कर दिया गया और मौजूद वहां एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वकवा में 25 वर्षीय रक विलियम का शव मिलने के बाद हत्या की आशंका है। फ्लोरियल निवासी रक विलियम का शव कल सुबह घानम वकवा स्थित एक मैदान के पास मिला था। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार उसे कथित तौर पर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन दबने के कारण मौत होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में 18 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। आज राष्ट्रसभा की बैठक में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान बैंक ऑफ मॉरिशस से जुड़े 4 अहम सवाल उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से पूछा जाएगा कि 2019 से 2024 के बीच कितनी राशि की नई मुद्रा छापकर सरकार को सौंपी गई। साथ ही 83 बिलियन रुपए की कथित नोट छपाई से जुड़े आरोपों के बाद क्या कदम उठाए गए, इस पर भी जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परियोजना की प्रगति और बैंक ऑफ मॉरिशस में डायरेक्टर ऑफ सुपरविजन पद पर रह चुके अधिकारियों की सूची भी चर्चा का विषय होगी। मॉरिशस सब इलाके में एक बड़े मेडिकल हब के रूप में अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार मेडिकल टूरिज्म के एक टिकाऊ मॉडल को विकसित कर अफ्रीका, हिंद महासागर इलाके और कुछ यूरोपीय देशों के मरीजों को आकर्षित करना चाहती है। लेकिन ये पहल सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य कुशल रोजगार के नए अवसर पैदा करना और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाना भी है। मॉरिशस के पास इस तेजी से बढ़ते सेक्टर को विकसित करने के लिए कई मजबूत आधार पहले से मौजूद हैं। सरकार की ये रणनीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: विशेष चिकित्सा ढांचे को आधुनिक बनाना, स्वास्थ्य सेक्टर में अधिक प्रशिक्षित कर्मी तैयार करना और पर्यटन तथा चिकित्सा सेक्टरों के बीच सहयोग बढ़ाना। विदेश स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गल्फ देशों के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने मंगलवार के लिए प्रस्तावित ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि गंभीर बातचीत जारी है। ट्रूथ सोशल पर किए गए अपने संदेश में ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं ने उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया है कि ऐसा समझौता होने जा रहा है जो अमेरिका के लिए स्वीकार्य होगा और इसमें ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। रॉयल रोड घोंबी में 80 साल के महमूद सदुल्ला इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज शाम के

0: तीन बजे उन्हीं के मकान खौंबे से निकालकर अंतिम संस्कार के लिए बल्कि दफनाने के लिए कपमलगुल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM रॉयल रोड बुले रूज फ्लैक में डियाल सुपरमार्केट के पास 59 साल की 59 ईयर्स ओल्ड की चंद्रावती द्वारका की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रामलोल, लोग उन्हें मून के नाम से ज्यादा जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उन्हीं के मकान फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 PM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: भक्ति धारा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम करजोड़ अभिवादन करते हैं। ये रेडियो मॉरिशस AM2 मीडियम अवार्ड 19 किलोहर्ट्स पर आप इस प्रसारण को सुन पा रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम को उपस्थित हो चुकी है रत्ना। पुनः हमारा करजोड़ वंदन स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत वेद सुधा का कार्यक्रम ठीक 10:15 बजे आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश जी की प्रस्तुति में। तो आइए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं इस प्रथम गणेश भजन द्वारा।

वेद सुधा कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज का कार्यक्रम तीन भागों में विभाजित है। प्रथम वेद पाठ एवं भावार्थ, द्वितीय एक प्रेरणादायक भजन और अंत में एक वैदिक मंत्र की गहन व्याख्या। तो आइए वेद पाठ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ॐ उभाभ्याम् देवसवितः पवित्रेण सवेन च माम पुनीहि विश्वतः। हे सविता देव, आप अपने पावन ज्ञान और यज्ञमय शुभ कर्म हम इन दोनों से मुझे सब ओर से पवित्र कीजिए। ओम यदि दिवा यदि नक्तमेनांसि चक्रिमावयम् वायुर्मा तस्मादेन सो विश्वान् मुञ्चन्त्वं हसः। चाहे हम दिन में चाहे रात में पाप करें, वह अंतर्यामी प्रभु हमें सर्वविध पापों अपराधों दुर्गुण दुर्व्यसनों तथा उनके परिणाम स्वरूप होने वाले कष्ट क्लेशों से मुक्त करें। ओम यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनांसि चक्रिमावयम् सूर्यो मादस्मादेन सो विश्वान् मुञ्चन्त्वं हसः। मनुष्यों को चाहिए कि सूर्य के समान जिस प्रभु ने सृष्टि के आदि में हम मनुष्यों के हितार्थ जिस वेद ज्ञान का प्रकाश किया, उस वेद ज्ञान के प्रकाश में सदा वर्तमान रहते हुए हम जागते सोते सदा पाप अपराधों से दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचते रहें। ओम यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायाम् यदन्द्रिये यच्छुद्रे यदर्ये यदेनश्चक्रिमावयम् यदेकस्याधिधर्माणि तस्मावयजनमसि। हे प्रभो, जो ग्राम अरण्य सभा मन आदि इंद्रियां सेवक स्वामी किसी एक के कर्तव्य पालन करने आदि में हम पाप करते हैं, उसको तू ही दूर करने वाला है। ओम शांति

प्रिय श्रोताओं, मानव जीवन सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना माना गया है। वेदों में मनुष्य को केवल शरीरधारी प्राणी नहीं बल्कि चेतना, विवेक, नैतिकता और आत्मिक उन्नति की क्षमता से संपन्न दिव्य सत्ता कहा गया है। मनुष्य के पास विचार करने की शक्ति है, सत्य असत्य का निर्णय करने की क्षमता है और अपने जीवन को ऊंचा उठाने का सामर्थ्य है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने बार बार मनुष्य को यह स्मरण कराया कि उसका जीवन केवल खाने, सोने, धन कमाने, भोग करने और बाहरी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए नहीं है। आज का युग या आज का आधुनिक समाज बाहरी सफलता को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठा है। व्यक्ति बचपन से ही प्रतिस्पर्धा की दौड़ में लगा दिया जाता है। अधिक अंक, अधिक पद, अधिक धन, विशाल भवन, विलासिता और प्रसिद्धि को ही सफलता का मापदंड समझा जाता है।

परिणाम स्वरूप मनुष्य का जीवन तनाव, चिंता, अवसाद और अशांति से भरता जा रहा है। बाहरी सुख बढ़ रहे हैं परंतु आंतरिक शांति घटती जा रही है। श्रोताओं, वेद इस स्थिति को अधूरा जीवन मानते हैं। वेदों के अनुसार मनुष्य का जीवन आत्मा की उन्नति, सत्य की खोज, धर्म पालन, समाज सेवा और ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। भौतिक उन्नति आवश्यक है किंतु वह जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकती। यदि मनुष्य केवल भोग में ही डूब जाए तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है और वह आत्मिक आनंद से वंचित रह जाता है। इस विषय में वेद और उपनिषदों के अनेक मंत्र मानव जीवन की दिशा स्पष्ट करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय। अर्थात, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यह मंत्र स्पष्ट करता है कि मानव जीवन केवल सांसारिक भोग के लिए नहीं है, उसका वास्तविक उद्देश्य अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना है। आगे वेद कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेच्छतगम समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात, मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। धर्मयुक्त कर्म ही जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। यह मंत्र सिखाता है कि जीवन कर्ममय होना चाहिए, किंतु कर्म केवल धन और भोग के लिए न होकर धर्मयुक्त होना चाहिए। आगे शास्त्रकार कहता है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान्नि बोधत। अर्थात, उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करो। यह मंत्र मनुष्य को आलस्य, अज्ञान और केवल भोगमय जीवन से बाहर निकलकर उच्च जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे शास्त्रकार कहता है, सत्यम वद धर्मम चर। अर्थात, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। यह मंत्र बताता है कि मानव जीवन का आधार केवल सफलता नहीं बल्कि सत्य और धर्म होना चाहिए। श्रोताओ, यदि जीवन का उद्देश्य केवल भोजन, भोग और आराम होता तो मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर न रहता। पशु भी भोजन करते हैं, भय से बचते हैं, निद्रा लेते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, परंतु मनुष्य को ईश्वर ने विवेक प्रदान किया है। यही विवेक उसे महान बनाता है। मनुष्य कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म का सृजन कर सकता है। वह समाज का निर्माण कर सकता है। वह दूसरों के दुख को समझ सकता है। वह ईश्वर के विषय में चिंतन कर सकता है। यही कारण है कि वैदिक ऋषियों ने मनुष्य जीवन को अत्यंत दुर्लभ कहा है। यदि मनुष्य केवल इंद्रिय सुख में ही जीवन बिताए तो वह अपनी महानता को खो देता है। इसलिए वेद कहते हैं कि मनुष्य को आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानना चाहिए। श्रोताओं, भोगवाद वह स्थिति है जिसमें मनुष्य इंद्रिय सुख को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेता है। आज संसार में यही प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। व्यक्ति सोचता है कि अधिक धन, अधिक वस्तुएं और अधिक विलासिता उसे सुख देंगी, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत दिखाई देती है। जिन देशों में भौतिक साधन सबसे अधिक हैं, वही तनाव और अवसाद भी अत्यधिक दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि भौतिक वस्तुएं

0: शरीर को सुविधा दे सकती है, परंतु आत्मा को शांति नहीं दे सकती। वेद कहते हैं कि इच्छाओं का अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य जीवन भर भागता रहता है। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति छोटी नौकरी से संतुष्ट नहीं होता, वह बड़ी नौकरी चाहता है। बड़ी नौकरी मिलने पर अधिक वेतन की इच्छा करता है, फिर बड़ा घर, फिर बड़ी गाड़ी, अधिक प्रतिष्ठा और दूसरों से आगे निकलने की लालसा उत्पन्न होती है। इस प्रकार उसका मन कभी शांत नहीं होता। इसलिए वैदिक दर्शन संतोष को महान गुण मानता है। श्रोताओं, आज का मनुष्य अत्यधिक तनाव में जी रहा है। सुबह से रात तक भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और चिंता उसके जीवन का हिस्सा बन गई है। विद्यार्थी परीक्षा के तनाव में है, युवा नौकरी के तनाव में है, व्यापारी आर्थिक चिंता में है और वृद्ध अकेलेपन से पीड़ित है। इस स्थिति का मुख्य कारण यह है कि मनुष्य ने अपने जीवन को केवल बाहरी उपलब्धियां से जोड़ लिया है। जब सफलता मिलती है तो अहंकार बढ़ता है, और जब असफलता मिलती है तो निराशा बढ़ती है। दोनों ही स्थितियां अशांति का कारण बनती है। वेद इस समस्या का समाधान अध्यात्म और आत्मसंयम से बताते हैं। श्रोताओं, वेदों में जीवन को संतुलित बनाने के अनेक उपाय बताए गए हैं। उनमें यज्ञ, योग, ध्यान, स्वाध्याय और सत्संग प्रमुख हैं। श्रोताओं, वेदों के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा शाश्वत है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है तब वह भोग और भय में फंस जाता है, परंतु जब वह समझता है कि वह आत्मा है तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं देखता बल्कि आत्मिक दृष्टि से देखने लगता है। श्रोताओं, वेद हमें संतुलित जीवन जीना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को कर्म भी करना चाहिए और आत्मचिंतन भी, समृद्धि भी आवश्यक है और संयम भी, विज्ञान भी आवश्यक है और अध्यात्म भी। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह केवल बाहरी उपलब्धियों की दौड़ में न खो जाए, बल्कि अपने आत्मस्वरूप को पहचाने और ऐसा जीवन जिए कि स्वयं के साथ साथ संपूर्ण समाज के लिए कल्याणकारी हो। यही वैदिक जीवन दर्शन का सार है और यही मानव जीवन की वास्तविक सफलता है। प्रिय श्रोतागण, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। आशा है कि आज के वैदिक संदेश से आपको अवश्य ही लाभ एवं मार्गदर्शन मिला होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी में श्रीमती अंजू जी का विशेष योगदान रहा, उनके प्रति कृतज्ञता है। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नवीन प्रस्तुति के साथ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

भक्ति धारा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर, और इसी के साथ वेद सुधा कार्यक्रम के लिए हम आचार्य सुदेश बद्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं, आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन हम भगवान महावीर यानी हनुमान जी की पूजा करते हैं। और आप सभी को याद दिला दें, इस समय अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में विशेषकर हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और आज इस अधिक मास में भगवान विष्णु के रूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का वार है।

तो आइए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस की चौपाई। किए हूँ कुबेशु साधु सन्मान, जिमि जग जामवंत हनुमान, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक हूँ बेद बिबिदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से सदैव लाभ ही होता है, यह बात लोक और वेद में लिखी गई है और सभी लोग इस बात से ज्ञात हैं, इस बात का ज्ञात रखते हैं।

भक्ति धारा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं, और इसी के साथ आज का दिन सभी के लिए मंगलमय रहे। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद बिमोह बस हृदय धरहि कछुआन। रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि होते हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात को समझ बैठते हैं। ईश्वर का सदा सुमिरन करते रहें, ईश्वर को सदा याद करते रहें, और चलिए भक्ति धारा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

जिनके मन बसे हो भगवान श्री राम, वहां अपने आप स्वयं पहुंच जाते हैं भगवान हनुमान। तो बस भगवान राम का नाम लेते हुए दो अक्षर का यह प्यारा नाम सदा सुखदायी, और इसी के साथ ईश्वर सभी का कल्याण करे मन में बस यही भावना रखते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर पूर्ण विराम लगाएंगे। अगले कार्यक्रम में पुनः हमारी और आपकी भेंट होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति 11 बजे के समाचारों के बाद आप विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे। तो इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे आस्था नमस्कार।
1: नमस्कार, 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। चिकुनगुनिया को लेकर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। 14 मई से यात्रियों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कई सावधानी कदम अपनाने की सलाह दी गई है। मच्छर भगाने वाले उत्पाद, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े और मच्छरदानी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। मॉरीशस में चिकुनगुनिया के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने देश के लिए दूसरी श्रेणी की स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। डॉक्टरों के अनुसार सर्दी शुरू होने के साथ पिछले कुछ दिनों में मामलों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी पूरी तरह सतर्क है। इस साल की शुरुआत से अब तक 3478 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 110 मामले अभी भी सक्रिय बताए जा रहे हैं। कोतुगिल में रविवार शाम भड़की हिंसा के बाद मुका की सीआईडी ने पहली गिरफ्तारियां की हैं। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। याद दिला दें कि कोतुगिल गांव में उस समय तनाव फैल गया था जब दो समूह आमने सामने आ गए थे। बताया जा रहा है कि कुछ लोग हेल्थ ट्रक पर क्वाड बाइक चला रहे थे, जबकि वहां इस मामले की इस तरह की गतिविधि प्रतिबंधित है। इस दौरान गोली चलने की भी आवाज सुनी गई। दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और मौजूद एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वाकवा में 25 वर्षीय रक विलियम का शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फ्लोरियल के इस निवासी के शव को कल घानम वाकवा स्थित एक मैदान के पास बरामद किया गया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार उसे कथित तौर पर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन दबने के कारण मौत होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में 18 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब में मौजूद कई मोशन हज यात्रियों के बीच नाराजगी और चिंता का माहौल है। सोमवार 18 मई को हज के लिए पहुंचे करीब 50 हाजियों ने अपने लिए तय की गई इमारत में ठहरने से इनकार कर दिया। हाजियों का कहना है कि इमारत की हालत खराब है और वहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। स्थिति को देखते हुए उन्होंने इस्लामिक कल्चरल सेंटर मंत्री शकील मोहम्मद और रियाद में मोशन राजदूत से हस्तक्षेप की अपील की। राजदूत के अनुसार अधिकारियों की ओर से हाजियों को बेहतर व्यवस्था वाली जगह पर ठहरने के प्रयास जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गल्फ देशों के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने मंगलवार के लिए प्रस्तावित ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि गंभीर बातचीत जारी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
2: जारी की गई बालिसों और मागीजानी के आसपास के इलाकों में खासकर मौसलमान सोसाइटी जिसू CHA मागीजानी NHDC बालिसों जंक्शन रोड और कुछ इलाके रिलोजमेंट मौशिकोस इन इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 20 मई को सुबह 8:30 से लेकर शाम 5 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ मौताबा के गांव में रहने वालों को भी सूचित किया जाता है कि बुधवार 20 मई को सुबह 9 से लेकर दिन के 4 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। और अंत में है शमैघनिये के आसपास के इलाकों में रहने वालों को भी सूचित किया जाता है कि गुरुवार 21 मई को दोपहर के 1 से लेकर शाम के 5:30 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्तियाँ जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आपने ध्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। उर्दू भाषा में पेशकश है सैयदा सुबाई की।

मौजे सामीन, आपको माहे ज़िलहज बहुत बहुत मुबारक हो। इस्लामी साल का ये आखिरी और बाबरकत महीना नेकियों, कुर्बानी और हज की सआदत हासिल करने का बेहतरीन

जी हाँ, अम्मा है इज़िल हज इस माह के पहले 10 दिन अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। इनमें कसरत से ज़िक्र इलाही, तिलावते कुरान पाक और नेकियों का एहतमाम करना चाहिए। मौज़े सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में आप समात फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक, हम्द, मौलाना जुनैद अहमद खान अशरफी साहब का बयान, नातो सलाम और आपके पैगाम। ताखीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं सूरह इब्राहिम की तिलावत से। आऊज़ बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये एक पुरनूर किताब है। इसको हमने तुम पर इसलिए नाजिल किया है कि तुम लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी उनके परवरदिगार के हुक्म से इज्जत वाले खूबियों वाले मालिक के रास्ते की तरफ, यानी उस अल्लाह के रास्ते की तरफ कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है, और उन काफिरों के लिए अजाब शदीद की वजह से तबाही और बर्बादी।

और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वो अपनी कौम की जबान बोलता था ताकि उन्हें अहकाम इलाही खोल खोल कर बता दे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब है हिकमत वाला है।

और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को तारीकियों से निकालकर रोशनी में ले जाओ और उनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ, और इसमें उन लोगों के लिए जो साबिर और शाकिर हैं निशानियां हैं।

और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने जो तुम पर मेहरबानियां की हैं उनको याद करो, जबकि उसने तुमको फिरौन की कौम से रिहाई बख्शी, वो लोग तुम्हें बुरे बुरे अजाब देते थे और तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी।

और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अजाब भी सख्त है। और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग जमीन में हैं सब के सब नाशुक्री करो तो भी अल्लाह बेनियाज है, काबिल-ए-तारीफ है।

0: भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और जो उनके बाद थे, जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जब उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो, और कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो हमको उसमें भारी शक है।
1: और

उनके पैगंबरों ने कहा, क्या तुमको अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम्हारा ये मंशा है कि जिन चीजों को हमारे बड़े पूजते रहे हैं उनके पूजने से तुम हमें रोक दो। तो अच्छा, कोई खुली दलील लाओ यानी मौजजा दिखाओ।

पैगंबरों ने उनसे कहा कि हां हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नबूवत का एहसान करता है, और हमारे इख्तियार की बात नहीं कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुमको तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक मौजजा दिखाएं, और अल्लाह ही पर मोमिनों को तो भरोसा रखना चाहिए।

और हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं। और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर हम सब्र करेंगे, और अहले तवक्कुल को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए।

और जो काफिर थे उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। बस उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुमको इस जमीन में आबाद कर देंगे। ये उस शख्स के लिए है जो कयामत के रोज मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे।

और पैगंबरों ने अल्लाह से फतह चाही और हर सरकश जिद्दी नामुराद रह गया। उसके पीछे दोजख है और उसे पीप वाला पानी पिलाया जाएगा, वो उसको घूंट घूंट करके पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी।

जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल राख किसी है कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले जो उसे उड़ा ले जाए। इसी तरह जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ काबू न होगा। यही तो परले सिरे की गुमराही है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे, और ये अल्लाह को कुछ भी मुश्किल नहीं।

और कयामत के दिन सब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो गरीब पैरोकार बड़े बन बैठने वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरों थे, क्या तुम अल्लाह का कुछ अजाब हम पर से दफा कर सकते हो? वो कहेंगे कि अगर अल्लाह हमको हिदायत करता तो हम तुमको हिदायत करते। अब हम घबराहट जाहिर करें या सब्र करें, हमारे हक में बराबर है। कोई जगह रिहाई की हमारे लिए नहीं है।

ये क़ता है मेरी क़ता मगर तेरा नाम भी तो गफूर है। तू बख्श दे मेरे सब गुनाह, तू बख्श दे मेरे सब गुनाह, तू रहीम है तू गफूर है, तू रहीम है तू गफूर है।

0: मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:31 हो चुके हैं। मंगल का दिन है, मई की 19 तारीख है और माह ज़िलहज की आज पहली तारीख है। आप तमाम सुनने वालों को हमारी जानिब से ये मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आइए समाअत फरमाइए चंद ऐलानात। बुध, जी हाँ, कल बुध 20 मई सुबह 10:15 नूर मोहम्मदी मस्जिद गिबीज पाई में दावत इस्लामी की जानिब से दुआए सेहत इज्तिमा का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। और इतवार 24 मई दिन के 1 बजे इद्रीस गुमानी सेंटर हॉल मागों स्ट्रीट, जी हाँ, सेंटर हॉल ए मागों स्ट्रीट पोर्ट लुइस में मुस्लिम सीनियर लेडीज़ एसोसिएशन और म्यूनसिपैलिटी ऑफ पोर्ट लुइस की जानिब से ज़िलहज के माह मुबारक में एक नूरानी महफिल का अहतमाम किया जा रहा है। और जुम्मा 22 मई सुबह 10 बजे जामिया अयूबिया रिजविया निकोले रोड पोर्ट लुइस में ज़िलहज के मौके पर शैला अयूब रिजवी की सरपरस्ती में ख़वातीन के लिए एक रूहानी महफिल का अहतमाम किया जा रहा है। बाद नमाज ज़ोहर लंगर भी तकसीम किया जाएगा। ये थे चंद ऐलानात। आप अपने पैगामात हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251705। जी हाँ, अब आप समात फरमाएंगे खतीब व इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद खान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समात फरमाइए।
1: نحمده نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سامعين حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اس وقت ہم اور آپ ماہ ذی الحجہ مقدسہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ یہ مقدس مہینہ آتے ہی اپنے اندر بہت سے جذبات اور قربانیوں کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔

हज मकबूल, ज़ियारत नबी दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूर फरमाकर उनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाकर दीन और दुनिया में रहमतें बरकतें अता फरमा दें। दूसरी दुआ हम ये करेंगे रहल आलमीन, जिस वक्त हुज्जाज कराम आज की तारीख़ में मक्के मुकर्रमा में हैं, कुछ मदीने मुनव्वरा में हैं, वो सब हज के अरकान को अदा करने के लिए के मक्के की सरज़मीन पर हाज़री देने के लिए बेताब हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए और उनके हज को कबूल फरमाकर उनकी दुआओं से पूरी दुनिया में अमन सुकून अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहु व अम्मा नवालहु ने क़ुरान हकीम में साफ तौर पर ज़िक्र फरमाया, क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कहा, ए महबूब, आप फरमा दें बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानियाँ और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, ये सब अल्लाह के लिए है। कौन अल्लाह? लिल्लाह। कौन वो अल्लाह? रब्बिल आलमीन, जो सारी कायनात को पालता है, ज़िंदगी देता है, खाना खिलाता है, कपड़े पहनाता है, बीमारों को शिफा देता है। तो हुज़ूर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ख़िताब कहकर पूरे आलम इंसानियत को ये पैगाम दिया गया, पूरी दुनिया के इंसानों को ये पहला पैगाम है कि बेशक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज और क़ुरबानी किसी की नहीं हो सकती, लेकिन मेरे रसूल से कहलाया गया, तुम कहो मेरी जो नमाज है वो रब के लिए है, किसी के दिखावे रियाकारी के लिए नहीं है। वो नुसुकी और मेरी क़ुरबानी जो है वो भी रब के लिए है, किसी के दिखावे रियाकारी के लिए नहीं है। व महयाया और मेरी ज़िंदगी जो है वो भी रब के लिए है, उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का पालनहार है, और मेरी मौत भी उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का पालने वाला है। चार बातें इसमें ज़िक्र हैं, नमाज, क़ुरबानी, ज़िंदगी और मौत। यही चार चीज़ें अगर इंसान समझ ले तो फिर वह इंसान इंसान कामिल बन जाता है, वह इंसान एक बेहतरीन इंसान बनकर फिर दूसरे गुमराह लोगों के लिए वह हिदायत का सबब बन जाता है। और इंसान कामिल, इंसानियत जिस पर मुकम्मल हुई, उस ज़ात का नाम हुज़ूर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम है कि इंसानियत को भी नाज है हुज़ूर की ज़िंदगी पर। हुज़ूर ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, सब चीज़ रब के लिए है। यहाँ से हमें माह ज़िलहिज्जा में दो सबक मिल रहे हैं। बहुत से लोग इस मुक़दस महीने में चांद देखते ही रोज़ा रखते हैं, बहुत बड़ी इबादत है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आलम इस्लाम बिलखसूस अहले मॉरिशस

चाँद की पहली तारीख से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक रोज़ा रखते हैं, उसकी बड़ी अजमतें बरकतें हैं, और ये उन्हीं को मालूम है जिन्हें ये अजमतें बरकतें मिलती हैं, किसकी कितनी लज्जतें हैं और किस कदर इंसान अल्लाह से करीब हो जाता है, गुनाहों से दूर हो जाता है। इंसानियत का मकसद ही कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल से करीब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो ख़ुद शैतान से दूर होगा और शैतान उससे भी दूर हो जाएगा। तो जब शैतानियत नहीं रहेगी तो इंसान इंसान बनकर जिएगा, न वो किसी पर जुल्म करेगा, न माँ बाप को बुरा भला कहेगा, न भाई बहन को बुरा भला कहेगा, न किसी इंसान को बुरा भला कहेगा, बल्कि उसके अंदर की जो असल इंसानियत है वो बेदार हो जाएगी। तो ज़िलहिज्जा का मुक़द्दस महीना ये सबक दे रहा है, कुल इन्ना सलाती यानी नमाज व नुसुकी क़ुरबानी। तो क़ुरबानी क्या है? क़ुरबानी को अगर हम ग़ौर से समझें तो ये सिर्फ मज़हब इस्लाम में नहीं है, बल्कि हर मज़हब के यहाँ क़ुरबानी का कंसेप्ट है और क़ुरबानी करते हैं। अब ये और सी बात है, हर मज़हब के अपने अपने तरीक़ेकार हैं, अपने अपने अंदाज से क़ुरबानी, कहीं दान कहा जाता है, कहीं बलि कहा जाता है। तो क़ुरबानी एक ऐसी चीज़ है कि इंसान अपनी प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में अल्लाह की खुशी के लिए क़ुरबान करें, क़ुरबानी उसे कहते हैं। और इसका सबक हज़रत सैयदना इब्राहीम व इस्माईल अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है और हज़रत हाजरा की ज़िंदगी से मिलता है कि क़ुरबानी का जो ज़हन उन्होंने दिया, तारीख़ उठा के पढ़ें, अहादीस मुबारका को आप उलमाए किराम के करीब होकर सुने, उलमाए हक्का से, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात से, सुन्नी सहील अकीदा से आप सुने कि क़ुरबानी है क्या, तो बहुत से राज़ो न्याज इसमें जो छुपे हैं वो आपकी समझ में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मुख्तसर से वक्त में क़ुरबानी यूँ समझो सुन्नत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिमुस्सलाम है। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि क़ुरबानी करो। फ़लसफ़े क़ुरबानी क्या था? लोगों ने नहीं बल्कि फ़रिश्तों ने, जो मासूम हैं, उन्होंने रब तबारक व ताला से कहा, अल्लाहुल आलमीन तो जिस इब्राहीम को अपना खलील दोस्त कहता है, बुढ़ापे की उम्र में अकलौती औलाद मिली है जिसका नाम इस्माईल है, हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। रब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा खलील, मेरा दोस्त मुझे छोड़कर अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करे, ऐसा नामुमकिन है। फ़लसफ़े क़ुरबानी यहीं से शुरू है। अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया, ख्वाब में देखा इब्राहिम क़ुरबानी करो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठते हैं, 8 ज़िलहिज्जा को 100 ऊँट की क़ुरबानी की, फिर रात में सोए, फिर सुबह उठे, फिर 200 ऊँट की क़ुरबानी की, और वो ऊँट अहले अरब के नज़दीक जो सुर्ख ऊँट होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, बेहतरीन तंदुरुस्त मोटे ताज़े ऊँटों को क़ुरबान किया। फिर तीसरी रात ख्वाब देखते, नहीं क़ुरबानी करो जो दुनिया में तुमको सबसे ज़्यादा अजीज़ और प्यारी हो। सुबह उठे कि दुनियावी चीज़ों में अगर मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ और प्यारी है तो अल्लाह उसके रसूल के बाद फिर मेरा बेटा है। आपने बेटे को कहा चलिए आज एक बहुत बड़े मेहमान के यहाँ दावत है। तो अल्लाह की खुशी के सामने अपने अकलौते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम

0: को हज़रत इब्राहिम लेकर मिना पहुँचे। और क़ुरान हकीम सूरह साफ़ात की आयत मुबारक मौजूद है कि कहा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुमको ज़बा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तो जवाब क्या मिला बेटे से? अल्लाह ऐसे नेक औलाद हर इंसान बंदे मोमिन और मोमिना को अता फरमाए। क्या जवाब दिया? मेरे अब्बा, जो अल्लाह का हुक्म है उसे आप कीजिए, मुझे सब्र करने वाला पाओगे। अल्लाह ताला इस पैगाम में जो सबसे बड़ा पैगाम छुपा है कि अगर बाप अपने बेटे से कहे मैं तुम्हें क़ुरबान करना चाहता हूँ, तो बेटों का जवाब जवाब इस्माइल होना चाहिए कि मेरे बाप, जो आपको हुक्म है वो सर आँखों पर है। हज़रत इस्माइल सलाम ने अपनी गर्दन को झुका दिया। यहाँ बहुत से नुकात मिलेंगे अदब के पहलू, मैं यहाँ पर अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ख़त्म करना चाहूँगा कि फ़लसफ़े क़ुरबानी से बहुत बड़ा बच्चों को और बेटों को सबक दिया गया कि तुम अपने बाप की तज़ीम करो। लेकिन आज हम उल्टा देख रहे हैं कि बेटे जब बड़े हो जाते हैं, थोड़ा कमाने लगते हैं, तो बाप अब बेटे से डरता है और वहीं से घर की बर्बादी शुरू होती है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को क़ुरबानी के फ़लसफ़े से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात क़ुरबानी के ताल्लुक़ से कि इंसान को क़ुरबानी दिखावे रियाकारी के लिए नहीं, बल्कि क़ुरबानी एक इबादत है जो अल्लाह और बंदे के बीच में है, तीसरे को उसके अंदर इंटरफियर करने की शरीयत इजाज़त नहीं देती। अल्लाह ताला हमें खलूस दिल से क़ुरबानी करने की तौफीक अता फरमाए और क़ुरबानी के फ़लसफ़े को समझने के बाप ने अपने बेटे से जो कहा और बेटे ने जो अदब भरा जवाब दिया, अल्लाह से ही पूरे इंसानियत की औलादों को बाअदब बना दे और माहे ज़िलहिज्जा की बरकतें अता हों, इस मुल्क के मॉरिशस आलम इस्लाम में अमन व सुकून अता हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौजूद सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। नासिर और नाजमा महबूब नोटदाम के जो रहने वाले हैं वो एक कलाम की फरमाइश कर रहे हैं। इसके अलावा सैंपल से रिहाना और रियाज अपने शोहर रियाज और तमाम मरीज़ों के लिए दुआए शिफा की गुजारिश कर रही हैं और तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रही हैं और तमाम हज पर जाने वालों को मुबारकबाद भेज रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक कलाम की फरमाइश भी की है जिसे आप थोड़ी देर में समात फरमाएंगे। न्यू कोव की फातिमा भी हज के महीने की मुबारकबाद पेश कर रही हैं। इसके अलावा बंधु और कोमाली फैमिली जो कि त्रियो लेके रहने वाले हैं वो तमाम बहन भाइयों को हज की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और उनकी जो ख़ानदान के लोग जो वफात पा चुके हैं उनके लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रहे हैं। और काला नाजमून भी पोर्ट लुइस से हज के महीने की मुबारकबाद भेज रही हैं।

मौज़ सामीन, इसके अलावा ज़ायदा भी तमाम हज पर जाने वालों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक तमाम हज पर जाने वालों के लिए आसानियाँ अता फरमाए और उन्होंने एक

कलाम की फरमाइश भी की है। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पसीर हो जाएगी। आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर माह जिल हज की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। ये बाबरकत महीना आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ, अमन और रहमतें लाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 2:30 बज रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में, जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप जहाँ से भी हमें सुन रहे हैं आप एकदम स्वस्थ हैं और हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम है आपकी पसंद। तो चलिए, इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं और ये कार्यक्रम जो है आप ही के अनुरोध पर हम चलाने वाले हैं। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा सा नजाना आप सभी सुनने वालों के लिए।

ने की रहने वाली हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो उन ये अगला गीत जाएगा उनके सभी परिवारों के लिए। साथ में ये गीत गांवकोप की सुनीता जी हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, तो ये प्यारा सा गीत उनके नाम भी हम करने वाले हैं। और केश जी है कथोबोन की रहने वाली, साथ में उनकी दो बेटियां हैं नेहा नितिशा हैं, उनके दामाद है एल्विन, साथ में उनके पति है अनिल। तो चलिए इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत हम चला रही है।

हाथ का जवाब हाथ से, बात का जवाब बात से, प्रीत का जवाब प्रीत से, और गीत का जवाब गीत से।

तो चलिए श्रोताओ अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे। अगला गीत आंसू और मुस्कान फिल्म से लिया गया ये गीत जो है जाएगा विश्वानी डुमन जी के लिए और आप वाक्वा की रहने वाली है और साथ में ये गीत जाएगा आपकी बहनों के लिए। इंदिरा है, शारदा है, साथ में आपकी सहेलियों नीला है, प्रतिभा है, शोभा है, साथ में है गीता गजहदर। तो चलिए इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन पाएंगे।

तो चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं 4028085 पे, बहुत ही प्यार के साथ आप निभा रही है। तो हम अगले गाने की ओर जो है हम बढ़ने वाले हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं और इस समय हम ये अगला गीत सुनाने वाले हैं अनीता जी के लिए। अनीता जी जो है फिकौफला की रहने वाली है, ये उनका मनपसंद गीत है। फिल्म का नाम है दिल चाहता है और यही गीत जो है उनके समस्त परिवारों के लिए और उनके सभी दोस्तों के लिए भी। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा गीत है और ये प्यारा सा गीत जो है हम चला रहे हैं साथ में अनीता जी। अनीता जी जो है आप पिछवेरे सैंपिया की रहने वाली है। ये गीत जाएगा आपके 3 बेटियों के लिए, काजल, शीतल, दीक्षा। आपके दामाद है वितिश और आपके पति है बालदेव जी। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम है जी चाहता है और इसी फिल्म से लिया गया गीत जो है इन सभी लोगों के लिए हम चला रहे हैं।

अगला नजराना श्रोताओं, अगला नजराना फिल्म सीमा से लिया गया और ये प्यारा सा गीत है, डर भरा गीत है और ये गीत है जो है मोहम्मद रफ़ी और शारदा की आवाज़ों में आप सुन सकेंगे। फरमाइश करने वाली है आप विद्या जी, यूनियन पार्क की रहने वाली है आप। ये गीत जाएगा आपकी चाची कुमारी के लिए, आपकी बहन है सती, साथ में है सुरेखा, वेदना, विमला, प्रीति और बबीता। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

चलिए आपकी पसंद का रिकाम की अगली पेशकश में फिल्म यकीन से लिया गया गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत जाएगा। हमारे साथ इस समय नारायणी जी हैं, लॉन्ग माउंटेन की रहने वाली हैं आप। ये गीत जो है आपके वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर आपके पति है सुभाष जी, तो हमारी तरफ से एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जो है आपके नाम, और आपकी जोड़ी जो है सलामत बनी रहे। इसी कामना के साथ ये प्यारा सा गीत आपकी फरमाइश पे हम चला रहे हैं। तो श्रोताओं, हम आपको इशारा करें कि कुछ ही घड़ी में सपहर के 3 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें याचना से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। राष्ट्रसभा के कार्य आज जारी रखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि बानू दत्त बिहारी ने लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन को एक वन मैन कमीशन में बदल दिया था। सरकारी नेता आज राष्ट्रसभा में विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। ये प्रश्न विभिन्न नगर पालिकाओं और जिला परिषदों में भर्ती किए गए रिफ्यूज कलेक्टर्स और जनरल वर्कर्स की संख्या पर आधारित था। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कुछ स्थानीय निकायों और अस्थाई आधार पर नियुक्त लगभग 1,500 कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट्स समाप्त कर दिए गए थे क्योंकि भर्ती प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कदम कानूनी सलाह मशवरा करने के बाद उठाया गया। प्रधानमंत्री ने 2026 की भर्ती प्रक्रिया के बाद अस्वीकृत उम्मीदवारों की सूची भी सदन में पेश की। साथ ही जनवरी और फरवरी 2026 में जिन भर्ती कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त की गई उनकी संख्या पर भी उन्होंने जानकारियाँ दी। रविवार रात को कोंतोरेल में हुई हिंसक वारदातों के बाद मोका की सीआईडी की टीम ने चार लोगों को हिरासत में रखा है।

0: इनमें से एक को गिरफ्तारी के बाद क्लिनिक में भर्ती कराना पड़ा। रविवार रात को कौतूहल में दो टोलियों के बीच बहस शुरू हुई। इसका कारण वहां के हेल्थ ट्रैक पर क्वाड बाइक्स का प्रयोग है, जिसकी वहां सख्त पाबंदी है। मामला बहुत जल्द बिगड़ गया। गोली की आवाज सुनाई दी, दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और एक पुलिस अफसर घायल हुआ जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। आज सुबह हमें अपने एक सहयोगी मेविन प्रभाकरन, जिन्हें उनके मित्र आया के नाम से जानते थे, के निधन की दुखद खबर मिली। मेविन पिछले 4 वर्षों से प्रोडक्शन विभाग में ऑडियो विजुअल असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। वे 26 साल के थे, हंसमुख और मददगार स्वभाव के थे और एक जिम्मेदार कर्मचारी भी, जो हमेशा मेहनत से काम करते थे। हम इस अत्यंत कठिन समय में उनके परिवार, मित्रों, सहयोगियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यह स्पष्ट करना चाहती है कि उसने इस दुखद घटना की परिस्थितियों को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही कुछ अफवाहों और टिप्पणियों की जानकारी ली है। ये बातें न तो बुनियादी हैं और न ही सही, और इससे परिवार तथा सहयोगियों को ज्यादा खेद पहुंच रहा है। जनता से अनुरोध है कि शोकग्रस्त परिवार की गरिमा का सम्मान करें। एमबीसी कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की धमकी, उत्पीड़न, डराने, धमकाने या अनुचित व्यवहार के आरोपों को बहुत गंभीरता से लेती है और इस मामले से निपटने के लिए प्रक्रियाएं लागू की गई हैं। इस कठिन समय में संस्था की तत्काल प्राथमिकता सगे संबंधियों और प्रभावित कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करना है। एमबीसी सभी से करुणा, संयम और सम्मान बनाए रखने की अपील करती है। विदेश में कोंगो गणराज्य में इबोला महामारी के कारण कम से कम 131 लोगों की मौत हुई है। वहां करीब 513 संदिग्ध मामले हैं, जिसके लिए एक बृहद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभियान शुरू किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे आपात स्थिति करार दिया है। उधर युगांडा में भी इस घातक बीमारी के 2 मामलों का पता चला है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
3: श्रोताओं, सपहर के 3:04 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। बालिसों और मारिजानी के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है मार्सेल मासोसिटी जू सुद, से आशा मारिजानी, NHDC बालिसों, जोंक्शन रोड, रेलोजमेंट के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, माओशिकोज के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है। इन सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 20 मई 2026 को सुबह 8:30 से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।

आपकी पसंद कार्यक्रम एक बार फिर से रेडियो मॉरिशस पे समय से लेकर शाम के 4 बजे तक। हमारा फोन नंबर है श्रोताओ 4028085। हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251700552518700005। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे और हमारे साथ इस समय माया जी है मोतिया ब्लाउंश की रहने वाली और आपका ये मनपसंद गीत फिल्म उपकार से लिया गया और ये गीत जाएगा आपके सभी परिवारों के लिए। तो चलिए हम गीत की ओर बढ़ेंगे और हमारे साथ माँ गायत्री जी है नोएल फ्रांस की रहने वाली और साथ में है उनके बेटे अजय। तो इन सभी लोगों के लिए फिल्म उपकार से लिया गया गीत मन्ना डे के स्वर में।

तो चलिए श्रोताओ, 3:15 बज रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में और एक सालगिरह गीत आप सभी सुनने वालों के नाम। वैसे ये प्यारा सा गीत जो अभी आपने सुना, बहुत ही प्यारा सा नज़ाना जो है फिल्म खुद्दार से लिया गया। हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं, तो इन सभी लोगों के नाम जो मैं ये प्यारा सा गीत हमने चलाया। माला सुमारू जी है काकोबोन की रहने वाली, उनके पति है सूर्यदेव जी और उनके सभी बच्चों के लिए कुछ मॉरिशस में है, कुछ कनाडा में है। और ये प्यारा सा गीत जो है सरिता जी के लिए जो कि देपिने की रहने वाली है, उनके समस्त परिवारों के लिए। साथ में है राधा जी है पिछवेरे सैंपिया की रहने वाली, उनके सभी बच्चों के लिए। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, MBC की पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। तो चलिए आपकी लंबी उम्र की कामना करते हुए ये प्यारा सा गीत जो है हम चलाएंगे। आप हमारे साथ लीला जी है बुआशेरी की रहने वाली है। ये लीला जी जो है ये अगला गीत युशी के नाम करना चाहती है। युशी जो है अपना जन्मदिन मना रही है समस्त परिवारों की तरफ से। पापा है सूरज, मामा है अंजू, साथ में है दादा दादी और समस्त लोचन परिवार है, और साथ में है जी हाँ साथ में है रीमा। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत जाने वाला है समस्त परिवारों की तरफ से, समस्त दोस्तों की तरफ से शुभकामनाएं जो है युशी के नाम। युशी जो है बॉम्बू की रहने वाली है और उनके समस्त दोस्तों की तरफ से, परिवारों की तरफ से उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। वो हमेशा

चलिए श्रोताओं, अगला गीत आशा भोंसले की आवाज़ में दूर गगन की छांव फिल्म से लिया गया गीत जाने वाला है। गीता जी के लिए पोंफिया की रहने वाली ये गीत, उनके पति रोहित जी के लिए आदित्य अरव जानवी, साथ में तनिश और उनकी बहन है मीला निकोव की रहने वाली। और ये प्यारा सा गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ इस समय, जो है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और ये प्यारा सा गीत मुंजी है एक्वायाओ की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, उनके सभी बच्चों के लिए है। अविशा है, अभिषेक है, साथ में है उनके पति चांद और साथ में है उनके समस्त परिवारों के लिए। तो ये प्यारा सा गीत जाएगा सभी फोकियाचन परिवार के लिए एक्वायाओ के रहने वाली।

तो चलिए हम पॉम्प्लेमूसेस की ओर जाएंगे। शोभा जी की पसंद पे ये अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म नर्तकी से लिया गया। वैसे हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही हमें जाना है, ये है जीवन की सच्चाई।

तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद से हम जारी रखेंगे शाम के 4 बजे तक। रेहाना जी फिनिक्स की रहने वाली है और उनका ये मनपसंद गीत फिल्म राजकुमार से लिया गया। इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रही हैं।

चलिए श्रोताओं, हमारे साथ इस समय भाई हरीश जी है, बोबासा के रहने वाले। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये प्यारा सा गीत फिल्म काइट्स से लिया गया हमारे सभी लिसनर्स के लिए।

जो चलिए श्रोताओ, कथबोन की प्रेमिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी बेटी इंग्लैंड में है इस समय, लीना उनका नाम है। लीना अपना जन्मदिन मना रही है, शुभकामनाएं जो है पति शैलेश की तरफ से। उनका बेटा है और एक बेटी भी है, साथ में सभी रामनाथ परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। सासुमा है, ससुर है, सैपोल के रहने वाले सभी विशेषर परिवार भी है। खास जो है उनकी मामा की तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है। विद्या है उनकी बहनें जो हैं, विद्या है, वंदना है, साथ में है लव कुश और उनके भाई है प्रकाश। तो इन सभी लोगों की तरफ से हम हैप्पी बर्थडे कहेंगे लीना को। तो चलिए लीना, आप हमेशा खुश रहे, आपकी लंबी उम्र की कामना करते हुए ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हुए फिल्म सफर का ये सदाबहार गीत मुकेश की आवाज में, ये गीत जाएगा संजय के लिए जो कि पोर्ट्रीज के रहने वाले हैं आप, ये गीत जाएगा आपकी बहन आशा के लिए, साथ में आपके भाई है अजीत।

चलिए श्रोताओं, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अब चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम मैं शामिल करूँगी इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जो हैं इस समय इंदिरा लावटन जी हैं, उनके समस्त परिवारों के लिए ये प्यारा सा गीत। और मौदालबे की अनिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और साथ है उनका जो भगीना है, उनका सालगिरह है और उनका नाम है कुनल हरहंगी। तो उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं पत्नी केविना की तरफ से, उनके दो बच्चों की तरफ से आयान है, सेलेना है, सभी इटू परिवार है, और ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से। फिर है सुदेवी जी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई है वाक्वा से। अगला गीत जाएगा त्रियोले की दीदी ललिता के लिए, कुशल परिवार है, आत्माराम भैया है, दीदी सुनीता है, शोभा है, देवीना मलिंगा के अनुषा है, किरण कृष्णय साथ में, अनुषा किरण और कृषिका लक्षिका

तभी राम रतन परिवार है, राम गुलाम परिवार है, क्वाहो परिवार है, तो बहुत ही प्यारा संगीत इन लोगों के नाम हम चलाने वाले हैं। फिर है उमा जी, उमा जी त्रियोले की रहने वाली है, उनके नाम और साथ में उनके पति के नाम, जो ये अगला गीत ज़रूर जाने वाला है। तो चलिए, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद से हम आगे बढ़ाएंगे, और गीत की फरमाइश करने वाले हैं दिलीप के कुंगुमा, दिलीप जी है कुंगुमा के रहने वाले, और ये गीत जाएगा किशनवी, योगेश, मनीषा, कविता, साथ में है संगीता, निशान, इंदिरा, दानंद, तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत दिलीप जी की फरमाइश पे।

चलिए श्रोताओं, जाने से पहले आइए सेंट्रल एक्सप्रेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। मौताबा के रहने वाले निवासियों को, विलास डे मौताबा के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 20 मई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्ट्रिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल एक्ट्रिस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है, आपकी पसंद कार्यक्रम की अंतिम भेंट में ये प्यारा सा गीत जाने वाला है, फरमाइश करने वाली है सरिता जी कथुबोन की रहने वाली, और ये प्यारा सा गीत उनके सभी परिवारों के लिए, साथ हमारे साथ जो हैं जुड़े हुए हैं, वैसे काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अंतिम नज़ाना जो है इन सभी लोगों के नाम हम करना चाहते हैं। जिन लोगों को लाइन नहीं मिली है, तो इंदिरा लौटन जी है हमारे साथ जुड़ी हुई, तो ये प्यारा संगीत उनके नाम हम करने वाले हैं। और साथ में है, जी हाँ साथ में है उमा जी जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है, और साथ में है प्रीति रंजित, और जो क्यूपिप की रहने वाली है, ये गीत जाएगा उनके पति राजेश के लिए और उनकी बेटी है अफिति, जो आदिति के नाम जो है ये प्यारा सा गीत। और साथ में है श्यामा रघुनंदन जी हमारे साथ जुड़ी है, और ये गीत जाएगा वीना रामफल के लिए, विश्वानी दुखी है, नंदिनी ओकलू है, और उनके सभी परिवारों के लिए। तो चलिए श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम का समय पूरा हो जाएगा। साथ निभाने के लिए शुक्रिया, आपकी फ़ोन कॉल्स के लिए शुक्रिया। कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं और आप तमिल भाषा में कार्यक्रम कलाईवानी के साथ सुन पाएंगे। हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस, देवरागम, देवरागम।

शाम के 5 बज चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, 5:07 हुए हैं और आप लोग सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत प्रोग्राम। जी हाँ, मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए, और हम साथ देंगे 6 बजे तक खूबसूरत गाने आप लोगों के नाम। तलत महमूद साहब की आवाज़ में अगला गाना सुनते हैं, जहाँ हार आसिफ़ से लिया गया।

5:11 हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तेरी आँखों, तेरी आँख के आंसू मैं पी जाऊँ, उन गानों को हम फिर से याद कर देते हैं, जहाँ उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। चलिए अगला गाना अप्रैल फूल फिल्म से लिया गया, आ गले लग जा, रफ़ी साहब की आवाज़ में।

जी हाँ, एक महान कलाकार की आवाज़ आप सुन रहे थे, मुकेश साहब की आवाज़, दीवाना मुझको कहे। जी हाँ, और ये गाना हमें पता है कि आप लोगों को पसंद आया। कहते हैं ना, ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, और जो इंसान नए आइडियाज़ और नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो धीरे धीरे पीछे रह जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, जो गाना हम चला रहे हैं, चले हम दिल में बसा लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उन गानों को हम कैसे भूल सकते हैं, कभी नहीं, है ना। तो चलिए अगला गाना आशा जी की आवाज़ में। प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से लिया गया,

जय श्रोताओ, पुराने गाने सिर्फ संगीत नहीं होते, वो यादों का एक सफ़र होती है। हर लफ्ज, हर धुन दिल को उस वक्त में ले जाती है जहाँ सुकून है।

जी हाँ, कभी रफ़ी साहब, कभी मुकेश साहब, कभी लता जी और आशा जी, और कभी किशोर दा की आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं। बस आपको कहना चाहते हैं कि आपके जो फ़ोन कॉल्स हैं और मैसेजेस हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5:40, अगला गाना सुनते हैं, बेटी बेटा फिल्म से लिया गया।

0: दोस्तों, लड़का और लड़की का रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझने और हर हाल में साथ निभाने का होता है। सच्चा प्यार वही होता है जहां बातें कम और एक दूसरे की परवाह ज़्यादा होती है। तो चलिए, अगला गाना 1966 में रिलीज हुई फिल्म लड़का लड़की फिल्म से लिया गया, आशा जी और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ों में।
1: बचपन में मरीन लाइंस पे हम लोग ट्रेन पकड़ा करते थे, कंपार्टमेंट में एक शख्स आकर बैठते थे और विस्लिंग किया करते थे। तो मेरे बड़े भाई साहब कहते हैं, यार ये कमाल सीटी बजाती है, ये कौन है? फिर पता चला कि मदन भैया हैं। मदन भैया की मेरी बहुत पुरानी एसोसिएशन थी, इतना प्यार कि जब मैं गाने गाता था स्कूल में या कॉलेज में, तो वहाँ आकर जब ये जज होते थे, सुनते थे, मुझे गाइड किया करते थे, कहते थे कि अपनी इंडिविजुअलिटी रखनी चाहिए।

5:51 हुए हैं दोस्तों। इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। हमारी मुलाकात होगी RM Free पर रेडियो मनोरंजन, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम को लेकर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। सभी सुनने वालों को नमस्कार और आदाब। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पूर्व सरकार के कार्यकाल में संचार के इंटरसेप्शन का मुद्दा राष्ट्रसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान खासतौर पर चर्चा में। विपक्ष के सांसद अरविंद अग्रवाल द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्व सरकार के तहत एक मास सर्वेलेंस सिस्टम के अस्तित्व की कड़ी निंदा। लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष की नियुक्ति इस सप्ताह होने की संभावना, ये बात कही प्रधानमंत्री ने। वे प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। वाकवा के स्वरूप लेन में कल सुबह क्या हुआ, ये सवाल सभी की जुबान पर। 20 साल के व्यक्ति के शव को एक खाली जमीन में पाया गया। 18 साल के छात्र को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। विदेश में एबोला महामारी, कोंगो में कहर बरपा रहा है, 131 लोगों की मौत। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। अब समाचार विस्तार से पेश हैं। पूर्व सरकार के कार्यकाल में संचार के इंटरसेप्शन का मुद्दा राष्ट्रसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान खासतौर पर चर्चा में रहा। विपक्ष के सांसद अरविंद अग्रवाल द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्व सरकार के तहत एक मास सर्वेलेंस सिस्टम के अस्तित्व की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे एक गंभीर और अस्वीकार्य विचलन बताया। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इस मामले में एक आपराधिक जांच चल रही है और कुछ गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं, जबकि आगे और गिरफ्तारियां बाकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के उपकरणों के उपयोग को संविधान के अनुरूप रखने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचों को मजबूत किया जाएगा। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: टेलीकम्युनिकेशन इंटरसेप्शन से जुड़े अरविंद अग्रवाल के एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध निगरानी या फोन टैपिंग मॉरिशस के संविधान तथा उसमें निहित मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पूर्व सरकार के दौरान लागू की गई निगरानी प्रणाली का भी उल्लेख किया। पिछली सरकार ने सार्वजनिक धन के भारी खर्च पर एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली स्थापित की थी, जिसका मकसद हर मॉरिशन नागरिक की अंधाधुंध जासूसी करना था। वे सभी की निगरानी कर रहे थे। मैडम स्पीकर, आपकी, मेरी, विपक्ष नेता की, पूर्व प्रधानमंत्री की, इस सदन के हर सदस्य की, यहाँ तक कि सरकार के मंत्रियों की भी। स्वयं माननीय सदस्य, उनके पिता जो उस समय मंत्री थे, और उनके परिवार भी इसी से अछूते नहीं थे। और केवल इतना ही नहीं, न्यायपालिका, सिविल सोसाइटी, राजनयिक समुदाय और हर परिवार के निजी डेटा को भी इंटरसेप्ट किया जा रहा था। जैसा कि मैंने पिछले वर्ष सदन में कहा था, मेरे निर्देश पर इस प्रणाली को समाप्त

0: समाप्त कर दिया गया, निष्क्रिय बना दिया और इसे पूरी तरह अनुपयोगी कर दिया गया। मैं सदन को सूचित कर सकता हूं कि इस मामले में फिलहाल एक आपराधिक जांच चल रही है। मुझे जानकारी दी गई है कि कुछ गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं और आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के वास्ते सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की बेहतर सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी ताकि मॉरिशस गणराज्य में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहे। सदन को जल्द ही नेशनल क्राइम एजेंसी बिल और उससे संबंधित विधायी प्रावधानों की समीक्षा और बहस करने का अवसर मिलेगा। ये प्रावधान हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद से कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सबसे व्यापक और गहरे बदलाव लाएंगे। ये कानून निगरानी के मुद्दे को केवल आपराधिक जांच के दायरे में संबोधित करेगा। इसका उद्देश्य इन साधनों के उपयोग को राष्ट्रीय सुरक्षा के वास्तविक और वैध हित में सीमित करना होगा, न कि किसी विशेष शासन के व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के लिए। इन्हें एक मजबूत संवैधानिक और कानूनी आधार पर रखा जाएगा। वर्तमान में उन आवश्यक स्वतंत्र संस्थागत संरचनाओं पर गंभीर विचार किया जा रहा है जो इन उपकरणों के उचित और संतुलित उपयोग की गारंटी देंगे। इन्हें एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में शामिल किया जाएगा। हमें कभी भी पिछली सरकार के उस आपराधिक दुरुपयोग की ओर वापस नहीं लौटना चाहिए जिसने पूरे देश में गहरा और जायज आक्रोश पैदा किया था।
1: My question is to the Honorable Prime Minister, given that the states still have the capacity to intercept, it is still within the state apparatus, with all the risk of political abuse and misuse, why does he not consider it urgent and necessary to come with an oversight and accountable mechanism like is being done overseas in Commonwealth countries?
2: I did say, Madam Speaker, the Honourable Member is wrong. There is no system at the moment. There is none. I explained, I just said that the system was dismantled, shut down and rendered inoperable. So there is none at the moment. But what I said in my answer, that we will have to come with new legislation for the purpose of the matter that I mentioned, like terrorism, drugs and all those things, criminal offences.
3: लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष की नियुक्ति इस सप्ताह होने की संभावना है। ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के जवाब में कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष ने व्यक्तिगत कारणों से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। सरकारी नेता ने स्पष्ट किया कि LGSC एक स्वतंत्र सार्वजनिक संस्था है और इसके प्रशासनिक मामलों या निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: I've given notice of the following private notice question.
5: विपक्ष नेता जूलिया जांगा का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन 2026 में LGSC की ओर से जनरल वर्कर्स और कूड़ा उठाने वालों की भर्ती से संबंधित। अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के अंतर्गत ये आयोग स्वतंत्र रूप से कार्यरत है। उन्होंने बताया कि कानूनी सलाह पर 15 जून 2025 को 1463 कर्मचारियों का कंट्रैक्ट समाप्त किया गया। इसके बाद इनमें से कुछ लोग मामले को अदालत में ले गए। 2024 के आम चुनावों से एक दिन पूर्व रिक्रूटमेंट्स किए गए थे और तब के चेयरमैन के साथ संभावित गलत कार्य के सिलसिले में जांच की जा रही है। विपक्ष नेता LGSC के पुराने चेयरपर्सन भानुदत्त बिहारी के मोडस ऑपरेंडी पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने LGSC को एक वन मैन कमीशन में तब्दील किया। पिछले 25 जनवरी को सुनाए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इन कर्मचारियों की भर्ती कानूनी रूप से इनवैलिड थी और कि LGSC को उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का अधिकार था। 2026 की शुरुआत में LGSC की नई प्रशासनिक परिषद की तरफ से रिक्रूटमेंट की एक नई कार्रवाई चलाई गई। इस तरह प्रधानमंत्री ने संबंधित दस्तावेजें पेश की कि कितने कर्मचारियों को गार्बेज कलेक्टर और जनरल वर्कर की तरह रिक्रूट किया गया था। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस

0: पर भी स्पष्टीकरण दिया कि भर्ती किए जाने वाले नए लोगों को 2 महीने की अवधि का एक सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन किसी पिछले सजा से एक नामजदगी में रुकावट नहीं पैदा होनी चाहिए। 2012 से इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक्ट में सुधार लाया गया ताकि इस सिलसिले में कोई भेदभाव न हो जब किसी ऐसे व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो रहा हो या प्रमोशन हो रहा है जो किसी अन्य अपराध के लिए सजा काट चुका हो और अपना कार्य करने से संबंधित नहीं है वर्तमान में। हाल ही में एक नए सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर बिल पारित किया गया जिसका मकसद है एक व्यक्ति के सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर में कुछ प्रकार के पिछले सजा को शामिल न करना ताकि ऐसे प्रकार के लोगों के पुनर्वास में दिक्कत न हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि LGSC के पूर्व अध्यक्ष DRSM के खिलाफ भेदभाव का कोई भी आरोप नहीं है। विपक्ष नेता के अतिरिक्त प्रश्न में वे समझाना चाह रहे थे कि किस कारण उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया।
1: I can tell the honorable leader of the opposition, any public officer has a duty to report any interference or any suspected act of corruption. He hasn't done so, so there was none.
2: Whether there has been discrimination on ethnic grounds in the recruitment process against one specific community.
1: I'm not aware of that, Madam Speaker. There were lots of allegations in the public. I think he quoted an article from the Express, but there was no inquiry, there was no discrimination found, because there was no inquiry, there was no complaint by the person himself.
0: दूसरी तरफ विपक्ष नेता ने जानना चाहा कि हालिया रिक्रूटमेंट कार्रवाई में किसी तरह का झुकाव हुआ है या नहीं। एक अन्य प्रश्न पूछा गया कि क्या पोर्टलिस नगर पालिका में भर्ती किए गए 123 लोगों में 50% चुनाव क्षेत्र नंबर 2 से हैं। उत्तर में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वे रिक्रूटमेंट में हस्तक्षेप नहीं करते। दूसरी ओर स्पीकर ने इस पर अपना रूलिंग रिजर्व किया कि विपक्ष नेता LGSC की तरफ से रिक्रूट किए गए लोगों के नाम पेश करने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे।
3: It's a very sensitive issue. I'm going to keep my ruling and take time to consider.
0: प्रधानमंत्री ने LGSC के नए अध्यक्ष के नॉमिनेशन का भी जिक्र किया।
1: Being done this week, Madam Speaker.
4: राष्ट्रीय सभा में आज पहली पढ़त पर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पेश किया गया। इसका मकसद है एक विशेष आयोग की स्थापना करना जिससे संविधान को लेकर कुछ नियमों में बदलाव लाए जा सके। इस पर ज्यादा विस्तार आप इस रिपोर्ट में सुन पाएंगे।
0: मॉरिशस में स्वतंत्रता पश्चात इतिहास में पहली बार सरकार द्वारा एक वृहद संवैधानिक सुधार की योजना का प्रावधान है। इसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन का गठन किया जाएगा जो संविधान के विभिन्न पहलुओं की गहराई से समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। ये आयोग प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों को मजबूत करने का काम करेगा। पीस, जस्टिस एंड लिबर्टी, न्याय, शांति और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया जाएगा। सीनियर काउंसलर रमा वलाइडन ने कहा, अगर शांति होगी तो न्याय होगा, न्याय होगा तभी तो स्वतंत्रता होगी। न्याय सबका केंद्र है, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, विकलांग हो, सभी के लिए न्याय, प्रकृति के प्रति भी न्याय चाहिए। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल होंगे, प्रकृति नेचर के अधिकारों की मान्यता, पर्यावरण, टेक्निक, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े नए अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी। प्रकृति अधिकार भी है, जैसे कि वाकाशियो, कानूनी कार्रवाई चलाने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार होगा। सरकार हो, लोकल गवर्नमेंट हो या आम व्यक्ति, उनका कर्तव्य होगा प्रकृति के संरक्षण और इसे सुनिश्चित करने का अधिकार। सरकार का उद्देश्य संवैधानिक ढांचे को आधुनिक बनाना है ताकि संस्थाओं पर जनता का भरोसा मजबूत हो सके। सार्वजनिक संस्थानों में नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई जाएगी और राइट टू रिकॉल लागू किया जाएगा। जनता एक याचिका पर हस्ताक्षर कर सकती है और मांग कर सकती है कि ये लोग अपना पद लौटाएं, नॉमिनेशन रिकॉल करें। इसी को राइट टू रिकॉल कहते हैं। इससे मॉरिशस जैसे छोटे देश को मदद मिलेगी ताकि मंत्री हो, सांसद हो, अपने वचनों का पालन करें। अन्य सुधार प्रस्तावों में सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक

0: अपील न्यायालय कोर्ट ऑफ अपील का गठन, मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों के लिए एक विशेष संवैधानिक डिवीजन। जब इस तरह का न्यायालय होगा, अगर किसी मामले का विरोध करना है तो उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए छोटी ही अवधि में ही। आयोग को शक्तियों के बेहतर संतुलन पर भी विचार करना होगा, साथ ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के कानूनी सिद्धांतों को भी संवैधानिक ढांचे में शामिल करना होगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस पर भारत में काफ़ी प्रगति हुई है। इसकी बदौलत लोग आसानी से केस डाल सकेंगे। कानून में इस बात का प्रावधान कि लोग ज़्यादा आसानी से मामला दर्ज करा सकेंगे। आयोग सार्वजनिक तौर पर पेश हो सकता है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन हमारे विचार से इसका उल्टा होना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर जब पेश हो रहे हैं, रेडियो हो, टेलीविज़न या अखबार, इसे देख सकेंगे, इससे जनता सीख सकेगी, इससे किसी भी प्रस्ताव के बारे में बेहतर रूप से जान सकेंगे, ये मददगार साबित होगा। इस विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के बाद से संवैधानिक सुधार के कार्यों की औपचारिक शुरुआत होगी। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व चीफ जस्टिस प्रणव सिक्यन करेंगे। उनके साथ कानूनी विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और नागरिक समाज के प्रतिनिधि मिलकर संविधान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए सुझाव देंगे।
1: आज सुबह हमें अपने एक सहयोगी मेविन प्रभाकरण, जिन्हें उनके मित्र आया के नाम से जानते थे, के निधन की दुखद खबर मिली। मेविन पिछले 4 वर्षों से प्रोडक्शन विभाग में ऑडियो विजुअल असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। वे 26 साल के थे, हंसमुख और मददगार स्वभाव के थे और एक जिम्मेदार कर्मचारी भी, जो हमेशा मेहनत से काम करते थे। हम इस अत्यंत कठिन समय में उनके परिवार, मित्रों, सहयोगियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और आज तैयारी, कल बेहतर प्रतिक्रिया के लिए बंदरगाह में एक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों ने भाग लिया। ये अभ्यास एक ऐसे परिदृश्य पर आधारित था जिसमें खतरनाक पदार्थ शामिल थे। इस अभ्यास का उद्देश्य ये देखना रहा कि किसी वास्तविक घटना की स्थिति में स्थिति कैसी रहेगी और अधिकारी किस तरीके से इसे संभाल पाएंगे। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
2: बंदरगाह के टर्मिनल 2 पर दमकल कर्मी घायलों और मृतकों को निकालने में लगे थे। कंटेनर में हुए विस्फोट के बाद समय के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो गई। कंटेनर के अंदर ऐसे पदार्थ मौजूद थे जो अत्यंत खतरनाक थे। हालांकि ये कोई वास्तविक विस्फोट की घटना नहीं थी, बल्कि एक मॉक ड्रिल थी। लीड कंट्रोलर इंद्रदेव रामसन ने कहा, एक विस्फोट के बाद रासायनिक पदार्थ का रिसाव हुआ है। बंदरगाह में MPA ने अपनी आपात सेवा तैनात की है। इस अभियान का एक महत्वपूर्ण चरण था डिकंटामिनेशन, यानी रासायनिक प्रदूषण हटाने की प्रक्रिया। कंटामिनेशन हॉट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। रेस्पेंडर को डिकॉन्टामिनेशन यूनिट से होकर निकलना चाहिए। चूंकि अंदर में कैजुअलिटी थी, इसलिए सामू की मदद ली गई। एक बृहद अभ्यास था जिसका उद्देश्य सभी उपकरणों की क्षमता को परखना था। इसमें डिकॉन्टामिनेशन जोन, रासायनिक सुरक्षा और डिटेक्टर शामिल रहे। US एम्बेसी के एक्टिंग डेप्यूटी चीफ और कमीशन कैलेब गोडर्ड ने कहा, $1,40,000 दान किए गए उपकरणों के तौर पर आज यहाँ सभी परीक्षण के लिए जुटे हैं। एक देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। अभ्यास के दौरान सामने आई कमियों और आवश्यक सुधारों का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया। इस अभियान में विभिन्न स्थानीय प्राधिकरणों से जुड़े लगभग 200 आपातकालीन कर्मियों को तैनात किया गया था, क्योंकि बंदरगाह देश का एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण स्थान है। कप्तान बेनवा बाबू ने कहा, पोर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है बंदरगाह सुरक्षा योजना, जिसमें अन्य विभाग भी जुड़े हैं। ये एक असल अभ्यास है ये जानने के लिए कि दूसरे साझेदारों के साथ कैसे काम कर सकते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न सेवाओं के बीच समन्वय

0: समन्वय क्षमता का परीक्षण करना भी था, जिसकी अगुवाई नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर द्वारा की गई।
1: रविवार रात को कोतुरेल में हुई हिंसक वारदातों के बाद गिरफ्तार चार संदिग्धों को आज मुका की अदालत में पेश किया गया। उन पर पूर्व योजना के साथ हमले का स्थायी आरोप है। पुलिस ने उनकी रिहाई पर आपत्ति जताई, उन्हें हिरासत में रखा गया है। इसका कारण वहां के कोतुरेल के हेल्थ ट्रैक पर क्वाड बाइक्स का प्रयोग है, जिसकी वहां सख्त पाबंदी है। मामला बहुत जल्द बिगड़ गया, गोली की आवाज़ सुनाई दी, दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और एक पुलिस अफसर घायल हुआ जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। वाकवा के सरूप लेन में कल सुबह क्या हुआ, ये सवाल सभी की जुबान पर। 20 साल के व्यक्ति के शव एक खाली जमीन में मिला। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वो उस व्यक्ति के घर में चोरी के इरादे से घुसा था, जिसने उसका पीछा किया। भागने के लिए उसने एक दीवार लांघने की कोशिश की और गिर गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नेक कंप्रेशन यानी गले पर दबाव से मौत की पुष्टि हुई है। 18 साल के एक छात्र को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अली हुयास के नाम से प्रसिद्ध अली बुलाकी को पुलिस हिरासत में रखा गया है। जमानत पर रिहाई की मांग पर उसे आज दोपहर बाद फ्लाक की अदालत में पेश किया गया। इस मोशन पर बहस को 27 मई के लिए स्थगित किया गया, क्योंकि गहरी जांच के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने ज्यादा समय मांगा है। शुक्रवार 22 मई को संस्था के जांचकर्ता अपनी जांच पर अदालत को जानकारियां देने वाले हैं। वकील यशवीर सिंह रूपन के इस मामले से हट जाने के बाद अब अली हुयास का प्रतिनिधित्व वकील आयवान कुलेंडावेलू कर रहे हैं। मेजिन कोंदमास्क के 23 साल के निवासी अली हुयास पर सार्वजनिक और पैरास्टेटल संस्थाओं में नौकरी पाने के लिए पैसे लेने का शक है। 114 मिलियन रुपये से भरे लगेज के साथ गिरफ्तार बिजनेसमैन जोजियन दिलावन के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच के बाद अली बुलाकी को गिरफ्तार किया गया। विदेश की खबर में कोंगो गणराज्य में बुला महामारी के कारण कम से कम 131 लोगों की मौत हो गई है। वहां करीब 513 संदिग्ध मामले हैं। एक वृहद कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे आपात स्थिति करार दिया है। युगांडा में भी इस घातक बीमारी के दो मामलों का पता चला है।

चलिए जानते हैं मौसम का हाल। पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज रात से स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात को पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों, सेंट्रल प्लेटों पर ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और बारिश होगी, रह रहकर बारिश होगी ऊंचाइयों पर और कुछ अन्य जगहों पर कोहरा छाया रहेगा। कल दिन के दौरान भी बादल घिर रहेंगे और बारिश होती रहेगी, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज रात के लिए दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 19 से 21, अधिकतम 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 से 26, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:33 पर, शाम को सूर्यास्त 5:40 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

शोक समाचार सुनिए। 52 में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती वमला देवी अपाडू। श्रीमती वमला देवी अपाडू पैदाशी नाम वेंकाया और जो वमला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान रेजिडेंस खामदनी बासेंकाथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:00 PM। रॉ रोड ब्रामस्टान में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड के श्री विशाल गुलवा जो विशाल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और सर्जेंट ऑफ पुलिस थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी नीरू नंदराम गुलवा के मकान रॉ रोड ब्रामस्टान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गिश्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:11 AM। अवेन्यू बुगैनविलिये तमारे में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री लाल देव जगन्नाथ जो पौतनिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले मोसलमा वी और एस कस्कावेल रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थे गुरुवार को दिन के 1:30 बजे उनकी बेटी करुणा जगन्नाथ रंजीब के मकान एवेन्यू बुगैनविलिये तमारे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन थर्सडे 8:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

सीबी की तरफ से विज्ञप्तियां। सीबी मातबा के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 20 मई को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही सीबी शमय गोनिया के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 21 मई को दिन के 1 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सीबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं।

सर स्नेह प्रणाम श्रोताओं, आप सुन रहे हैं धार्मिक कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम और मैं हूँ देविना। श्रद्धा भक्ति तथा मधुर भजनों से सजी आज की मंगलमयी संध्या को लेकर आए हैं। मंगलवार की यह पावन रात्रि समर्पित करते हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पहली आराधना से।

स्मरण करेंगे तथा भक्तों के संकट हरने वाले पवन पुत्र श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करेंगे। तो आइए श्रद्धा के दीप जलाए, मन को शांत कीजिए तथा प्रभु स्मरण में डूब जाएं।

वैसे श्रोताओं, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश जी के स्मरण से ही की जाती है। गणपति बप्पा बुद्धि, विवेक तथा सफलता के दाता हैं। जहां उनका आशीर्वाद होता है, वहां जीवन के विघ्न स्वतः दूर हो जाते हैं। और इसी के साथ प्रभु श्री राम केवल एक नाम नहीं बल्कि आदर्श जीवन का संदेश है। उनका जीवन हमें सत्य, धैर्य, करुणा तथा कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। राम नाम का महत्व न्यारा, जिसने लिया उसे मिला सहारा। जब जब मन अशांत हो, जब जब जीवन में कठिनाइयां आए, तब केवल श्रद्धा से सीता राम कह दीजिए, मन को अद्भुत शांति प्राप्त होगी। आइए सुनते हैं अगला सुंदर भजन।

प्रिय श्रोताओ, गणेश जी हमें शुद्ध बुद्धि देते हैं तो प्रभु श्री राम जीवन जीने की मर्यादा सिखाते हैं तथा हनुमान जी हमें सच्ची भक्ति तथा साहस का मार्ग दिखाते हैं। यदि जीवन में श्रद्धा, विश्वास तथा सकारात्मक सोच हो तो हर कठिनाई सरल हो जाती है। भक्ति में है इतनी शक्ति जो अंधकार को प्रकाश बना दे। श्रोताओ, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले इंसान तो जीवन को मधुमास बना दे। तो श्रोताओ, आज के भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम में

बस इतना ही। ईश्वर करे श्री गणेश जी आपके जीवन के सभी विघ्न दूर करे, प्रभु श्री राम आपके घर में सुख शांति बनाए रखें, तथा हनुमान जी आपको बल बुद्धि तथा साहस प्रदान करे। इसे मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। आप सुनते रहिए AM2 रेडियो मॉरिशस। सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय बजरंग बली।

कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ए शहरे मदीना, कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ए शहरे मदीना, गो हाजरी बार बार हो हसरत नहीं जाती। सामईन ज़ी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं और आपके दिल की दुनिया को मुअत्तर करने के लिए हाजिर खिदमत हैं महफिल शब प्रोग्राम के साथ। निसार अख्तर आप तमाम लोगों का दिल बेकरां से इस्तकबाल करता है। उम्मीद है ये महफिल आप सामईन की तवज्जो का बाइस बनेगी। आइए सामईन इस बज़्म शबाना का आगाज करते हैं इस खूबसूरत कलाम के साथ। मुलायजा फरमाइए।

चमक रहा है मदीना गुलाब जैसा, चमक रहा है मदीना गुलाब जैसा, नबी का रोज़ा भी रश्के माहताब जैसा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी शेर के साथ हमारा आज का शबाना प्रोग्राम

महफिल शब अपने अख्तिताम की जानिब रवां दवाहें। माना महफिल मुख्तसर थी, मगर यकीन मानिए हर लम्हा आपकी मौजूदगी से खास रहा। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर पसंद फरमाया होगा। अब अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। नेक ख्वाहिशात के साथ हम आपसे रुख्सत हो रहे हैं। अगले मंगल की शब फिर आपसे मुलाकात होगी।

सभी भाई बहन लोगन भोजपुरी प्रेमी भोजपुरी गाने के शौकीन सबके उषा की ओर से सप्रेम नमस्कार। आज हम मंगलवार भोजपुरी तड़का प्रस्तुत करे खातिर हम त एकदम तैयार। तो चला ई नंबर वा मिला ला का सौदे का थोवे सै करू तोहर पसंदीदा गीतवन के मांग कर जा बीज जग फटाफट।

Sonwo, basa tu ase kamperal bahar. Kaito ke bu.

0: लगी हाँ
1: झंडा तू हाथ से नहीं उड़ेला, एक हाथ से उड़ेला।
0: हमारा झंडा में जाने ले पहुंची आऊ, झंडा में

रात के 9:45 हो गल बा श्रोता लोगन, कभो सोच ले हवा जा कि अगर रेडियो और फोन नहीं रहता कैसे भोजपुरी तड़का में भाग लेता। तो हमनी के हमेशा चाहेला ऐसन ऐसन महान व्यक्ति लोगन के श्रद्धांजलि अर्पित करे के जे लोग ऐसन आविष्कार करलन। तो चला रंभा राम तोवर के गावल गीत सुनावा जा सुदेवी जी खातिर जो हमनी के सुनताई बखत वाकवा से।

0: भोजपुरी तड़का।
1: तो चलो श्रोता लोग, आज मंगलवार 19 मई 2026, गल पंद्रह मई के पूरा जग में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनावल गल। परिवार एगो मनुष्य की जिंदगी में बहुत महत्व रखेला। सुखी परिवार तो सुखी सारा संसार है ना। परिवार खातिर समय नहीं निकालवा तो बाद में पछताए के पढ़ेला। परिवार खातिर ही ते जीवन व्यतीत करल जाला। तो चला अगला गीत मेविन खातिर जो हमने के सुनता कुद्दो से, और खासकर भाई विशाल और एक धवरम पत्नी रीना खातिर, और जितना कोई के बखत काम करता उन लोगन

रात के 10 बज गल बा श्रोता लोग, ईगो का हावत बाते हैव इज वेल्थ, ये बात तो बिल्कुल सच है। स्वास्थ्य अब तो बड़ा कोनो दौलत नहीं बा, ये तो सब मानेला। तो स्वास्थ्य रहे के चाहेला हर दम व्यायाम करके। देखा था वह कितने कोई मॉरिशस में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी से पीड़ित हो जा। तो चला ये बात बोला हमने सब स्वास्थ्य तो पूरा समाज स्वास्थ्य। और ये गाना भोजपुरी बॉयज के गावल गीत, भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज। और ये गाना सरस्वती जी खातिर जोनी बखत हमने के सुनाता मेबग से गाना मांगा था वंजा बेटी अंकुश, बेटी रिया और पूरे परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का।
1: अरे बोबे, ऐसे सुगा जुगाल वो लाभी।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:16 श्रोता लोग तो लोग जरूरत जा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन संगे हमनी के भोजपुरी कलाकार लोगन के शत शत दिल से प्रणाम। वो कला से कितने लोगन के मन बहलावत हवन जा यही एगो सच्चा कलाकार की गुण है। दूसरका के चेहरे पे मुस्कुराहट लाए के आशा करत हैं कि हम भी कहीं ना कहीं तुहर मन के प्रसन्न करत हैं। तो चला अगला गीत सुना नुयन के गावल गीत देवरानी जी खातिर। जी हाँ, देवरानी जी खातिर जो हमने के सुनताई बखत वाकवा से गाना मांगत वन जा रामधानी परिवार के लिए

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: रात के 10:31 हो गए बा श्रोता लोग। हमेशा तोहरा चाहेला माने के सब कोई के ईश्वर मौका देवेलन आगे बढ़े के, परंतु जे कोई समय के जाए देवेलन जा मौका नहीं पहचान पालन त जिंदगी में देर ही जाला। समय सबसे बड़ा बलवान बाते, आ समय के भूल जा त समय फिर से नहीं लौट के आई। चला अगला गीत सुना गणपत सत्याम ईसैन के गावल गीत और ही गाना खासकर इंद्राणी जी खातिर जो हमने के सुनता मेबग से, और आश्विन खातिर जो रहेला गौगुब सात देवता। तो चला

रात के 10:47 हो गल बा श्रोता लोग हमने के मनुष्य सब जीव जंतु से श्रेष्ठ है सा काहे के परम पिता परमेश्वर हमने के बुद्धि प्रदान कर ले हवन तब प्यारे संगतिया लोगन अपन दिमाग के सही प्रयोग कर जा जितना जरूरी उतना ही बात कर जा दिल कोई के नए दुखावा जा और क्रोध से बचा जा तब तोरो तोरा लौकी के सचमुच धरती माता एगो स्वर्ग है।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा।

क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से

रात के 10:55 हो गल बा श्रोता लोग, आज के भोजपुरी तड़का है जा समाप्त हो गल। तोहर से आशीष से खूबसूरत साथ रहल तोहर और से एकर खातिर हृदय से धन्यवाद करत है जा। चला अपन ध्यान रखिया, खुशी से जिया और सबके प्रति प्यार बांट जा। नमस्ते और उषा की आज्ञा देवा जा। शुभ रात्रि।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: प्रणाम श्रोताओं, आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सर्दी का मौसम है, असर कुछ दिख रहा है, तो आप कुशल मंगल रहें और स्वस्थ रहें। आप सबका स्वागत है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। ये है सुनहरे पल कार्यक्रम, नहीं तो एक बार फिर आपके समक्ष रात्रि के 12 बजे तक। तो आइए बॉलीवुड के सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स आपके नाम करते हैं।

वैसे जब बॉलीवुड की बात करते हैं तो 1960s का दौर बॉलीवुड संगीत का एक ऐसा सुनहरा युग था जिसे आज भी लोग गोल्डन एरा कहते हैं। उस दौर के गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी होते थे। हर सुर में एक नमी थी, हर लफ्ज में एक जज्बा था और हर धुन सीधा दिल को छू जाती थी। आज भी जब रफी साहब, लता जी, मुकेश किशोर कुमार, आशा भोसले या मन्ना दे जी की आवाजें रेडियो पर गूंजती हैं, तो लगता है जैसे वक्त थम सा गया है। सवाल ये है कि आखिर 60s के बॉलीवुड गाने इतने मेलोडियस और सोलफुल क्यों थे।

सबसे बड़ा कारण था उस दौर के म्यूजिक कंपोजर्स का क्लासिकल म्यूजिक से गहरा रिश्ता। नौशाद, एसडी बर्मन, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, रोशन, रवि ओपी नैयर, सलील चौधरी जैसे महान संगीतकारों ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को फिल्मी गानों में इतनी खूबसूरती से मिलाया कि हर कंपोजिशन एक कला का नमूना बन गई। राग पर आधारित धुनें, लाइव ऑर्केस्ट्रास, असली इंस्ट्रूमेंट्स और सोलफुल अरेंजमेंट्स गानों को एक रूहानी एहसास देते थे। तब कंप्यूटर बीट्स या ऑटोट्यून नहीं होते थे, इसलिए असली टैलेंट और सुरों की मेहनत ही सब कुछ होती थी।

उस दौर के लिरिसिस्ट्स भी कमाल के थे, शकील बदायूनी, शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी जैसे शायरों ने गानों को सिर्फ लिरिक्स नहीं बल्कि पोएट्री बना दिया था। हर लफ्ज सोच समझकर लिखा जाता था। चौधवी का चांद हो, लग जा गले, अजीब दास्तां है ये, बहारों फूल बरसाओ, जो वादा किया वो

निभाना पड़ेगा वगैरह वगैरह आज भी दिल में उतर जाते हैं, क्योंकि उनमें मोहब्बत की सच्चाई और जज्बातों की गहराई महसूस होती है। उस वक्त गाने फास्ट एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी हुआ करते थे।

बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप सुनहरे पर कार्यक्रम सुन रही है। वैसे गायकों की डेडिकेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन थी। मोहम्मद रफी साहब हर एक्टर के हिसाब से अपनी आवाज का अंदाज बदल देते थे, जबकि मुकेश की आवाज में दर्द था और किशोर कुमार की आवाज में मस्ती और इमोशंस का अनोखा संगम, और लता जी की आवाज में तो एक पवित्रता और मिठास थी जो सीधे दिल को सुकून देती थी। रिकॉर्डिंग के वक्त सिंगर्स पूरी रिहर्सल करते थे, एक एक सुर को परफेक्ट बनाया जाता था। एक गाने को रिकॉर्ड करने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन क्वालिटी पर कभी कंप्रोमाइज नहीं होता था।

मेकर्स भी म्यूजिक को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। उस जमाने में कहानी और गाने एक दूसरे से जुड़े होते थे। गाने जो थे मूवी का हिस्सा लगते थे, जबरदस्ती डाले गए ट्रैक्स नहीं। रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट मेलोडीज, सैड मोमेंट्स में दिल को छू लेने वाले लिरिक्स और खुशी के सीन्स में खिलता हुआ म्यूजिक होता था। इसलिए ऑडियंस अपने गाने सिर्फ सुनती नहीं थी, उनके साथ जीती थी।

एक और खास बात थी सिंप्लिसिटी और प्योरिटी। उस वक्त जिंदगी थोड़ी धीमी थी, लोग इमोशंस को महसूस करते थे और म्यूजिक में भी वो

ही ठहराव नजर आता था। गाने लाउड नहीं होते थे बल्कि दिल से निकले हुए लगते थे। वायलिन, सितार, फ्लूट, तबला, पियानो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से होता था कि हर कंपोजिशन एक म्यूजिकल पेंटिंग लगती थी।

आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन 60s के गानों की रूह और सुकून आज भी कहीं अलग ही महसूस होता है। शायद इसलिए क्योंकि उस दौर में म्यूजिक सिर्फ बिजनेस नहीं था, एक इबादत था। हर कंपोजर, सिंगर, लिरिसिस्ट अपनी ही रूह डाल देता था अपने काम में। इसलिए 60s के बॉलीवुड सॉन्ग्स आज भी अमर हैं, क्योंकि वो सिर्फ मेलोडीज नहीं बल्कि इमोशंस के खजाने थे। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: ਸੁਹਾਵਣਾ ਪੰਛੀ।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

ಕೇಸರ್ ತೋಪ ಸಾಪ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ಬೋಲ್.

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो